मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन्ह, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में

0: दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

सुप्रभात, नमस्कारम, वेलकम बैक है एक बड़ा वाला सुपर ऊपर वाला गुड मॉर्निंग है जी। कैसे हालचाल है? 8:20 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में। आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने पहले रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। ये सब कॉज आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ। शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग, आपकी मॉर्निंग को सुपर टूपर लाउड बनाने आपसे लेकर 10 तक रहेंगे आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। श्रोताओं कहते हैं फोकस ऑन योर सेल्फ, पीपल कम एंड गो। अपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, लोगों का क्या है वो तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो लोगों की बातों को बिल्कुल भी आपने दिल से नहीं लगाना है। अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे आपको फोकस करना है। आप जितना फोकस रहेंगे अपने काम पे, आप जितना फोकस रहेंगे अपने आप पे, उतनी ही लाइफ में आपको डेफिनेटली सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके लिए। श्रोताओं, ये जो प्यारी प्यारी बातों का सिलसिला है ना, ये तो अब शुरू हो गया मेरे दोस्त, और ये आगे भी चलता रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 8:21 हो रहे हैं। आज बात करें तारीख की तो 9 जुलाई की सुबह, मौसम इतना औसम हो रहा है बॉस कि मैं आपको क्या बताऊं यार। इस औसम वाले मौसम में अच्छे गाने हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा। आई नो बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और अभी बस मम्मियां जो है टिफिन तैयार तो कर ही रही होंगी यार, क्योंकि हस्बैंड्स का ऑफिस भी तो जाना है ना। हमारे पापा लोग को सुबह सुबह ऑफिस भागना होता है यार। चलिए, आप ऑफिस का जो है काम निपटाइए, आप अपना लंच या जो भी आप बना रही हैं वो ब्रेकफास्ट वो बनाइए। मैं यहाँ से बजाता हूँ बढ़िया गाने जो आपकी सुबह को बनाएंगे और भी ऑसम। अभिजीत भट्टाचार्य की एक बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज जिसके साथ हम करेंगे आज के सफर की शुरुआत। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। मौसम बहुत औसम है, लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आज के मौसम के बारे में और आज का दिन क्यों खास है। 9 जुलाई का दिन है आज, थर्सडे का। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेलकम बैक है। बहुत प्यारा गाना, बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम एब्सोल्युटली ऑसम हो रहा है, और इस ऑसम वाले मौसम में ऐसे बढ़िया गाने सुनने को मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाता है जी। आज सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। 8:35 हो गए हैं श्रोताओं, और आपके ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंच चुके हैं, बहुत सुंदर सुंदर संदेश आपने पहुंचाए हैं। हेलो आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, हाय, मेरा नाम शिखा है और सुबह सुबह हम आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आज मौसम बहुत ऑसम हो रहा है आनंद जी, आज मैं चाय पकौड़े बना रही हूँ तो यू आर इन्वाइटेड। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। वेल बाय द वे, आज तो मैंने ऐसा कुछ खास ब्रेकफास्ट किया नहीं है। वैसे मैं यूजुअली बोलूं तो मैं डेफिनेटली करके आने का मेरा बहुत मन होता है, लेकिन सुबह सुबह इतना ज्यादा यू नो हेक्टिक हो जाता है, इतनी भागदौड़ वाली हो जाती है यू नो हमारी लाइफ, जिसे कह सकते हैं कि बस एवरी मॉर्निंग उठ के ये वो सारी चीजें, इतनी सारी प्लानिंग, ये सब रिसर्च, तो मतलब मेरा थोड़ा सा टिपिकल वाला हो जाता है मेरे लिए मॉर्निंग, है ना। वेल, सुबह सुबह क्या हम इमीडिएटली बना सकते हैं और क्या मैं स्पेशली सुबह सुबह खा के आ सकता हूँ? आप मुझे जरा आज ये सजेशन देना 9837896896 पे कि आनंद यार सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में ये बना सकते हो, बहुत इमीडिएटली बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती है। तो आप जरा मुझे बताओ, जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, दीदी आप भी कर सकते हो नो डाउट, 9837896896 सुबह सुबह क्या इमीडिएटली बन सकता है, आप क्या अच्छा बनाते हैं जो आपको लगता है कि यार आनंद ये मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ सुबह सुबह, तुम अगर ये बनाओगे तो बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज्यादा उसमें भसड़ ना हो, बस इजीली हो और जो मैं बना के खा के तुरंत आ जाऊं, या फिर क्या मैं अच्छा हेल्दी खा सकता हूँ, आप मुझे जरूर रिकमेंड करिएगा। आज की सुबह एक एडवाइस मांग रहा हूँ आपसे, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। 8:36 हो गए हैं, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, डेफिनेटली हम आपके संदेश को शामिल करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। मौसम इतना अच्छा हो रहा है एंड यू नो मुझे लगता है कि इस अच्छे मौसम में अच्छे गाने डेफिनेटली होने चाहिए, है ना। एंड अभी ये गाना डेफिनेटली मैं आपके लिए प्ले करूंगा, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन यहां पर आप लोगों ने जो मैसेज किए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज का दिन बहुत खास है, और आज के दिन क्या कुछ स्पेशल है ये आपको जानना है, बस मैं अभी डेफिनेटली आपको बताता हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मतलब गिव मी अ 5 मिनट्स, देन आई विल बी राइट बैक। उसके बाद मैं बताता हूँ आज का दिन क्यों खास है, क्यों स्पेशल है। उससे पहले एक स्पेशल गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, एंड इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। सच बता रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे गाने लेकर आता हूँ आपके लिए, कोशिश होती है कि सुबह सुबह बस वो गाने बजाए जाएं जिसे सुन के आपकी सुबह सच में फैंटास्टिक हो जाए, और एकदम बारिश वाला माहौल बना हुआ है तो वो बारिश वाली जो फील है ना आपको आनी चाहिए, भले आप बारिश में भीगे या ना भीगे, है ना, डजंट मैटर, बट वो फील आपको आपके घर पे आएगी कैसे, आरजे आनंद की गानों के साथ। फिलहाल जो गाना प्ले कर रहा हूँ ये भी बहुत ही अल्टीमेट है, इसी को सुनते हैं, एंड आप ऐसे ही सुनते रहिए आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अलका याग्निक एंड उदित नारायण जी की आवाज। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, ब्रेकफास्ट में क्या मैं स्पेशल बना सकता हूँ, क्या स्पेशल मैं खा के आ सकता हूँ सुबह सुबह? हम ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी क्या बना सकते हैं, क्या खा सकते हैं जो थोड़ा सा इमीडिएटली बन जाए, थोड़ा सा जल्दी बन जाए, थोड़ा सा सुपर फास्ट हो और हेल्दी भी हो, आप जरूर बताइएगा मुझे।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
8: अरे तो भाई गुस्सा की होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: वाला है मेरा।
1: नहीं, मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने का था।
0: दिल बरा है दिल बरा अपन की धूम अपन तेरा।
1: What a song।
0: अपन की धूम अपन तेरा लरा लरा।
1: ब्यूटीफुल लव भैया, सच अमेजिंग सॉन्ग है। ऐसे गाने सुबह सुबह सुनने को मिल जाए मतलब मजा आ जाता है यार। मैं अच्छी वाली बातें करता हूँ, है ना, मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूँ सुबह सुबह। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ गए यार। मैं सोच रहा हूँ इतने प्यारे प्यारे मैसेज सुबह सुबह आप ही कर सकते हैं, मुरादाबाद ही कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशन यार इतने अच्छे मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। और सब लोग मुझे बता रहे हैं आनंद आप पोहा बना के आ सकते हो ब्रेकफास्ट में। बना के नहीं आना मैडम जी, खा के आना है, मेरे को खा के आना है। किसी ने लिखा आप ना एप्पल खा सकते हो, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच, बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुंच गए। यही तो आपका प्यार है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आपसे हम एक सजेशन मांगते हैं और आप इतने सारे एडवाइस दे देते हैं ना, मतलब मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। बात करते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। आज क्या तारीख हो गई, आज 9 जुलाई की तारीख हो गई। देखिए यार पता नहीं चल रहा है कैसे समय भाग रहा है। चलिए एक नजर डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों पर, क्या कुछ खास है, क्या कुछ स्पेशल हो रहा है आज हमारे इतिहास के पन्नों में। आज के दिन क्या कुछ खास रहा जो हमारे इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा और डिफरेंट और अलग बना देता है, तो इस पे बात करना तो बनता है आज की सुबह। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 9 जुलाई है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों पर। आपको बता दिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिट का नाम बदलकर जो है अफ्रीकन यूनियन किया गया था सन 2002 में आज ही के दिन। श्रोताओं, और भारत द्वारा पाक सीमा को दो चौकियों स्थापित करने की घोषणा जो है आज ही के दिन की गई थी सन 2001 में। और आपको बताते चलें आज ही का दिन था जब सुखबीर सिंह बादल जी का जो है वो जन्म हुआ था। श्रोताओं आज ही के दिन 1962 में, और आज ही के दिन गुरुदत्त प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक, इनका भी जन्म हुआ था 1925 में। संजीव कुमार जी का जन्म हुआ 1938 में, जो भारतीय अभिनेता है, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ। और ये आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें थी, और आज के दिन से जुड़ी कुछ वो ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने आज के दिन को थोड़ा सा यूनिक एंड डिफरेंट बना दिया है। श्रोताओं आपको बता दें सन 2011 में दक्षिण सूडान एक नया राष्ट्रीय बना था आज के दिन। श्रोताओं, और हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही स्पेशल होती है। एंड आज के दिन अर्जेंटीना को स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी सन 1816 में आज के दिन, जिसके उपलक्ष्य में वहां स्वतंत्रता दिवस जो है आज मनाया जाता है। श्रोताओं आपको बता दें 1969 में आज ही के दिन शेर को यानी टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। श्रोताओं आज ही के दिन 1949 में राष्ट्रीय स्तर पर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज के दिन जो है इसकी स्थापना हुई थी। श्रोताओं मैं फिर से बता देता हूँ, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो छात्र संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की जो स्थापना थी वो 1949 को आज के दिन हुई थी। श्रोताओं, और आज के दिन जो है टॉम जो ये बहुत ही प्यारी एक हॉलीवुड की दिग्गज पर्सनालिटी है, इनका भी जन्मदिन जो है आज सेलिब्रेट किया जाता है। इनके बारे में डेफिनेटली थोड़ी देर में बात करेंगे हम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं स्टूडियो की घड़ी में जो टाइम हो रहा है उस पर। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 8:53। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, थैंक यू वेरी मच। ढेर सारे पॉजिटिव मैसेज आपके पहुंच चुके हैं मेरे पास, और सच में इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज आप करते हो मजा आ जाता है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे विचार भी पहुंचे हैं। ये भूपी भाई ने अपनी आवाज भी पहुंचा दी है हमें, और आप कब अपनी वॉइस पहुंचाओगे, आई डोंट नो यार, जरा सुनते हैं इनकी आवाज।
2: नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, सब पर प्रभु की कृपा बरस रही होगी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89। सुनते रहो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद का साथ निभाते रहो। प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ से। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्म जन्म तक काम आता है। नमस्कार, राधे राधे, शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ हो। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज वॉइस नोट, ताकि ये वॉइस नोट सुनाए दें सारे शहर को, सारे देश को, और हो सकता है सारे संसार को। नमस्कार। नंबर 98378 96 896। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे ही बना रहे तो प्रभु कृपा रहेगी।
1: क्या बात है भूपी जी, थैंक यू सो मच। देखिए आप इतनी प्यारी वॉइस नोट भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। हम आपका दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ढेर सारे लिसनर्स लगातार हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचा रहे हैं। 8:55 हो गए स्टेशन क्लॉक में, ये टाइम जो है ना पता नहीं क्यों इतनी तेजी से भाग जाता है। इसकी पता नहीं कौन सी दुश्मनी है यार मेरे से, मेरे को लगता है अभी तो मेरा आया था, इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो यार। समय भैया थोड़ा तो वेट कर दिया करो यार, थोड़ा तो टाइम दे दिया करो यार। लेकिन ये कि नहीं मानते ही नहीं है इनको, तो भैया टाइम देना ही नहीं है हमको। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और अभी हम यहाँ पर आपके संदेश जो लगातार आ रहे हैं वो तो सच में बहुत प्यारे आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके मैसेज के लिए दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का। सच में आप लोग बहुत प्यारे प्यारे संदेश करते हैं। और एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड आप गाने बहुत अच्छे प्ले करते हैं जिसको सुन के मजा आता है। चलो यार इसी बात पे एक और गाना निकल गया, बहुत प्यारा है, जो भी आपको यू नो बहुत प्यारा लगेगा। नकेली साहब की आवाज है, बहुत फेवरेट वाला गाना है, मिलेनियल्स का तो बड़ा फेवरेट है, एंड ऑफ कोर्स जेन ज़ी का भी फेवरेट है यार ये गाने। म्यूजिक सुन रहे हो आप? राजा कश्यप चौराहा गली मुरादाबाद से जुड़े हैं, लिखते हैं, हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आपको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक और मैसेज आ गया है यू बली का, रामपुर से। हमारे पास प्रेरणा का मैसेज पहुंचा है, साथ में बसंत बिहार से मैसेज आया है गुड मॉर्निंग का, और अभी गायत्री नगर से मैसेज कर रही है पल्लवी जी, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज और आ गया है, जुल्फी भाई लिखते हैं, हेलो भाई क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग सर आपको भी। एक और मैसेज आ गया है, तारिक भाई जुड़ते हैं, लिखते हैं, हेलो हेलो हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलो गाना सुनते हैं, थोड़ी देर में वापस मिलेंगे।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
6: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
5: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: कॉल 9045912348।
7: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
8: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
9: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
10: हाँ जी, कहते हैं मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है भैया, कि जो मुश्किलें हैं वो हर किसी के जीवन में आती हैं, पर उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही तो असली साहस है, और जिसके पास ये साहस है वो जिंदगी में हमेशा जीत सकते हैं बॉस।

0: मॉर्निंग मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो हैपनिंग स्टेशन जहां बातें होती हैं आपके काम की, जहां बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य की, जहां बातें होती हैं आपकी फेवरेट उन योजनाओं की, जहां बातें होती हैं उन फेवरेट चीजों की जो कहीं ना कहीं आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कॉज यार हम अपनी कम्युनिटी को साथ लेके जो चलते हैं। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना देसी रेडियो ऑल ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं 9:04 हो गए स्टेशन क्लॉक में। बहुत से लोग गड्डी विच मुझे सुन रहे हैं जी, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, सीट बेल्ट लगा रखी है अपने, वेरी गुड। मौसम बहुत ऑसम हो रहा है, ऐसे वाले मौसम में यार मतलब मजा ही आता है, अच्छे गाने सुनने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए ना। ढेर सारे संदेश आपके पहुंच गए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं यार, मजा आ जाता है आपके मैसेजेस देख के ही। सच में मतलब सुबह सच में बहुत प्यारी हो जाती है यार, इतने अच्छे मैसेज आप करते हैं ना, दिन और मन दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा गाना होगा जिसके साथ करेंगे आज के इस घंटे की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा ट्रैक आपके लिए निकाल रहा हूँ। और सच बताऊँ तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ गाने इतने बढ़िया होते हैं जिनको सुन के सच में मजा आ जाता है। फिलहाल मैं आपसे कहना चाह रहा था, इस घंटे मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुरादाबाद से जुड़ी हुई है, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें
1: पूरे रात
0: और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एंड हाँ, मैं एक चीज और आपको कह रहा था कि अभी मैं आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर फनी गेम करने वाला हूँ आपके साथ। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कॉल पे बात नहीं करी है, राइट? आज कॉल पे कॉन्वर्सेशन करें, कितने लोग फ्री हैं? आनंद क्या बोल रहा है भाई, कॉल करने का तो टाइम ही नहीं, अपन मैसेज नहीं कर पाते हैं, आप कॉल के लिए बोल रहे हो। जिसको मुझसे मोहब्बत है फोन करेगा मुझे आज, लेकिन फोन करने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर वजह दूंगा। वजह क्या है जरा ये वजह सुनो, आप पहले इसको सुनो उसके बाद आपको वजह मिल जाएगी। ये मैं एक बेसिकली यहाँ पर ना आपके लिए डायलॉग प्ले करने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है? एंड आपको इस डायलॉग को मेरे साथ दोहराना है, बस इसमें आपको छोटा सा चेंज करना है, वो चेंज जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगा। डायलॉग सुनो पहले।
2: मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा।
0: यस yes, तो हम आपको अलग अलग इमोशंस देंगे, अलग अलग फीलिंग्स के साथ आपको जो है इस डायलॉग को बोलना है। अगर आपको लगता है कि आप ही मेरे साथ खेल सकते हो गेम, तो आप मुझे फोन करेंगे 9837896896। ये डायलॉग है, इसको आपको कैसे बोलना है वो मैं आपको तब बताऊँ जब आप मुझे कॉल करोगे। डायलॉग सुनो।
2: मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता,
0: यस,
2: और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा।
0: मैं भी नहीं होने दूंगा, आप मुझे

0: तुलसी कुमार की आवाज। भाई साहब गाना बढ़िया था नो डाउट, और कुछ पुराने गाने निकाल कर ले आता हूँ जो आपको थोड़ा सी नॉस्टैल्जिया फील दे दे। वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी। आज बहुत ही प्यारा सा दिन है, गुरुवार का थर्सडे की सुबह है आज 9 जुलाई 2026। पता नहीं चलता यार, समय देखो इतनी तेजी से भाग रहा है भाई। 9:15 हो गए यार, कहाँ जाएगा टाइम। कहने नहीं, जो समय के साथ चलते हैं उनकी जीत जिंदगी में हमेशा होती है, ऐसा मैंने मेरी माँ कहती है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक से हटाए गए हैं 1.60 लाख भारतीय अकाउंट। हैं जी, मीटा ने इसकी बताई है एक बड़ी वजह। आपको बता दें, भारत ने मीटा की एक बड़ी कार्यवाही एंड करीब इतने सारे लोगों के जो है ना अकाउंट्स 1.60 लाख से ज्यादा जो है अकाउंट हटाए गए हैं। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो है ये अकाउंट इसलिए हटाए गए हैं जो लोग कुछ अलग लेवल का कॉन्टेंट बनाते हैं जो समझ में नहीं आता, और जो बहुत ही ज्यादा यू नो बहुत ही अलग कॉन्टेंट जो ना बच्चे देख पाते हैं ना बड़े, ऐसे कॉन्टेंट वाले पेजेस को हटा दिए गए। दिस इज वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव यार, ये होना भी चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी डाल रहे हैं तो वो चीज नहीं होनी चाहिए यार। भैया देखिए, अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो या फिर कहीं पर आपको लगता है गुम हो जाए तो आपको घबराने की बजाय तुरंत एक सही कदम उठाना है, सही एक्शन लेना है। ऐसे मामलों में आपने क्या करना है, CIR की आप जो है हेल्प ले सकते हैं और इससे जो है आप अपने खोए हुए फोन को वापस पा सकते हैं। CIR पोर्टल का इस्तेमाल करके आप अपने फोन को जो है डेफिनेटली पा सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे मोटू पतलू का जो है वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, AI वीडियो है। आजकल AI से कुछ भी हो रहा है भाई साहब, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। तो AI ने जो है सब कुछ आसान कर दिया है आज की डेट में, है ना। सो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रेंड में आ जाती हैं, आप सोचते रहते हैं वो चीजें हो भी जाती हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी हो रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मुरादाबाद से जुड़ी मेरे पास लेटेस्ट खबरें जो आप तक मुझे पहुंचानी है फटाफट से, इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, तो अगर आप बहुत ज्यादा चीनी लेते हैं तो आपके लिए कैसे नुकसानदायक है, अगर आप कम चीनी लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए कितनी बढ़िया है, उस पर भी हम बात करेंगे अभी जरा सी देर में। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। भाई साहब, आपके लिए बहुत कुछ है हमारे पास यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी सारी रिसर्च करके लेकर आते हैं, तो ये रिसर्च सब आपके साथ ही तो शेयर करनी। आपको बता दें, जो रैपिडो है ना जिसपे अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं, और आजकल ये बड़ी अच्छी बाइक रैपिडो है जिसमें अगर आपके पास साधन अवेलेबल नहीं है तो आप तुरंत रैपिडो बुक करो और आपके घर के दरवाजे के बाहर रैपिडो वाले भाई खड़े होते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो आपको बता दें, रैपिडो बना भारत की नंबर 1 कस्टमर यूजर इंटरनेट कंपनी। यस, ये नंबर 1 कंज्यूमर इंटरनेट बन गया है भाई साहब। ये ऐप जो है बहुत ही ज्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग, इसमें जो है बहुत सारी चीजें चेंजेस तो हो ही रही है लेकिन ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही अच्छी सर्विस देने वाला ऐप बन गया है। इसमें जो है यूजर्स भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव यूजर्स हैं। इनफैक्ट इस बार जो है बहुत ज्यादा बताया गया है कि रैपिडो का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप रैपिडो चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रैपिडो में बैठ कर ट्रैवल करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है यार। चलिए, अभी ChatGPT जो है वो इंसानों से प्यार कर रही है, इंसान ChatGPT से प्यार कर रहे हैं, हो क्या रहा है भाई, मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है। एंड अब आपके लिए खबर है, अगर आप YouTube करना चाहते हैं, मतलब अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप YouTube पे वीडियो करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट खबर लेकर आया हूँ आज की सुबह। आप बस मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके लिए जो आपको सिर्फ कहां पर मिलती है, आरजे आनंद के साथ मिलती है, स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, अभी 2-3 खबरें और हैं जो मैं धीरे धीरे आपको पहुंचाऊंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे शो में, डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आप मुझे फोन भी कर सकते हैं अगर आप ये डायलॉग बोलना चाहते हैं।
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा।
0: मैं भी नहीं होने दूंगा, अगर आपने फोन नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे कॉल्स आ रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे मैसेज करके भी यहाँ पर जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। जैसे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रेम कुमार जी, और साथ में ये प्यारे से गौरव जी भी जुड़े हैं। एंड एक और मैसेज आ गया मेरे पास, हिमेश भाई जुड़ चुके हैं, एंड साथ में बहुत ही प्यारा मैसेज पहुंचा है हमारे पास पिंकी जी का, लिखती है गुड मॉर्निंग आनंद जी। साथ में मयंक शर्मा जुड़े हैं पीतल नगदी से, आनंद भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, मैसेज करना है मुझे 9837896896 पे, फटाफट से कनेक्ट हो सकते हैं आप मेरे साथ आज की सुबह। मुझे इंतजार है आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप का, मैसेज करिए आप मुझे। एंड देखिए, मैसेज का सिलसिला तो जारी रहेगा, एक खास अपडेट जो आपकी हेल्थ से जुड़ी है वो डेफिनेटली आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, तो मैं अभी पहुंचाता हूं, लेकिन एक गाना हो जाए उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। है ना, आप कहीं में जाएं रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाएं, ऐसे ही आरजे आनंद के साथ सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डोंट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
7: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते।

0: हाय हाय क्या गाना है यार, व्हाट अ सॉन्ग। सच में यार ये गाना सुन के अंदर का डांस बाहर आ जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग, 9:32 हो गए स्टेशन क्लॉक में। बॉस आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। और देखो यार आजकल ना हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट का सीन बड़ा चल रहा है यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि फैट यानी चर्बी हमेशा नुकसान करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे शरीर को कुछ हेल्दी फैट मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। और सच बताऊं हमारे शरीर को कुछ हेल्दी फैट की भी जरूरत होती है। एग्जैक्टली हेल्दी फैट वो है जो हमारे दिल दिमाग आंखों और हार्मोन्स को एकदम सही रखने में काफी हेल्प करता है, काफी मदद करता है, और ये शरीर को ऊर्जा भी देता है। कोई बहुत सारे कई ऐसे जरूरी विटामिंस हैं जिनकी ये हेल्प भी करता है ना, उनको मदद करता है। तो भैया जो हेल्दी फैट है वो मिलता कहाँ से? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हेल्दी फैट है हमारी बॉडी में वो हमें बादाम, अखरोट और मूंगफली जैसे ड्राई फ्रूट से मिलता है। साथ में आपको बताते चले जो अलसी के बीज हो गए ये बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, एंड सरसों या ऑलिव ऑयल जैसे अच्छे तेल से भी हमें जो है मिलता है। तो भैया हेल्दी फैट बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर बार बार तली हुई पैकेट वाले स्नैक्स या फिर बेकरी आइटम जंक फूड में जो है अनहेल्दी फैट होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आपको अनहेल्दी फैट जो है नहीं चाहिए तो आपको जो ऑयली चीजें हैं, जो पैकेट फूड्स हैं एंड जो बाहर जंक फूड आपको रोड के किनारे मिल रहा है, इनसे आपने दूरी बनानी है, इनसे आपने दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप जंक फूड नहीं लेते हैं, अगर आप ये जो बंद पैकेट वाले फूड आते हैं इनको अगर आप अवॉइड करेंगे, तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, तो यकीन मानिए आप अनहेल्दी फैट से काफी दूर रहेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ, याद रखिए दोस्तों फैट छोड़ना नहीं है, सही फैट को चुनना है, संतुलित मात्रा में जो है हेल्दी फिट ये जो फैट है इसको मेंटेन करना है, और अपनी सेहत के लिए जो है आपने अलर्ट भी रहना है ना। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जब आप सुबह उठते हैं तो अच्छे से अपने जो है दिन की शुरुआत कीजिए, बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर अनहेल्दी फैट है तो उसको फिर भैया आपने जो है जल्दी जल्दी अपनी बॉडी से रिमूव भी करना है। उसके लिए आपको डबल मेहनत भी करनी पड़ सकती है, इसीलिए खाने पीने का जो है विशेषकर ध्यान रखें, अपनी डाइट का विशेषकर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज जो है फैशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 जुलाई को। यस, नेशनल शुगर कुकीज डे आज मनाया जाता है। इसके अलावा आज जो है नेशनल डिंपल्स डे मनाया जाता है। बॉलीवुड में बहुत ही कमाल की अभिनेत्री है जिनको डिंपल है, वो बहुत क्यूट भी लगती है। तो कुछ स्पेशल डेज आज सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा और क्या स्पेशल है डेफिनेटली आपको पता लगेगा। मुरादाबाद से जुड़ी दो खबरें फटाफट से आप तक पहुंचनी है, इस स्टेशन पर डेफिनेटली पहुंचाऊंगा अभी। एंड यार आई डोंट नो क्यों मुझे कॉल्स आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉल ऑन ईयर तो नहीं हो पाई। एक मैम से बात हुई बट वो जैसे ही ऑन ईयर होने ही करने वाला था और कॉल डिस्कनेक्ट, शायद कोई ग्लिच है, कोई नेटवर्क इशू हो रहा है। वेल बाय द वे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और शायद आज हम और आप बात कर ही नहीं पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, हमारी बातें तो आपके साथ यहां पर ना सही लेकिन व्हाट्सएप पे तो आप कर ही रहे हो ना। व्हाट्सएप पे कर लो यार, चलो कोई नहीं, व्हाट्सएप पे तो ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं मेरे पास। थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। कौन है जरा सुनते हैं इनको। जी नमस्कार,
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम जी, बिल्कुल जी, कहिए
1: आनंद भाई कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया
1: हूँ। बहुत बढ़िया,
0: हाँ जी मैं बहुत बढ़िया हूँ,
1: और मौसम भी बढ़िया ही होगा।
0: बिल्कुल बढ़िया होगा सर है।
1: और आपकी बातें सुनकर के आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आप नाश्ता करके नहीं आए हैं।
0: ओहो,
1: आप सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी में कोई ना कोई नाश्ता बताने का ट्रिक मिल जाए इनको, वही करके आए।
0: ऐसा नहीं है भाई,
1: कोई बात नहीं, हमसे कहिए आनंद भाई, हम आपको नाश्ता पहुँचा देते हैं।
0: अच्छा क्या बात है,
1: ब्रेड पकौड़ों के साथ में।
0: अच्छा
1: आनंद भाई एक बात है
0: जी,
1: कि अगर आपका जमीर और नियत साफ है,
0: हाँ जी
1: अगर आपका जमीर और नियत साफ है
0: जी,
1: तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
0: जी
1: कि कोई आपको अच्छा कहता है या बुरा।
0: बिल्कुल सही बात,
1: आप केवल अपनी नियत से जाने जाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: दूसरों की सोच से नहीं।
0: करेक्ट,
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम, थैंक यू सो मच, आपको भी राधे राधे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यार ब्रेकफास्ट करने की बात तो आप मत ही करो यार, फिलहाल ये गाना डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा। कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, वक्त हो गया है स्टूडियो की घड़ी में 9:36, आप आनंद के साथ हैं। एंड अगर आप भी कुछ स्पेशल बोलना चाहते हैं तो भैया आपका वेलकम है, आप भी बोल डालो, मैसेज कर डालो 9837896896
2: पर। Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
3: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई जिग करो स्वच्छता की जिद करो
7: अब क्या तोड़ दिया नालायक सॉरी
8: नलायक बेटा
0: हाँ जी गुड मॉर्निंग नमस्कारम क्या हाल चाल
9: सुन रहे हैं बिंदास

0: क्या बात है यार, जब हैरी मेट सेजल का एक गाना जिसको सुन के सच में मजा आ गया यार। एंड सच बता रहा हूँ यार, इतने बढ़िया गाने होते हैं ना सुबह सुबह सुन के सच में मजा आ जाता है, मुझे तो आ जाता है, sure मेरे लिसनर्स को भी आता होगा यार। 9:43 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ हैं आप। वेलकम बैक है जी, वेलकम बैक है। आपको बता दे भैया, अभी बताया जा रहा है कि अब मुरादाबाद में भी बनेगा गर्ल्स स्टेडियम। एग्जैक्टली हाँ जी भैया, तो मुरादाबाद में यूपी का दूसरा गर्ल्स स्टेडियम जल्द ही जो है आकार लेगा। एंड इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उनकी तरफ से जो है मोहर लगा दी गई है, यानी कि अब प्रस्ताव की तैयारी है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि जो है अब मुरादाबाद के अंदर गर्ल्स स्टेडियम भी बनेगा। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग न्यूज, और मुझे लगता है ये होना भी चाहिए यार, बहुत जरूरी है। और बाकी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मुरादाबाद शहर के अंदर ना जो ये गड्ढों की प्रॉब्लम है ना, ये भी सॉल्व होनी चाहिए ना। गड्ढे जब देखो पानी भर जाते हैं, जहां भी आप जाओ एकदम वाटर लॉगिंग हो जाती है, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है यार कई बार। यू नो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी हम रोड पर निकलते हैं बाहर, तो हम अक्सर देखते हैं कि तुरंत जैसी थोड़ी सी बारिश हुई, तुरंत जो है मुरादाबाद में जो सड़कों में गड्ढे हैं ना, उसमें तुरंत पानी भर जाता है यार। तो वो जो गड्ढे हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कई बार उसमें ऑटो रिक्शा का पहिया घुस जाता है, कई बार बाइक वालों की जो है उसमें बाइक चली जाती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर निकलने में ना। तो इससे रिस्क भी है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो गड्ढे हैं इनको भरना चाहिए। क्या लगता है आपको, है ना? इस पर डेफिनेटली बात करेंगे हम किसी और दिन। फिलहाल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भैया कल शाम जो झमाझम बारिश हुई है ना मुरादाबाद में, उसके बाद जो मुरादाबाद का मौसम हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, मतलब एकदम झमाझम बारिश कल शाम को हुई है। एंड 4:30 के बाद जो झमाझम बारिश शुरू हुई है मुरादाबाद की सड़कों में, स्पेशली हम कांट रोड की तरफ अगर मैं बात करूँ, तो बहुत झमाझम बारिश थी और मैं खुद उस वक्त बाहर ही था उधर की तरफ ही। एंड झमाझम बारिश से जो है गर्मी से तो राहत मिली ही है, साथ ही साथ मुरादाबाद का मौसम बहुत सुहाना हो गया है कल शाम के बाद। एंड ऑफकोर्स अभी भी मौसम सुहाना होगा ही, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो सावन ने तक दे दिए, जैसे मतलब एकदम जो है शुरू हो गया है ये झमाझम मॉनसून का वेदर, है ना। एंड मौसम तो है ही अच्छा, लेकिन इस मौसम में आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधानियों के साथ ही निकलना है बॉस, क्योंकि बारिश का जो पानी है ये आपको थोड़ा सा दिक्कत में भी डाल सकता है। तो एकदम से बारिश में आपको नहीं भीगना है, मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगर आप बारिश में गीले हो भी रहे तो तुरंत बाहर से आके चेंज करें, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए आपको एक सवाल यहाँ पर देना चाहूंगा आज की सुबह, इसका जवाब आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करके पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर मैसेज करके। हाँ जी, आपसे बिल्कुल आपसे ही सुन रहे हैं, इसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा 9837896896 पे। और सवाल बहुत सिंपल होने वाला है आपका, मेरा आज का जो क्वेश्चन है आपसे जो मैं पूछने वाला हूँ, एक गाना प्ले करूंगा, इस गाने को आपने मेरे को बताना है, जो गाना है वो कौन सी फिल्म से मैंने लिया है।
1: दीवाना दिल दीवाना,
0: अमेजिंग सॉन्ग
1: दीवाना।
2: चलो भैया मैसेज करो,
1: दिल दीवाना।
0: ये जो गाना भी चल रहा है ये कौन सी फिल्म से लिया है मैंने आज की सुबह, आपको मेरे को मैसेज करना है।
1: कब से करे है तेरा इंतजार,
0: मैसेज करके बताओ फटाफट से। अभी जो आपने गाना सुना है, ये गाना कौन सी फिल्म से है जो आज की सुबह आप सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन 9837896896 पे आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब सेंड कर देना है आज थर्सडे की सुबह मेरे नंबर पे। अगेन रिपीट करो मेरा सवाल, ये गाना कौन सी फिल्म का है, जरा ध्यान से सुनो पाजी, जरा आ जाओ। अरे बोल दो यार अब।

इंतजार। व्हाट्सएप करके बता दूं मेरे यार, जो भी आपने सुना है भैया ये गाना कौन सी फिल्म का है, यही पूछ रहा हूँ मैं आज आपसे। जब तक आप मैसेज करो तब तक मैं गाना सुन के आता हूँ और एक कुछ खास इन्फॉर्मेशन और लेकर आता हूँ फटाफट से। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। आई विल बी राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नेक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया गाना भी आपने एंजॉय किया। सच बताऊं, इतने बढ़िया बढ़िया गाने सुबह सुबह सुनने को मिल जाते हैं ना यार, सुबह ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई साहब।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
0: चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे मैसेज आपने मुझे कर दिए हैं, उसके लिए मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आपने किए हैं, बड़ा अच्छा सा। मैंने आज आपसे सवाल भी किया था भाई साहब, आपको आइडेंटिफाई करना था ये गाना कौन सी फिल्म से है। बड़े सारे गलत जवाब आ रहे हैं यार, ऐसे मत करो, मतलब उम्मीदों पे पानी मत फेरो मुरादाबादी।
2: दीवाना, हाय हाय, दिल दीवाना।
0: भैया कौन सी फिल्म से है गाना?
2: दीवाना, तेरा दीवाना।
0: व्हाट्सएप करके बताना है।
2: कब से करे है तेरा इंतजार।
0: मैसेज कर देंगे अब आप मुझे 9837896896 पे। ठीक है जी, आज बहुत ही प्यारी सुबह। मैं आपसे बस यही पूछ रहा हूँ कि भैया देखो, बड़े सिंपल क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए, आपको बस आइडेंटिफाई करके बताना है। इतना बढ़िया गाना है, इतना बढ़िया मूवी है ये, एंड ऑफकोर्स इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ऑफकोर्स आप दे ही दोगे यार। आपको पता है ये जो आप चिप्स खाते हैं, ये बहुत ही यू नो रैंडमली ये चिप्स का आइडिया किसी के दिमाग में आया था, और ये कैसे बने थे, ये को इंसिडेंट की वजह से बन गए थे चिप्स। एंड जो हम लोग पॉप्सिकम्स खाते हैं वो भी बहुत यू नो एकदम रैंडमली किसी के दिमाग में, इस थॉट आया नहीं था, ये प्लानिंग के साथ नहीं, बहुत मतलब एक को इंसिडेंट हुआ और ये एकदम से बन गया। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आस पास देखते हैं ना, वो बिल्कुल बनाई नहीं गई हैं। कुछ चीज़ें तो बस ऐसी हैं जो एकदम से हो गई हैं, एंड उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसे भी हो जाएंगी यार। एक बड़ा रिसेंटली इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि रोम दुनिया का वो शहर है जिसकी आबादी ने सबसे पहले 10 लाख का आंकड़ा पार किया था। एंड भाई साहब ये रिसर्च में जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा, ओ माय गॉड, क्या सच में है? ओहो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में डेफिनेटली पता चलता रहता है। आपको बताते चलें भाई साहब, ये जो सिगरेट एंड लाइटर होता है ना, सिगरेट वाला लाइटर, इसकी खोज बताया जाता है कि माचिस से पहले हुई थी। एंड ये मैं अभी स्टडी कर रहा था कि कुछ चीजें मैं चेक आउट कर रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने निकल कर, एक लिस्ट बेसिकली पॉप हो रही थी, तो मैंने कहा जब ये पॉप हो ही रही है तो इसको फिर मैं निकाल ही लेता हूं। तो आपको बता दें भैया, बताया जाता है कि सपने में आने वाला हर एक जो हर एक फेस होता है वो हम यू नो एक बार वो हम जरूर देखते हैं। ऐसे बताया जाता है कि अपने आपके सपनों में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो कहीं ना कहीं रियलिटी से बहुत कनेक्ट करती हैं। आई डोंट नो, कहीं बड़ी तो ऐसे सपने भी आते हैं जो हम रात को देखते हैं और सुबह उठते ही भूल जाते हैं। दिमाग पे प्रेशर डालने के बाद भी हमें याद नहीं आता कि भैया हमने रात को सपने में देखा क्या था।

0: भाई साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है. और जब भी मैं फैक्ट पढ़ रहा तो मुझे समझ आया कि ये कैसे फैक्टर्स हैं यार, ये कैसे कैसे सच और कैसे कैसे चीजें यू नो बनाई जाती हैं. बड़ी यू नो अलग सी चीजें हो जाती हैं कई बारी. तो अभी मैं जब स्टडी कर रहा था उसमें बताया गया कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी नाक गर्म हो जाती है. तो अगली बार अगर आप किसी से झूठ बोले तो जरा चेक कर लेना यार अपनी नोज को, क्या सच में वो गर्म हो रही है नहीं. मतलब जब मैं पढ़ा था लूज माई माइंड की यार ये चल क्या रहा है. एंड जेनरली जब मैंने इसमें स्टडी करी तो क्या ऐसा होता है बड़ी. अब ये तो मेरे को लगता है कि मेरे को ट्राई करना पड़ेगा यू नो इसको जेन्युइनली. मैं बताऊं तो जब मैं किसी को झूठ बोलूंगा तो मैं चेक करके देखूंगा कि मेरी नॉस गम होगी. यदि आप भी ये चीज ट्राई करिएगा. एंड मतलब ये कैसा फैक्ट है मुझे भी समझ नहीं आया कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी नाक गर्म हो जाती है, आपकी नोज गर्म हो जाती है. चलो भाई ट्राई करते हैं इसको भी. देख रहे हैं आप मतलब कितनी सारी नई नई चीजें निकाल के जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ. लेकिन आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं मुझे, थैंक यू वेरी वेरी मच. और अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. फिलहाल बहुत कुछ है बताने के लिए लेकिन समय नहीं दे रहा है इजाजत. कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है क्योंकि 10:02 हो गए हैं स्टेशन की घड़ी में. और यहाँ पर आपके मैसेज लगातार मुझे मिलते जा रहे हैं. और देखो एक मैसेज बड़ा प्यारा मेरे पास पहुंचा है, किसी ने वॉइस नोट पहुंचाया है. ये डेफिनेटली मैं इसको अभी शामिल करने वाला हूँ. जरा सी देर में कुछ एड ब्रेक सुनते हैं जल्दी से, उसके बाद ये वॉइस नोट को फटाफट शामिल करते हैं अभी इसी स्टेशन पर.
1: आप सुन रहे हैं
2: आवश्यक सूचना. 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है. पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है. पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है. अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा. किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें. निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली.
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी.
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे. हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना.
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना. आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त.
6: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा.
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा.

खबरा खा। थर्सडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। ये है बिंदास मॉर्निंग, जहां सारी कड़क अपडेट आपको मिलती है। आई विल बी राइट बैक, बहुत ही प्यारा गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज। इस गाने के बाद बताता हूँ कौन है आज के शो का सुपरस्टार।

क्या बात है, रब राखा। इतना प्यारा गाना भी आपने सुना। वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आनंद को। वही गुड मॉर्निंग, जाने का समय हो गया है भाई। स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 10:09। कभी कभी मैं सोता रहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं अभी तो 9 ही बज रहे हैं, जबकि बड़ा 10 बज चुके हैं। देखो अभी जाने का मन नहीं करता ना, इसलिए खुद को कभी कभी ऐसे तलाशा देता रहता हूँ, नहीं अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा यार, कितना ही तलाशा दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे आज की सुबह बड़ा मजा आया आपके साथ बातचीत करके, और कैसे ये जो समय है भाई साहब निकलते चले जाते हैं ना, टाइम का तो पता नहीं चलता, लेकिन आप और मैं भी निकल चुके हैं अपने अपने डेस्टिनी पर। आज मैंने पूछा था आपसे एक सवाल, ये गाना आपने मेरे को बताना था कौन सी फिल्म का है,

0: ऐसे गाने को मैंने कौन सी पिक्चर से लिया था यही आपको मेरे को बताना था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने अच्छे जवाब दिए। दो तीन ही गलत जवाब आए हैं, लेकिन सबसे पहले शाजिया जी ने मुझे सही जवाब दिया है, कांग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी लोगों ने भी राइट आंसर्स किए हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए। एंड मैम ने एक वॉइस नोट भी मेरे साथ जो है शेयर किया है आज की सुबह, तो इमीडिएटली जरा सुनते हैं क्या कह रही है वो।
1: हेलो आनंद, मुरादाबाद, आपका शो मुझे बहुत पसंद है, मैं ड्राइव करती हूँ तो पूरे रास्ते आपके गाने सुनती हूँ। आप सभी चीज़ों की बहुत अच्छी अपडेट देते हैं, शहर में क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, क्या नया है, और हाँ आपके बहुत अच्छे अच्छे शोज़ भी आते रहते हैं, सब चीज़ों की आपकी बहुत अच्छी अपडेट होती है। हाँ आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो 89.6 FM मुरादाबाद।
0: क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही अच्छा बोला शाजिया जी आपने, तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, जोरदार तालियां आपके लिए, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन आज की सुबह मैसेज जुड़ने के लिए। गाइज आप भी शाजिया जी की तरह डेफिनेटली अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं मैसेज करके 9837896896 पे, व्हाट्सएप करके, बहुत कम लोग होते हैं
2: करे है तेरा,
0: इतनी अच्छी बातें करते हैं।
2: कब आएगी मेरी,
0: नहीं मैं बिल्कुल नहीं गाने वाला, बिकॉज मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज अच्छी हो सकती है मेरे दोस्त। कंग्रेचुलेशन ऑल द पार्टिसिपेंट्स आज की सुबह, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। आप सुन रहे हैं आनंद को
2: दिल दीवाना।
0: एक और वॉइस नोट आया है इसी गाने के बीच, जरा इनकी आवाज भी सुन लेते हैं, हमारी प्यारी रेगुलर लिस्नर है, हमेशा कनेक्ट रहती है हमारे साथ।
3: राधे आनंद जी, राधे राधे। म्यूजिक चलाई है उस मूवी का नाम है कभी हाँ कभी ना,
0: क्या बात है,
3: उसमें शाहरुख खान हीरो थे, हमें भी फिल्म आया गया है ये गाना।
0: सही जवाब है आपका,
3: थैंक यू। और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है,
0: थैंक यू सो मच मैम।
3: आपका प्रोग्राम सुनने से मेरे शहर में जो जो एक्टिविटी होती है सब बारे में पता चल जाता है,
0: बिल्कुल।
3: काफी अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी,
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही तो हमें भी चाहिए कि हमें जो है एप्रिसिएशन मिलता रहे यार। फिलहाल ये गाना यहाँ पे मैं छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए आज की सुबह।
2: मेरे दिल के करीब कोई ना, तेरे सिवा अपना नसीब कोई ना।
0: सब लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। मयंक जी आप जुड़े मेरे साथ, इसके अलावा हमारे पास जुड़े थे अयुब अली जी रामपुर से, बबलू सैनी जुड़ चुके हैं मुंबई महाराष्ट्र से।
2: बोलो इस मुझको जलाए।
0: हाय आनंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? और हम जो है फिलहाल घर का काम कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।

0: अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू. एक और मैसेज आ गया. गुड मॉर्निंग आनंद सर, आप कैसे हैं? हम घर के काम की वजह से आपको मैसेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका शो रेगुलरली सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है. एंड सुबह की शुरुआत आपके शो से होती है. सबीना खान जी मेरे साथ जुड़ रही है रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद करूला मुरादाबाद से. सहारनपुर से जुड़े हैं जोन रोजी पलविलीज, लिखते हैं गुड मॉर्निंग. तीन लोग हमेशा परेशान मिलेंगे, पहले वफादार, दूसरे मददगार और तीसरे साफ दिल के इंसान. बात तो सच बोली साहब. हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीना कुंदनपुर से, लिखती है हेलो आनंद गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, कैसे हालचाल हैं? ये लिखती है कि सबसे बढ़िया है बनाना शेक आप बनाओ, बटर वाला, सबसे इजी बनेगा और हेल्दी भी होगा, और आप उसे पीकर आओ, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी. क्या बात है. ललिता कश्यप नवीन नगर से जुड़ी है, लिखती है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आनंद जी, गुड मॉर्निंग. नीतू जी जुड़ चुकी है लाइन पार ढक्का से, लिखती है आनंद भाई कैसे हालचाल है, मेरा नाम नीतू सिंह है, सच में मौसम आज बहुत ही औसम है, और मैं आपको जो है बस ये कहना चाहती हूँ कि आप गाने बहुत प्यारे प्यारे प्ले कर रहे हो, सच में एकदम आनंद ही आ रहा है एफएम सुनकर आनंद जी के साथ. थैंक यू सो मच, हम लोगों का बहुत एंटरटेनमेंट आप करते हो. थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग. सच में बहुत प्यारा मौसम है, मैं भी बहुत प्यारा हूँ. हाय रिहाना, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है. मेरे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्षिका. हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आनंद? आई एम गुड, लिखती है थैंक यू सो मच, प्यारे प्यारे गाने और भजन प्ले आप करते हो, मजा आता है. विक्की सागर जुड़े हैं, रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. मैम ने लिखा था दिल वाले दूल्हे ने ली जाएंगे, गलत जवाब हो गया मैम. लक्ष्मी देवी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह. डॉक्टर सुरेश कुमार जुड़े हैं प्रेम नगर से. एंड डीके अरोड़ा जुड़े हैं चंदन नगर से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. साथ में दुर्गेश सैनी जुड़ चुके हैं आज की सुबह. राजा कश्यप जुड़े हैं मेरे साथ राइट आंसर के साथ. बेबी राधिका मेरे साथ जुड़े हैं गुड मॉर्निंग सही जवाब के साथ. मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जुड़े हैं, इन्होंने भी एकदम राइट आंसर दिया है. लिखते हैं लोग कहते हैं अगर सुबह अच्छे लोगों को याद किया जाए तो वक्त अच्छा गुजरता है, हमने सोचा एफएम मुरादाबाद पे याद किया जाए सारे श्रोताओं को, वेरी नाइस. हरे कृष्णा जी राम गोपाल बुद्धि विहार से जुड़ चुके हैं आज की सुबह. रिजवान खान साहब जुड़े हैं मेरे साथ राइट आंसर के साथ. ग्राम बीजना से कश्मीर से भी दोस्त जुड़ चुके हैं. हीरो हिंदुस्तानी दर्पण भैया गलत जवाब हो गया. भारती जी जुड़ चुकी हैं. हेलो भारती जी, हाउ आर यू, वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बहुत मजा आया. 10:15 हो गए, बाय बाय बाय, कल मिलता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. लेकिन टेक्स्ट मैसेज भी पढ़ लो यार. हेलो सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, हाउ आर यू? हम जो है आपको डेली सुनते हैं, बहुत मजा आता है. थैंक यू सो मच, आपके गाने बहुत ही अच्छे रहते हैं. थैंक यू. एक और मैसेज आ गया. गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सर आप? जब भी आप अच्छे गाने बजाते हैं मुझे बहुत ही मजा आता है. थैंक यू सो मच. ममता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ आज की सुबह. एक और मैसेज आ गया. गुड मॉर्निंग, हेलो भाई कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, अमरोहा से हैं आप, कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ नेहा जी.
1: मुझे तुझे तरकीब कोई ना.
0: चलिए गाइस कल मिलते हैं, अभी के लिए हैव अ फैबुलस डे, एंजॉय करते रहिए ढेर सारे अच्छे गाने, अगली कंपनी खुशी के साथ एंजॉय करिएगा. मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको टाटा बाय बाय.
2: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद.
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक.
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई.
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी.
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट.
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077.
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा. 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7055011681.
6: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है.
7: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
6: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए. ekcc.nabard.org.
7: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
6: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए.
7: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
6: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है.
7: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है.
6: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
7: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में.
6: EKCC, साख से समृद्धि.
7: नियम और शर्तें लागू.
8: अशांति इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
7: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
0: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
8: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मौसम भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बाहर का ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कभी बारिश हो जाती है तो कभी बंद हो जाती है, लेकिन बादल भी हैं। और आप सभी का खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज, है थर्सडे का, गुरुवार का दिन है और वक्त मैं आपको बता देती हूँ 10:26, 9 जुलाई की तारीख है। और दोस्तों कहते हैं ना कि एक छोटा सा नमस्ते सिर्फ अभिवादन नहीं बल्कि सम्मान, विनम्रता और अपनापन भी होता है। जब हम दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं ना, तो मानो सामने वाले के भीतर बसे ईश्वर को प्रणाम करते हैं। यही भावना हमें सिखाती है कि हर इंसान सम्मान के योग्य है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन करें तो रिश्तों में मिठास और दिलों में अपनापन अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए आज का पॉजिटिव विचार यही है कि दोस्तों नमस्ते केवल एक शब्द नहीं बल्कि संस्कारों की पहचान है। सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए और हर दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ कीजिए। कहते ना दोस्तों, जहाँ विनम्रता होती है वहाँ रिश्ते खिलते हैं और जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईश्वर स्वयं बसते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए। और एक चीज बहुत ही स्पेशल है, बहुत प्यारी है, वो है आपकी स्माइल। जी हाँ, तो उसको कभी भी कम मत होने दीजिएगा। मुस्कुराइएगा, खुशी आपके साथ है, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। और आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको धीरे धीरे खुशी यहाँ पर बताएगी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 और एक बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए आज की सुबह, इसको सुनिएगा। बस मैं आती हूँ लौट कर।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने एक खूबसूरत सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी लुका छुपी से। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले एवरीवन, अभी मैं आपके साथ रहने वाली हूँ पूरे 12 बजे तक। तो बस आप भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और हाँ, अपनी बातें भी हम तक शेयर कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस पर आप अपनी थॉट, अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अब आप अकेले नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। दोस्तों, आज 9 जुलाई है और आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज नेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। इस दिन 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवीपी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो जाता है दोस्तों, एबीपी की स्थापना हुई थी। और स्टूडेंट, आपको पता है ना दोस्तों कि एक विद्यार्थी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने ड्रीम, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से अपनी पहचान बनाता है। और कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल पर्सन कभी ना कभी एक स्टूडेंट ही था, इसीलिए सीखना कभी मत छोड़िए क्योंकि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी है। टुडेज पॉजिटिव मैसेज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ टॉट जी। हाँ दोस्तों, बस आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो हर दिन कुछ नया सीखने की हैबिट बनाते हैं। नॉलेज इज द रियल पावर एवरीवन। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं पूरी डेडिकेशन के साथ कीजिए और हर दिन को अपने आप स्पेशल बनाइए, खास बनाइए, क्योंकि हर एक दिन हमें एक नया मौका देता है आगे बढ़ने का, बेहतर से बेहतरीन बनाने का। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी आप मिस ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। और इस वक्त मुझे बहुत सारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं राइट नाउ, कुछ शॉप पर बैठे हैं, कुछ अभी ऑन द वे कार में जा रहे हैं और कुछ अभी हमें किचन में, जो हमारी फीमेल्स, जो विमेन हैं जो इस समय मुझे सुन रही हैं, वो काम में व्यस्त हैं और बाहर के मौसम का भी आनंद उठा रहे हैं आप। मैं देख रही हूँ गर्मा गर्म एक कप चाय लेकर भी बैठे हैं विंडो के पास। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और आप अपने संदेश मुझ तक पहुँचाते रहिए एवरीवन। आज की सुबह यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपने इतने प्यारे मैसेज पहुँचाए हैं और इतना कीमती वक्त हमें दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज यहाँ पर पहुँचाते हैं, ये सहारनपुर से मैसेज हमारे पास आया है शहीद मंसूर जी का। कहते हैं आरजी जी आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राइट नाउ, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान जी, और साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है इस वक्त ये कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। और आज की सुबह ये ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। फिलहाल हमारे हाथ में तो अभी पानी की बॉटल है, क्योंकि पानी पीना भी स्किप मत कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये प्रियंका का मैसेज हमारे पास आया है मंझोला से। कहती हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग डियर, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी सुबह को बनाने के लिए आए हैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल, क्योंकि मौसम भी इतना प्यारा है तो एक प्यारा से गाना भी बनता है ना आज की सुबह।
चलिए आप एक शानदार गाना एंजॉय कीजिएगा, बस मैं आती हूँ लौटकर। और हाँ, आप भी अपने संदेश, अपने मैसेज मुझे पहुँचाइए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा मैसेज पहुँचाना। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर की टेंशन बिल्कुल भी आप मत लेना। मोबाइल नंबर है 9837896896 9839698 ये स्टूडियो का मोबाइल नंबर है, इस पर आपको मुझे मैसेज करना है। चाहे आप टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप, आपकी मर्जी है।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFEM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

क्या बात है दोस्तों, सुबह सुबह शादी की बातें। हाँ हाँ हाँ, देखिए अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना और इस प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी कश्मीर से मेहराजुद्दीन जी की। तो मैंने कहा चलो इसी गाने को सुनवाते हैं और बहुत सारे श्रोताओं का ये ट्रैक फेवरेट भी है, पसंदीदा भी है। तो मैंने कहा चलो आज सबकी पसंद को हम प्ले कर देते हैं और बहुत प्यारा गाना अभी आपने सुना दोस्तों। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, वक्त हुआ है 10:52 और एवरीवन मेरा आज के सुबह आपसे बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। दोस्तों आज नेशनल स्टूडेंट्स डे है एंड इसी पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मालूम करना चाहती हूँ और वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। दोस्तों क्या आपको अपने कॉलेज का पहला दिन याद है? उस दिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी या फिर थोड़ी सी घबराहट? हाँ बताइएगा, जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे थे, आपका कॉलेज का फर्स्ट डे था, तो आप उस दिन आपके मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी या फिर थोड़ा सा होता है ना कि घबराहट, थोड़ी सी नर्वस भी हम होते हैं, तो आप मुझे बताइए। और आपके स्कूल या फिर कॉलेज की ऐसी कौन सी याद है जिसे आज भी आप याद कर कर मुस्कुरा जाते हैं, बताइएगा। अपने कॉलेज के, अपने स्कूल वाली लाइफ में जरा दोबारा से जाइए और वो ब्यूटीफुल टाइम जो आपने स्पेंड किया है आज हमें, आज आप हमारे साथ वही किसे शेयर कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896, या फिर कॉलेज की कैंटीन, दोस्तों के साथ मस्ती या फिर एग्जाम से एक रात पहले की पढ़ाई, इनमें से कौन सी याद आज भी सबसे ज्यादा आप मिस करते हैं, बताओ बताओ मुझे। और जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो भी रिप्लाई कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। और हमारे पास यहाँ पर और भी मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर राधिका के मैसेज आए हैं, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर दुर्गेश सैनी जी का कल्याणपुर मुरादाबाद से, ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, और ये बरसात का गाना सुनना चाहते हैं। क्या बाहर रिमझिम बारिश हो रही है, बताइए मुझे। दोस्तों जब मैं आई थी तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ बादल फुल तैयारी में थे बरसने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये कहती है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और दोस्तों आज बहुत कुछ स्पेशल है, सब आपको बताना है, अभी बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ और खूबसूरत गीत यहाँ पर हैं आप सभी के लिए। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए खुशी के साथ और मुस्कुराते रहिए। हाँ मुस्कुराना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अभी मैं ट्रैक एक प्ले कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है, अरिजीत सिंह जी की आवाज में तो नहीं है लेकिन हाँ अलका याग्निक और साथ में आतिफ असलम जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आज की मॉर्निंग, एंजॉय कीजिएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से

0: हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? बताओ अपने हालचाल। मौसम को देख रहे हैं, टुक टुक निहार रहे हैं। मौसम बहुत ही ऑसम है भाई बाहर का। ऐसे मौसम में ना बताए आपको दोस्तों, नींद बहुत अच्छी आती है। दिल नहीं करता कि उठ जाओ, लेकिन उठना पड़ता है, क्योंकि जब जिम्मेदारियां होती है ना, तो फिर उठाने की नहीं, खुद ही ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, है ना दोस्तों? ऐसा ही होता है ना। हाँ, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी बात को समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों, आज देखिए 9 जुलाई के दिन अपने आप में स्पेशल है, और आज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, 9 जुलाई का दिन भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता संजीव कुमार जी की। 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में जन्मे संजीव कुमार जी का असली नाम था हरी भाई रजीवाला। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही उन्होंने अभिनय का उन्हें शौक था, और उन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, चाहे शोले में ठाकुर बलदीप सिंह का गंभीर किरदार हो, आंधी, कोशिश, अंगूर या फिर नया दिन नई रात जैसी फिल्में हो, हर भूमिका में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। सबसे खास बात ये है, ये थी कि दोस्तों, उन्होंने अपने कम उम्र में ही कई बार अपनी उम्र से बड़े किरदार इतने शानदार तरीके से निभाए कि दर्शक उन्हें देखकर भावुक हो जाते थे। 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार जी की आज भी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किए जाते हैं। 47 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और दोस्तों, सच्ची पहचान खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने हुनर और मेहनत से बनती है, और संजीव कुमार जी का इसे सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है। एंड दोस्तों, आज संजीव कुमार जी की कौन सी फिल्म या फिर किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप मुझे बताइएगा। आज उनकी जयंती है, तो उन्हीं की फिल्म का मैंने ये गीत यहाँ पर सेलेक्ट किया है। बहुत ही प्यारा है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। लेकिन श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कोई अपनी बात या फिर कोई ट्रैक या फिर कोई फिल्म जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है संजीव कुमार जी की, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिलहाल मैं सुनवाती हूँ आपको एक प्यारा सा गाना आज की सुबह।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल

जी दोस्तों, खुशी आ चुकी है। आप ही के अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी राजा और रंक, जो 1968 में आई थी। इस खूबसूरत गीत को गाया था मोहम्मद रफी साहब जी ने। और ये ट्रैक पिक्चराइजेशन था संजीव कुमार जी पर, साथ में कुमकुम जी पर। बहुत ही प्यारा गाना, मुझे पता है हमारे जो बहुत सारे श्रोता हैं उनकी पसंद का ये प्यारा सा गाना था। वैसे दोस्तों, पुराने गाने मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा दोस्तों, अब वक्त हो चुका है एक सवाल का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे पता है कि उसका जवाब आप सब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप पहले बता तो दूं कि सवाल क्या है, तभी तो आप जवाब पहुंचाएंगे ना। तो दोस्तों, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आपको मुझे बताना है कि जो ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, इस फिल्म का क्या नाम है और कौन सी प्यारी सी सिंगर की आवाज है, उस फीमेल सिंगर का आपको मुझे नाम बताना है और जिस फिल्म से ये ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ सॉन्ग, उसका नाम भी आपको मुझे बताना है, फिल्म का नाम आपको बताना है और जिस फीमेल सिंगर ने इस गाने को गाया है उनका नाम आपको मुझे बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब जल्दी जल्दी से पहुंचा पाएंगे। लेकिन पहले गाना तो सुन लीजिए, बिना गाने सुने आप कैसे जवाब दे पाएंगे।

0: हाँ जी, ये पूरा गाना हम नहीं सुनवाएंगे आपको, बाद में सुनवाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। लेकिन मुझे बताओ साथियों कि ये जो ट्रैक मैंने प्ले किया है कौन से फिल्म का है, और इस गाने को कौन सी फीमेल सिंगर ने गाया है, उनका नाम आपको मुझे बताना है। मोबाइल नंबर है 9837896896। ये गाना कौन सी फिल्म का है, इस फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट, मैंने आपसे मालूम किया है कि इस गाने को कौन सी फीमेल सिंगर ने गाया है, उनका नाम आपको मुझे बताना है। फटाफट से व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। हमारी श्रोता बहुत एक्टिव है, मुझे पता है आप जवाब फटाफट से पहुँचा दोगे। बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए और हमें जवाब पहुँचाइए। बाकी अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, एड ब्रेक के बाद कुछ प्यारे गाने, उसके बाद खुशी लौट कर आने वाली है।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला, खुशी आपके साथ है और आपके लाजवाब जवाबों को देखकर तो खुशी बहुत खुश है। थैंक यू एवरीवन। हमने आपसे आज के मॉर्निंग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपसे मालूम किया है कि आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है कि ये जो गाना है बताइए कौन सी फिल्म का है और कौन सी फीमेल सिंगर ने इस गाने को गाया है, बताएंगे आप? चलिए सुन लीजिए।

हाँ जी, आपको यही जवाब मुझे पहुंचाना है, बताना है कि कौन से फिल्म का गाना है एंड कौन से फीमेल सिंगर ने इसको गाया है, उनका नाम आपको मुझे बताना है। एक बार फिर से खुशी आपको ये मौका दे रही है, जल्दी से अपने जवाब हमें पहुंचाएगा। एंड उसके अलावा और यहाँ पर मैसेज आए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सही जवाब पहुंचाए हैं और उनके नाम भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ और भी मैसेज आए हैं हमारे पास। यहाँ पर मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजे जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं मोहन स्वरूप जी बिलासपुर रामपुर से, एंड इन्होंने हमें गुड मॉर्निंग विश किया है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास अलीशा का आया है, ये कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपने अपना फेवरेट गाना सुना होगा तो आपको भी अच्छा लगा होगा। अलीशा ने हमें जवाब तो पहुँचाया है लेकिन आधा अधूरा है, हमने आपसे इसमें इस गाने में दो चीज़ें पूछी हैं, फर्स्ट मूवी का नाम, सेकेंड हमने पूछा है फीमेल सिंगर का नाम, बताइएगा उनका क्या नाम है। आज उनके लिए बहुत स्पेशल दिन है, वो भी आपको धीरे धीरे हम बताएंगे क्यों स्पेशल है। बस आप बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मैं अभी लौट कर आती हूँ एक अमेजिंग ट्रैक के उस पर।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

एवरीवन, जब इतनी प्यारी सी आवाज में इतना ब्यूटीफुल ट्रैक सुनेंगे तो मन तन दोनों ही डोलने लगते हैं और हम भी झूमने लगते हैं। क्यों दोस्तों, अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी मुझे कुछ कहना है। करीना कपूर साथ में तुषार कपूर बहुत ही खूबसूरत नजर आए इस फिल्म में एंड आवाज भी बहुत ही प्यारी थी ना दोस्तों। हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था आज की सुबह और बहुत सारे जवाब हमारे पास आए। तो सबसे पहले तो हम आपके लिए क्लैपिंग करना चाहेंगे क्योंकि आप सब इतने प्यारे हैं श्रोताओं। मैं क्या बोलूं, तारीफ में मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत सारे क्लैपिंग्स। क्योंकि आप सबने पार्टिसिपेट किया और सही जवाब दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर किसने पहुंचाए हैं, कौन है वो हमारे शो के। जी हाँ, सुपर सिंगर को जिन्होंने पहचाना है उनका नाम भी तो हमें शामिल करना है। कौन है वो हमारे श्रोता? तो श्रोताओ, चलिए आ गई है वो बारी जिसका सबको इंतजार था और सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचाया है हमारे पास। सबसे पहले सही जवाब पहुंचाया है, नाम शामिल कर लेते हैं चलिए बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें राइट आंसर पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं ग्राम पोस्ट लदावली से। ये अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं, कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और उन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है सर ने कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। एग्जैक्टली राइट सर। और इन्होंने सही जवाब हमें पहुंचाया है अनुराधा श्रीराम की आवाज में। ये ट्रैक था फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन। इसमें एक्टर्स और एक्टर थे सलमान खान, साथ में सुष्मिता सेन। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपने पहुंचाया है, तो आपके लिए जोरदार तालियां। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। लगता है कि आप हाँ रेडियो के दीवाने तो हैं ही, लेकिन फिल्मों के भी बहुत बड़े शौकीन हैं आप। सही जवाब पहुंचा है और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं रिजवान खान जी, जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से सही जवाब के साथ जुड़े हैं फ्रॉम द मूवी बीबी नंबर वन। आवाज अभिजीत भट्टाचार्य और साथ में अनुराधा श्रीराम जी की आवाज है। हाँ जी, राइट आंसर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है विकी सागर जी का और ये भी सही जवाब के साथ हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट राधिका का मैसेज हमारे पास आया है और इन्होंने भी सही जवाब दिया है। बबली अंजान जी ने भी राइट आंसर दिया है और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सही जवाब आ रहे हैं बैक टू बैक। तो दोस्तों, आज अनुराधा श्रीराम जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। जी हाँ, वो अपना 56 बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, अब मैंने नाम तो बता ही दिया है लेकिन आगे अभी बहुत सारी बातें हैं जो आप तक साझा करनी है। दोस्तों इन्होंने बॉलीवुड से

एक साउथ इंडियन सिनेमा तक अपनी गायकी का जादू बिखेरा है और आज जन्मदिन है मशहूर गायिका और शास्त्रीय संगीत कार अनुराधा श्रीराम जी का। जी हाँ दोस्तों, 9 जुलाई 1970 को चेन्नई में जन्मे अनुराधा श्रीराम को संगीत विरासत में अपनी माँ से मिला। महज 6 साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था। हिंदुस्तान और कर्नाटक दोनों शास्त्रीय संगीत में उन्होंने गहरी शिक्षा हासिल की। संगीत में बीए और एमए दोनों में गोल्ड मेडल जीता। उनकी मेहनत और लगन का शानदार उदाहरण है। साल 1995 में संगीतकार एआर रहमान ने उन्हें पहला बड़ा मौका दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में 5,000 से अधिक गीत गाए। एंड बीवी नंबर 1 का गाना जो मैंने आपको सुनवाया, सुपर हिट चुनरी चुनरी, आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। और जब ये गाना प्ले होता है ना, तो पैर ऑटोमेटिकली थिरकने लगते हैं, है ना। सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग ही नहीं, अनुराधा श्रीराम ने संगीत निर्देशन, पॉप एल्बम, भक्ति संगीत और टीवी रियलिटी शोज में जज के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी वे दुनिया भर में अपनी लाइव, क्लासिकल और डिवोशन कॉन्सर्ट से श्रोताओं का दिल जीत रही हैं। मुरादाबाद 89.6 की ओर से अनुराधा श्रीराम जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी आवाज यूं ही हर दिल को सुरों से सजाती रहे। और दोस्तों, अनुराधा श्रीराम जी का जो गाना मैं अभी बात कर रही थी, पॉपुलर ट्रैक है चुनरी चुनरी, तो उस गाने को हम सुनवाते हैं। उसके बाद अभी लौट कर आती हूँ मैं, और भी आपसे बातें करनी है। समय बहुत कम होता है, बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं।

0: मुझे पता है दोस्तों, आपने बहुत सारा डांस कर लिया चुनरी पर। आई होप आज का शो आपने एंजॉय किया होगा एंड फैमिली के साथ। अभी अगर आप अकेले हैं तो अकेले नहीं है, क्योंकि खुशी भी आपके साथ में है, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब बहुत प्यार से कार्यक्रम को सुन रहे थे। इतना प्यार देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, बट इतना सारा मैंने थैंक यू बोल दिया ना, तो अब इसको संभाल के रख लो आप, ठीक है। और चलो अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत प्यारा वॉइस नोट आया है, तो मैं क्विकली इसको प्ले करती हूँ, क्योंकि इतने प्यार से भेजा है हमारे प्यारे से लिस्टर ने, तो सुन लेते हैं।
1: अलीना खान की छोटी सिस्टर बोल रही हूँ। अलीना,
0: हाय अलीना।
1: आप जब भी आती है मैम तो पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है मैम।
0: थैंक यू
1: मैम, मैं आपके लिए कुछ दो लाइनें सॉन्ग की गाना चाहूंगी।
0: ऑफ कोर्स।
1: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी।

0: थैंक यू मैम.
1: मोस्ट वेलकम अलीना, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच. इतना प्यारा आपने गाया है, मेरा तो दिल कर रहा था हरे मैं ना अलीना को स्टूडियो बुला लूं, लेकिन अभी आप मुझसे थोड़ा दूर हो, लेकिन हाँ दिल से करीब हैं, नजरों से भले ही दूर हो, बट बहुत ही अच्छा लगा. आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच. और हमारे पास अभी कुछ और टेक्स्ट मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज भेजा है, इन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन शायरी बड़ी प्यारी लिखी है. तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इतना हैप्पी हो जाते हैं, इतना आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है कि आप अपना नाम भूल जाते हो. दोस्तों ऐसा मत किया करो, प्लीज अपना नाम भी हमारे पास भेजा करो, हमें भी अच्छा लगता है जब आप इतने प्यार से इतनी मेहनत से अपना संदेश हमें भेजते हैं. और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए, हाय खुशी मैम कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून. 12:03 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में. ये हमारे पास सना का मैसेज आया है, उसके अलावा एक और मैसेज हमें भेजा है यहाँ पर. ये राइट आंसर हमें पहुंचाया है फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1 से, ये ट्रैक था. एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया है. और इन्होंने एक शायरी भी लिखी है, कहती हैं हेलो खुशी मैम कैसी हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी होंगी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है. और एक शायरी जो मैं आपके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ, हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता. थैंक यू सो मच, ये डायरी ये शायरी प्यारी सी अपनी डायरी से आपने हम तक शायरी मतलब पहुंचाई है, शेयर की है, थैंक यू सो मच. बट अपना नाम नहीं लिखा है, ये मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है इस बात का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आप अपना नाम भी यहाँ पर मेंशन करते. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए अमरोहा से, नेहा का, और ये कहती है नमस्ते मैम आप कैसी हैं, कॉलेज के पहले दिन मुझे घबराहट हो रही थी बट मैं बहुत रोई भी थी, ओहो डर भी लग रहा था, बट कॉलेज के पहले दिन थोड़ा सा नर्वस तो होते ही हैं क्योंकि सब कुछ न्यू होता है एंड न्यू फ्रेंड्स न्यू कॉलेज सारी चीज़ें नई होती, एक नई जगह पर जाते हैं तो अपने आप में थोड़ा सा नर्वस तो होते ही हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी कहीं भी हम जाते हैं फर्स्ट डे तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन नर्वस होने की बात नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए. और जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं ना तो यकीन मानिए सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं. और मुझे अभी दीजिएगा जाने की अनुमति क्योंकि 12:05 हो गए हैं. देखो जब मैं आपसे बात करना शुरू करती हूँ ना तो पता नहीं कैसे वक्त गुजर जाता है, ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, अभी खुशी को नहीं जाना है, पर टाइम है ना हमें और अनुमति नहीं दे रहा है. लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी 3 से 5, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, गर्मा गर्म खाना बनाइए, सबको खिलाइए और आप भी खाइए, है ना, और इस मौसम का भी आनंद लीजिएगा. फिलहाल बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू आप सभी को पूरे दिल से.

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त RJ रीना। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है हमारे अपने गांव-गांव के स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहती हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ रीना, मैं भी उस बच्चे को जानता हूँ।
0: गर्मी का मौसम था, गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत थे। सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया, शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू जिंदा होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह लापरवाही है, जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान तय किया था। इस दिन का मकसद सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए काम करना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे मिलकर हराना होगा।
0: भैया, क्या यह सिर्फ जागरूकता के लिए है या इसके पीछे और भी उद्देश्य हैं?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। यह दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सके। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
0: इस साल की थीम क्या है और इसका क्या मतलब है?
1: इस साल की थीम है ड्राइविंग टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो तकनीक और वो संसाधन है जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
0: सेहतिया भैया, जरा आसान भाषा में बताइए, मलेरिया आखिर होता क्या है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज़ोडियम नाम के एक परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एन्फोलिज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब यह शरीर के अंदर फैलता रहता है?
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुँच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी जो ज्यादा असरदार हैं।
0: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ,
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
1: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं जहाँ साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहाँ ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी, मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, इसे आसान भाषा में समझाइए।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले जलवायु परिवर्तन की बात की थी, इसका मलेरिया से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहाँ भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब यह सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, यह पर्यावरण से जुड़ी समस्या बन चुकी है।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत कहाँ खड़ा है?
1: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 तक के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौत दर्ज की गई। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं वहां।
0: भारत में सबसे बड़ी समस्या कहां है?
1: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
0: भारत का लक्ष्य क्या है?
1: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला ना हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
0: सरकार इस पर कैसे काम कर रही है?
1: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। PHC और सब सेंटर से मुफ्त जाँच और दवाइयाँ उपलब्ध है। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं, और जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें ACT यानी Artemisinin Based Combination थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
0: सेहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे रीना, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत

0: दिया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना और समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
1: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है?
0: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण को रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा न फैले।
1: ये तो योजना हो गई, लेकिन जमीन पर क्या होता है?
0: जमीन पर काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांव में नियमित रूप से इंडोर रेसिड्यूअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती है जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती है।
1: मतलब लोग खुद जाए तभी जांच होता है?
0: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है, इसे एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
1: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ही यह संभव है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया कभी खत्म नहीं होगा। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा नहीं होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं करवाएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
1: तो इसमें आम लोगों की क्या भूमिका है?
0: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पे जांच करवाएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
1: भैया, गांव में कई तरह की बातें भी फैलती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है या खुद ही ठीक हो जाता है।
0: यही सबसे खतरनाक बात है। मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं, बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बुखार को हल्के में ना ले।
1: लेकिन लोग अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं।
0: यही सबसे बड़ी गलती है। जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अभी डॉक्टर ने 3 या 7 दिन की दवा दी है, तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: तो आखिर समाधान क्या है?
0: समाधान बहुत स्पष्ट है। समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी मिलकर काम करना।
1: तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
0: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुँच जाएगी, तब मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहाँ सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
0: हाँ, और यही उम्मीद है। झारखंड के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वे तुरंत आशा दीदी के पास गई, जांच हुई, मलेरिया निकला, उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
1: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
0: हाँ, एक फैसला समय पे जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
1: क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
1: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
0: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
1: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, समाधान है, अब बहाना नहीं चलेगा।
0: अब हम कर सकते हैं
1: और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार के जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ कई। और अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही बहुत सी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई
2: शाये है।
1: महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ,
2: जान तो बच गई,
1: लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
0: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैडफ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली, और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
0: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
1: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: यह बीमारी

0: इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
1: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
0: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता की बात है।
1: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहां यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
0: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
0: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
1: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती हैं और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
0: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
1: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
0: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
0: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
1: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्द शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
0: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रहे हो, तो बिना सोचे जे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
0: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
0: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
1: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
0: ये तो सच में गर्व की बात है।
1: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
0: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
1: बहुत आसान उपाय है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा के जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे
2: बंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
3: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
1: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है। तो यही कहने वाली थी।
1: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है।

0: और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
1: और स्टूडियो में ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है, और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी, जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसके किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप, और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी, तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्राकृतिक है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती थी वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए, और बच्चों को डिसिप्लिन में रहे। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा, और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: करेक्ट, सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो इससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, हाँ तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको
1: ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी। साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा के वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों के वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़ पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नजर से
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल की धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह

0: बार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
1: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
0: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
1: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
0: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
1: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
0: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
1: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
0: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
1: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
0: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
1: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
0: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
1: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
0: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
1: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
0: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
1: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
0: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेड़ी पर मिल जाता था,
1: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
0: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
0: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
0: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
1: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
0: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी, अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान हैं, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है।
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी, ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है? युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
2: हैं। फैमिली ज्यादा?
3: जी मैम,
2: हमारे जो माननीय
3: मुख्यमंत्री
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन,
2: जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की

0: तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
2: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह, महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सर्जित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
2: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजार।
3: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
4: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
5: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन टी ट्वेंटी जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
4: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
5: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
5: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
3: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
5: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
3: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
6: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
7: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
6: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपने समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को, इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
9: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
8: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
3: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
10: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहां हम एक्सट्रीमली हैवी रेन।

0: पालन मांगे जा रहे हैं।
1: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता

0: 68 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। हाजिर हूं आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम लेकर महिला मंच। दोस्तों, मानसून स्टार्ट हो गया है। बारिश की पहली फुहार अपने साथ ठंडक, सुकून और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू लेकर आती है, लेकिन यही मौसम अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो सर्दी, वायरल, डेंगू, मलेरिया और पेट की परेशानी भी साथ ले आती है। तो आज पूरे शो में बात करेंगे मानसून में कैसे रखें अपना और अपने परिवार का खास ख्याल। साथ ही होंगी यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें और कुछ खूबसूरत गीत भी।
1: हाय, मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और बरसात की बीमारियों के बारे में बात हो रही श्रोताओं। बारिश का मजा लेकिन सावधानी भी। बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन अगर भीग जाए तो देर तक गीले कपड़ों में ना रहे, घर पहुंचते ही सूखे कपड़े पहने, अगर संभव हो तो हल्का गर्म पानी या फिर अदरक वाली चाय पी लीजिए, ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना होए। और आप ज्यादा गीले कपड़े में रहेंगे ना तो बॉडी के अंदर ईचिंग शुरू हो जाती है, जो कि वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में यानी कि शुरू हो जाती है ईचिंग होना, तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए। लेकिन एक क्वेश्चन है आप सभी से मेरा, बारिश की पहले फुहार में भीगना आपको पसंद है या गर्मा गर्म चाय के साथ खिड़की से बारिश देखना? आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओं। नंबर है 9837869689।
0: अरे वारीना, अभी आपने बात की बारिश के बारे में, बारिश का मजा लेकिन सावधानी के साथ। अब मैं बात करने वाली हूँ अपने श्रोताओं से खान पीन के बारे में। बारिश हो रिमझिम और खाने की अगर बात ना हो उसमें तो फिर अधूरा सा लगता है ना। मानसून में बाहर का कटा हुआ फूड, फल, खुला खाना और सड़क किनारे की चीजें खाने से बचें एवरीवन, एंड घर का ताजा और गर्मा गर्म खाना सबसे बेहतर होता है। तो बारिश में आपको, मुझे पता है कि गर्मा गर्म पकौड़े बहुत पसंद हैं और स्पेशली मम्मी के हाथ के, वो तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आपको भी बहुत पसंद है। तो देखिए, बाहर अगर आप जा रहे हैं मानसून में तो बाहर के खाने से बचें, अवॉइड करें बाहर का खाना, हो सके तो घर का ही कुछ बना हुआ आप साथ लेकर जा सकते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने कि घर से ही बना कुछ आप लेकर जाइए, क्योंकि बरसात के मौसम में कुछ चीजें ऐसी है जिसका हमें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अपनी सेहत। सेहत सही है तो आप हर काम आसानी से कर लेंगे।
0: और हमारी वो की टैगलाइन भी बड़ी प्यारी सी है ना रीना,
1: सेहत सही लाभ गई।
0: सेहत सही लाभ गई, एग्जैक्टली राइट। जब हमारी सेहत सही होगी तो हम हर चीज का लुफ्त उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। लेकिन रीना, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपको बारिश में क्या पसंद है, पकौड़े या फिर गर्मा गर्म समोसे?
1: मुझे बरसात में देखो भीगना तो मुझे अच्छा लगता है, बट वो भी जब मैं घर पर हूँ ऑफिस जाने से पहले, तो मैं नहा के आराम से उसके साथ होना चाहिए, नहाने के बाद गर्मा गर्म अदरक वाली चाय।
0: नेक्स्ट
1: स्नैक्स में ब्रेड पकौड़ा।
0: अच्छा, ब्रेड पकौड़ा पसंद है आपको?
1: इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है।
0: ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे कुछ आप कह रहे थे, कंटिन्यू कर लीजिए।
1: हाँ, पानी का महत्व। बारिश के मौसम में प्यास कम लगती, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत उतनी ही रहती है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। ऐसा नहीं है श्रोताओं कि बारिश हो रही है आप पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि पता है कि मौसम, वेदर है वो ठंडा हो जाता है और उसमें हमें प्यास बहुत कम लगती है। लेकिन आप नहीं पी रहे, आप अपने लिए मत पीजिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी बॉडी के लिए जरूर पीजिए। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, चाहे बारिश होए। गर्मी में तो हर कोई पीता है भैया, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक घूंट का सिप लेता है, लेकिन बरसात में भी हमें पानी उतना ही पीना चाहिए।
0: बिल्कुल राइट यार, बहुत अच्छी बात बोली है। देखो, पानी की आपने बात की है तो हमारे सामने भी दो बॉटल नजर आ रही हैं, एक रीना की है और एक खुशी की बॉटल है, एंड हम भी बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों। और अब बात करते हैं मच्छरों से बचाव की। देखिए, बारिश के समय में ना आपको भी पता है कि कहीं भी पानी भर जाता है, चाहे वो आपकी छत पर रखा हुआ कोई टूटा बर्तन हो, कोई टायर हो, बहुत सारी चीजें हमारी छत पर रखी रहती हैं जो इसका हम यूज नहीं करते हैं, उनमें पानी जम जाता है। आपके घर के सामने गड्ढे होते हैं, वहाँ पानी जमा हो जाता है। तो दोस्तों, उस पानी को आपको जमा नहीं होने देना है, उस पानी को आपको क्लीन करना है ताकि मच्छर वहाँ पर ना पनपे। और मानसून आते ही मच्छर तेजी से बढ़ते हैं, घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें। पूरी बाजू के कपड़े पहने और रात में मच्छरदानी या फिर रिमप्लेट का इस्तेमाल करें। आपके घर में मच्छरों से बचने का सबसे असरदार देसी तरीका कौन सा है श्रोताओं, आप हमें जरूर बताइएगा। हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे जवाबों का। एंड अभी बात करते हैं रीना से भी। रीना, आप क्या कहना चाहोगे इस मौसम के बारे में? और
1: देखिए, मौसम बरसात का सही होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। अब जैसे बारिश होती है, कीचड़ कहीं पे नालियों के पास में पानी भर जाता है, तो वो पानी क्या है, साफ नहीं है, वो पानी गंदा है। आप उस पानी से निकल रहे हैं, पैदल भी जाएंगे, जरूरी नहीं कि आप हमेशा गाड़ी पर हो, गाड़ी में हो या फिर आप बाइक से हो, पैदल यात्री भी होते हैं।
0: और रीना, ऐसा भी होता है ना, जैसे हम आपने बोला कि सड़कों में रोड पर पानी भर जाता है और जो नालों में कुछ चीजें होती हैं जैसे इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो भी बहकर आ जाते हैं।
1: बहुत सी चीजें हैं जो आप बहके आ जाती है, तो उनका ध्यान रखना है। और ज्यादा देर तक आपको कीचड़ में नहीं रहना है, गंदे पानी में छपा छप आपने ज्यादा देर नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो बीमार होने की पूरी संभावना है, इसीलिए ज्यादा देर तक कीचड़ में नहीं रहना है। इनफैक्ट ज्यादातर वहां जहाँ पे गंदे पानी आ रहे हैं, नालों के पानी आ रहे हैं, उस जगह तो बिल्कुल जाने से बचिए और जितना हो सके जल्दी घर पहुंच के साफ पानी से अपने पैर को वॉश कीजिए और फिर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि आप सुरक्षित रहे। क्योंकि पैर ज्यादा देर तक भीगने से ना, आपने देखा होगा कि जो हमारी उंगलियों के पास के जो स्किन होती है ना, वो सिकुड़ने लगती है और फिर उसमें फंगल्स हो जाते हैं जो आपको इन्फेक्शन भी हो जाता है। और इन्फेक्शन होने के बाद इतनी ज्यादा खुशी, मतलब खुजली इतनी ज्यादा लगती है ना कि आप उसको मतलब बिना खुजाए रह ही नहीं सकती हो। और ये बहुत कॉमन बीमारी है, ये जब इन्फेक्शन पैरों की उंगलियों के आसपास हो जाता है तो उसके लिए फिर इंसान ना सो पाता है ना चल पाता है, परेशान रहता है। तो ज्यादा देर तक आपने कीचड़ वाले पानी में बिल्कुल भी नहीं रहना है श्रोताओ। देखिए, इस मौसम में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और मलेरिया होता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, बहुत सी बीमारियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। और बस ऐसे ध्यान रखिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं।

0: हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मानसून में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, किन चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों को हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है। मौसमी फल, हरी सब्जियां और विटामिन सी वाली चीजें अपनी डाइट में शामिल करें, अच्छी नींद लें और हल्की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। आप इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करेंगे ना तो आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो आप भी चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ भी बेहतर से बेहतरीन हो जाए और आप भी ऐसे ही प्यार से खिलखिलाएं। नोट ओनली क्या करना है आपको, सिर्फ मुस्कुराना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रीना से। रीना, आप क्या कहना चाह रहे हो?
1: देखिए, बरसात में कोमन बहुत चीज है जिसका हम घर से निकलते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना ख्याल जरूर आता है कि बारिश में घर से बाहर निकले ना निकले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम पड़ जाता है जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है।
0: राइट।
1: तो इसके लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो रेनकोट, छाता अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि मौसम खराब हो तभी आप छाता रेनकोट लेकर जा सकते हैं। आपको दिख रहा है कि भाई आज बारिश होने वाली है, घटा हो रही है, तो डेफिनेटली बारिश हो सकती है। जरूरी नहीं 10 बजे नहीं हो तो 12 बजे, 3 बजे ना होगी जरूर। तो अपने साथ अगर आप छाता रेनकोट रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और साथ ही साथ उन सभी से यही कहना चाहेंगे जो गाड़ियों में सफर करते हैं

0: यानी कि बरसात के समय सड़कों पर पानी भर जाता है, तो अपनी गाड़ी यानी कि ज्यादा तेज नहीं चलानी, आपने धीरे चलानी। अपने आसपास के जो लोग चल रहे हैं, पैदल सवारी है, ई रिक्शा वाले हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है ताकि उनकी उनके ऊपर जो छींट है वो ना जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई व्हाइट कलर के कपड़े के बहुत शौकीन होते हैं और व्हाइट कलर के कपड़े पहन कर जाते हैं, और एक बार छींट लगने के बाद ना उस दाग को साफ करना, ये बात तो सिर्फ मम्मियों से पूछा जाए।
1: हाँ रीना यार, ऐसा मैंने भी देखा है कई बारी कि कुछ लोग इतनी मतलब हाई स्पीड में होते हैं कि सामने उन्हें ये नहीं पता होता है कि सामने भी कुछ इंसान है। वो उनका ख्याल नहीं करते हैं, वो इतनी स्पीड में गाड़ी लेकर जाते हैं कि सामने वाले के कपड़े क्या मुंह पर भी छींटे आ जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: कहा। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे जो इस समय हमें ऑन द वे कार में सुन रहे हैं कि प्लीज आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और हाँ म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा हाई कर लीजिए।
0: और तुमने खुशी एक देखा होगा कि बचपन में स्कूल जाते थे,
1: हाँ,
0: तो उस टाइम बहुत कम घरों के अंदर छाता होती थी ना, तो वो कट्टे वगैरह की जो बना लेते थे छतरी
1: थे। मुझे याद आया।
0: हाँ, तो क्या ऐसा काम करा है मतलब जैसे बारिश हुई हो और तुमने कट्टा ले लिया हो मतलब ओढ़ने के लिए ताकि हम गीला ना होए?
1: एक बार
0: छाता नहीं ले जाती थी, मेरे को मजा उसी में आता था।
1: हाँ, तो स्कूल का टाइम था तो हम लोगों की छुट्टी के समय पे ही बारिश हो गई। हमने सोचा था कि मॉर्निंग टाइम में बारिश हो ताकि हम स्कूल ही ना जाए, लेकिन उल्टा हो गया। हम स्कूल पहुंच गए, जब घर आने का टाइम हुआ तो बारिश बहुत जम के होने लगी। तो उस समय हमने कहा कि कैसे जाएंगे, अगर बाहर ऐसे जाएंगे तो सारी किताबें जो बुक्स हैं बैग है वो गीला हो जाएगा। तो फिर हमने अपनी मैम को बोला कि मैम प्लीज हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारा बैग भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहे। तो मैम ने हमें एक बड़ी सी पॉलिथीन दी, मुझे याद है अभी भी, तो व्हाइट कलर के, हम उसको ओढ़कर अपने घर आए। लेकिन रास्ते में रोड पर पानी था, उस पानी में भी हम चल चल कर आए, कहीं से आम बहकर आ रहे हैं तो कहीं से अनास पाती बहकर आ रही है।
0: नीले वाले पन्ने तो बहुत ओढ़ते हैं बरसात के मौसम में, बरसात की पानी और ऊपर से नीले कलर का पॉलिथीन।
1: हाँ,
0: मजा आ जाता है।
1: हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वो वाला मेमोरेबल टाइम भी, अभी हम याद कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है।
0: तो श्रोताओं आप भी बता सकते हैं अपनी बचपन की कहानी, इनफैक्ट अभी की कहानी भी बता सकते हैं।
1: और
0: जरूरी
1: क्या?
0: नहीं कि उसी टाइम हम छाप पन्नी ओढ़ते थे, अभी भी ओढ़ा जाता है यार।
1: और फिर दिल तो अच्छा है जी, दिल को हमेशा अपने बच्चा बनाकर रखना चाहिए, हम भले ही कितने बड़े हो जाएं। लाइफ को लाइफ में ना इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए, फिर लाइफ में मजा नहीं आता जीने का, तो कुछ फन एक्टिविटीज हमें करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: करते रहनी चाहिए ना एवरीवन। एंड अभी हम बात करते हैं चाय की। अब बारिश हो और चाय की बातें ना हो, ओ हो, फिर तो लगता है कि कुछ अधूरा सा है। देखिए दोस्तों, बारिश चाय पुराने गानों का रिश्ता, बारिश चाय और पुराने गानों का रिश्ता ही अलग होता है ना एवरीवन। मैं जानना चाहती हूँ आपको बारिश में कौन सा गाना सबसे पसंद है जो आप बारिश में गुनगुनाती हो, अक्सर आपकी जुबान से निकलता हो। कल आपने मुझे सुनवाया भी था वो गाना।
0: मुझे यार, मैं रेट्रो की बहुत दीवानी हूँ।
1: अच्छा,
0: भीग जाने दे भीगी रातों में, अरे गाना है ना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, जो भी कुछ है वो गाना है मुझे। मतलब ये वाला जो लगी यार सावन की फुल झड़ी वाला गाना है, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है।
1: हाँ, मतलब जब इस गाने को सुनते हैं ना तो अलग ही जोन में हम पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना बारिश के मौसम में, ये वाला बहुत पसंद है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, बहुत पसंद है। और एक और गाना है आपको पता है, टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगाई,
0: बरसो रे मेघा मेघा,
1: अरे वाह। ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ, हाँ, हाँ। और अभी अपने पसंद का गाना बता सकते श्रोता, बरसात का मौसम और पसंद के गाने ना हो, इसके साथ भुट्टा है यार।
1: ओहो, स्वीट कॉर्न की बात कर दी है लड़की ने।
0: यस, मतलब बरसात हो और स्वीट कॉर्न की खुशबू ना है, हर गली मोहल्ले से आती हुई।
1: अच्छा, आपको पॉपकॉर्न बनाना आता है?
0: मुझे पॉपकॉर्न बनाना नहीं आता यार, बस भुट्टे को बॉईल करके काला नमक डाल के और नींबू, बस इतना ही आता है मेरे को।
1: अच्छा, और यार
0: मुझे यही बहुत पसंद है, इतना ही।
1: खाने पीने की बातें मत करो, इस समय लंच का टाइम हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। पता चला कि खुशी कुछ मिनट के लिए यहाँ से गायब हो गई है। तो अच्छा, हम बारिश की बात कर रहे थे। देखो हमारी कितनी सारी यादें ताजा हो गई है ना, और हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं हमें, वो भी मुस्कुरा रहे हैं रीना, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो वो भी इस समय, उनकी जो मेमोरीज है वो भी ताजा हो गई है। वो भी अपने बचपन के टाइम में खो गए थे जब हमने स्कूल की बात की थी कि हम भी ऐसे ही जाया करते थे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं, पता है क्या?
0: क्या
1: अभी हम बात करने वाले हैं? बारिश हमें सिखाती क्या है?
0: बारिश हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। देखिए बारिश के बाद धूप तो जरूर निकलता है, और जब धूप निकलती है तो हर किसी के चेहरे पर अलग मुस्कान भी होती है और थोड़ी सी नाराजगी भी होती है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ जाती है ना। तो देखिए मौसम है और परेशानियां हर जिंदगी में आती है, कभी खुशी तो कभी गम, आपने ये टैगलाइन सुना भी होगा। तो हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, हर मुश्किल का सामना करना है, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, बस हमें सतर्क रहना है। और किन किन चीजों का आपने समय पर ध्यान रखना है, एक तो सबसे कॉमन होती है चीज है यानी कि हमारा जो मेडिसिन है, जो हमारे बुजुर्ग है उनकी दवाइयां होती हैं, जो बच्चे हैं इनका खासकर ध्यान रखिए। और बरसात के मौसम में ना जो जरूरतमंद चीजें हैं वो अपने घर में
1: होनी चाहिए, रखे
0: बिल्कुल। दवाई तो अपने साथ रखना ही चाहिए, जो कि दवाई के बिना देखे रह नहीं सकते, डेली दवाई के ऊपर जी रहे हैं, तो उनके लिए चीजें हैं वो अपने साथ जरूर रखिए, चाहे बारिश आए चाहे ना आए।
1: और आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि बारिश का आनंद लीजिए लेकिन अपनी सेहत से समझौता मत कीजिए। साफ खाना खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, मच्छरों से बचिए, भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहनिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति, हम मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और लाइफ में हमेशा हैप्पी रहिए। बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हम दोनों की तरह खिलखिलाते रहिए
0: और रेडियो सुनते रहिए।
1: ओके बाय।

0: रमन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
5: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
4: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
4: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
5: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
4: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
5: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
4: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
5: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
4: EKCC साख से समृद्धि।
5: नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ रिमझिम बारिश में भीगते हुए घर जा रहे हैं तो कुछ अभी घर में आराम से बारिश को निहार रहे हैं। टुक टुक टुक टुक। हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे खुशी आप सभी का आपके पसंदीदा शो में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश। देखिए साथियों, बाहर रिमझिम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू हर तरफ बिखरी हुई है। ऐसा मौसम हो तो दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है और ऐसे ही खूबसूरत मौसम में हम लेकर आए हैं आपके पसंद का कार्यक्रम, जहाँ पर सुनते हैं आप अपने पसंद के गीत। और दोस्तों, बारिश की हर बूंद जैसे कोई पैगाम लाती है, भीगे हुए मौसम में हर याद मुस्कुराती है। जरा ठहर कर इस पल को महसूस कीजिए, जिंदगी भी ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों से खिलखिलाती है। और साथियों, इस बारिश के मौसम में आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:05 और मैं आप सभी को एक ब्यूटीफुल ट्रैक डेडिकेट करती हूँ आज के दोपहर। बहुत ही प्यारा सा गाना है, बस मैं लौट कर आती हूँ, आप ही मचाइए, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. देखिए दोस्तों, बारिश भी आ गई है, खुशी भी आ गई है, लेकिन आज सावन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. हाँ, ये प्यारा सा गाना अभी आपने सुना नेहा कक्कड़ साथ में रोहन प्रीत जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक. आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा, मुझे पूरा यकीन है. और अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर. दोस्तों, आप भी अपना कोई भी फेवरेट ट्रैक सुनना चाहते हैं ना, जो गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप बिना किसी देरी के मुझे कॉल लगा सकते हैं. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सा गाना है जो उनके दिल के बहुत करीब है. हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैडम.

0: और ये गाना किनके साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: अपनी फैमिली के साथ ही सुनना पसंद करता हूँ।
0: अच्छा ठीक है सर, आपके परिवार के साथ ही गाना सुनवाते हैं?
1: बाकी अपने सभी सुनने वाले साथियों के लिए सुनाना चाहते हैं।
0: ओके बिल्कुल सुनवाएंगे प्यारा से गाना, आपने कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आपको भी है मुझे फोन लगाना, उसके लिए नंबर मैं आपको बताती हूँ, आप टेंशन ना लो जी, नंबर है 9837896896। अब इतनी स्पीड में मैंने नंबर बोल दिया है, आप कैसे डायल करेंगे? चलो मैं स्लो मोशन में आपको बताती हूँ, 9837896896। अब तो आपने डायल कर लिया है ना, अब फटाफट से कॉल करूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, बाकी पहले ये प्यारा सा गाना सुनूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी अग्निपुत्र से। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी पसंद का कौन सा गाना है जो वो उस वक्त सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो भाई जी।
0: हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल दस मिनट।
1: सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल भाई, अपना ये आकाशवाणी रेडियो मुरादाबाद जी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: खुशी बेटा, प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल भाई।
0: आपको भी सत श्री अकाल सर, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक भाई, तुसी दसो भाई।
0: असी भी वधिया है जी। हाँ जी हाँ जी, सब वधिया है।
1: ठीक है भाई, मैं पिंड माहौल खुद जिला बठिंडा तो जगजीत मट्टू बोल रहा भाई
0: जी। बताइएगा सर, पंजाब का मौसम कैसा है, बारिश वगैरह हुई?
1: ना बेटा, बारिश का हो नहीं रही। वेदर भाई वाला हीट जा, वाला गर्मी वाली है साढ़े का भाई।
0: बारिश का इंतजार कर रहे हैं आप लोग?
1: हाँ जी, अपना रेडियो स्टेशन कहना भाई बारिश आऊगी कभी, बाबा नानक कृपा करे आ रही भाई बारिश।
0: हाँ जी हाँ जी भाई, बिल्कुल पंजाब में भी बारिश आएगी। हाँ जी हाँ जी, बारिश हो रही है इतने तो।
1: चल भाई थोड़ी जी भेज दो।
0: हाँ जी हाँ जी, उधर भी हो जाएगी। हम प्रार्थना करेंगे बाबा से कि जल्दी से बारिश उठे भी हो जाए पंजाब विच।
1: भाई मैं फिल्म कहिए, फिल्म पुरानी नाथ बरलाल है।
0: हाँ,
1: उसमें बोल बेटा गुनगुना कर बताऊँ?
0: हाँ जी हाँ जी, गुनगुनाइए आप।
1: बता दू बेटा, प्यार का टूटा तेरा बना है जीवन मेरा, जिसके सहारे मैंने जी पा लिए, जीने से और क्या चाहिए, टूटा टूटा तो वहेगी ना बेटा।
0: अरे वाह, आपने बहुत ही अच्छा गुनगुनाया है सर। और ये गाना हम आपको सुनवाते हैं, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बेटा बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मेरे बेटा जो तुम्हारा हुक्म है मेरे दोस्तों के नाल भी।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दसो।
1: मेरे बेटा मान जो बड़े भाई सरदार प्रगट सिंह ढिलो साहब, मनकीर सिंह घड़ी साहब, सुखपाल सिंह नैशनल कलोनी बठिंडा तो जी, दविंदर सिंह टगर, अमरजीत सिंह बाला, थोड़ा प्यार से सत्कार भाई सत श्री अकाल बुलाते हैं बेटा।
0: हाँ जी, सत श्री अकाल आपको भी सर। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं सुनते हैं किशोर कुमार जी साथ में आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा गाना, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी किसी को कोई अनमोल तोहफा देना चाहते है ना, तो वो है उनका फेवरेट गाना जो उनके दिल के बहुत करीब है। आप डेडिकेट करना चाहते हैं अगर किसी को, तो फटाफट से बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगाए। मोबाइल नंबर है 9837896896 और एक खूबसूरत सा गाना सब मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
4: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
3: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: कॉल 9045912348।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। एंड अभी आपने ये प्यारा से गाना सुना किशोर कुमार जी साथ में आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। टाइटल ट्रैक सुना तोहफा मूवी का, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। वैसे दोस्तों, अगर कोई इंसान अपना वक्त हमें देता है ना, तो उससे अनमोल तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। आज के टाइम में जो कि सब लोग इतना बिजी रहते हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो अगर आपको समय दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, तो वो आपका सबसे कीमती वक्त है और सबसे अनमोल तोहफा है। तो अगर कोई आपको वक्त देता है ना, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, कद्र करें और उनको ढेर सारा प्यार भी करें। अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं आप?
0: बारिश हो रही है बाहर, बताइए। मैंने कहा बाहर बारिश हो रही है क्या?
1: हल्की बारिश हो रही है और क्या, घर पर
0: है। अच्छा, हल्की हल्की झिमझिम फुहार पड़ रही है, तो बताइएगा आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर? तुम ही मेरा मंदिर तुम ही मेरी पूजा, राइट? ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गीत। आपने कॉल किया, धन्यवाद। और श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में। बहुत ही प्यारी सी आवाज है लता जी की। इस प्यारे से गीत को सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे भी बातचीत करेंगे। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या खूबसूरत एहसास था ना साथियों इस प्यारे से गीत में, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। जब किसी रिश्ते में सम्मान, भरोसा और अपनापन हो तभी वो रिश्ता सच में सबसे खास बन जाता है। और दोस्तों एक छोटी सी शायरी है आपके लिए कि रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से निभाए जाते हैं, जो हर खुशी और हर मुश्किल में, मुश्किल समय में साथ खड़े रहें वही अपने कहलाते हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो हर दिन एक नई दुआ बन जाता है। और जो इस वक्त मुझे करंटली अपने लाइफ पार्टनर के साथ सफर में सुन रहे हैं, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रास्ते चाहे छोटे हों या लंबे, बातें और मुस्कुराहट हमेशा यादगार बना देती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सफर में अगर आप हैं तो मुस्कुराइए, कुछ बातें भी कीजिए, ऐसे चुप चुप से मत रहिए। और हाँ, मुझे कॉल भी कीजिए ताकि आपके इस सफर को मैं और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकूँ। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर लीजिएगा या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। आपकी आवाज और मेरी आवाज रिपीटेड हो रही है जी। बताइएगा सर अपने बारे में बताइए।
1: मैं मैडम मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, मैंने एयरपोर्ट वाली थी।
0: हाँ जी बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: मेरा नाम सावरण है
0: जी। बताइएगा क्या करते हैं सर आप?
1: मैं पुलिस में कार्यरत हूँ।
0: अच्छा, अरे वाह क्या बात है। और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद?
1: मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, काफी टाइम से सुन रहे हैं, तो आज आपने कॉल भी किया। हाँ जी,
1: अभी पिछले 40 मिनट से।
0: ओके, 40 मिनट से सुन रहे हैं। तो अभी राइट नाउ कहाँ पर हैं आप? जी तो बताइएगा आज। ओके, कांट रोड पर आप हैं, तो कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं सर?
1: मैडम गाने का नाम है इलू इलू।
0: हाँ जी, और ये गाना आप किनको सुनवाना चाहते हैं? ये तो आपने बताया ही नहीं।
1: ये गाना मैं मैडम अपनी घरवाली को, मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर, लाइफ पार्टनर।
0: हाँ जी, मैम भी आपके साथ में?
1: जी मेरे साथ में
0: है। ओके, तो उनसे बात हो सकती है?
1: जी मैडम बात करिए।
0: ओके
2: हेलो।
0: हेलो, हाय मैम, कैसे हैं आप?
2: हाय, ठीक हूँ, आप बताओ?
0: हाँ जी आई एम गुड। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम शिवानी।
0: शिवानी?
2: हाँ जी।
0: अरे वाह, आप तो सब पर रानी बनकर राज करते हो। हाँ शिवानी जी। ओके मैम, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। हाँ जी, हाँ जी वही प्ले करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ओके बाय, टेक केयर। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक सर एंड मैम की पसंद का, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है एंड सफर को भी बनाएगा और भी ज्यादा अमेजिंग। तो मैं सुनवाती हूँ प्यारा गाना, लौट कर आती हूँ मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: Hi everyone, good afternoon. Welcome to आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण जी, साथ में सुखविंदर सिंह और मनोहर दास जी की आवाज में प्यारा सा गाना आपने सुना. आनंद बख्शी जी के लिरिक्स थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक था और आपको पता है ना, बहुत प्यारा गाना था. एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश. लेकिन अगर आज श्रोताओं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी कोई गाना अगर सुनना चाहते हैं ना इस वक्त राइट नाउ, तो मुझे फटाफट से कॉल कीजिएगा. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. हेलो फरमाइश.
1: इश्क करने वाले आंखों से आंखों की बात समझते हैं, इश्क करने वाले आंखों से आंखों की बात समझते हैं, सपने में मिल जाए तो मुलाकात समझते हैं, रोता तो आसमान भी है अपनी धरती के लिए, पर लोग उसके आंसुओं को बर्दाश्त समझते हैं. मैडम जी नमस्कार.
0: नमस्कार आपको भी सर. क्या नाम है आपका?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा हूँ.
0: जी बताइएगा सर, कैसा है आपके यहाँ का मौसम?
1: मौसम मैडम वैसे तो ठीक ठाक है, सुबह से बारिश हो रही है रुक के और काफी मौसम में तब्दीली आई है. जो उमस भरी गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिली है और किसानों का भी काम जो रखा हुआ था वो भी चालू हो गया है खेतों में, तो काफी अच्छा खुशगवार मौसम हो गया है और इस समय भी बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है. और ऐसे मौसम में आपका जो कार्यक्रम चल रहा है ये और भी अच्छा लग रहा है.
0: जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक सांस में सब कुछ बयां कर दिया. बताइएगा कौन सा गाना सुनेंगे आप सब?
1: ये गाना सुनवा दीजिए अंदाज सिलेंडर, इसमें बरसात का गाना है, आएगा मजा आप बरसात का, ये गाना सुनवा दीजिए.
0: ठीक है सर, सुनवा दे प्यारा सा गीत. आपने कॉल किया, शुक्रिया.
1: ओके मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, उसके बाद हम आपसे करेंगे बातचीत. आपको भी ये अवसर खुशी देती है तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगाइए, कोई बहाना नहीं चलेगा. ठीक है, चलो कॉल लगाओ जल्दी से.

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई ZIG करो स्वच्छता की जिद करो

0: तो दोस्तों छोटे से एड ब्रेक के बाद खुशी फिर से हाजिर हो गई है आप सभी के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं आपको वक्त भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर समय हुआ है 3:53 और अभी राइट नाउ हमारे साथ हमारी कॉलर भी जुड़ चुके हैं तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपने प्यार से गाना सुना अलका याग्निक जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी अंदाज से, और प्रियंका चोपड़ा साथ में अक्षय कुमार जी बहुत ही खूबसूरत नजर आए। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश, आदाब कुछ जी, कैसी हैं
0: आप? हाँ जी, आपको भी आदाब सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और आपके परिवार में सब ठीक है?
1: बहुत अच्छे हैं और परिवार में भी बहुत अच्छे हैं, और इस वक्त जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम, और गर्मी से बहुत ही ज्यादा जो पीछे भी गर्मी पड़ रही थी।
0: हाँ जी,
1: सभी लोग परेशान थे, उससे बहुत बड़ी राहत सभी को मिली है।
0: ओके सर, आप अभी कहाँ पर है राइट नाउ? आपकी जो वॉइस है बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है।
1: नहीं, मैं तो बिल्कुल बाहर खुले में हूँ इस टाइम।
0: अच्छा, हाँ अभी ठीक से आपकी आवाज आई है। जी बताइएगा सर, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: बरसात के ऊपर ही एक सॉन्ग सुनना है, बरसात हो रही है, बरसात होने दे, इस तरह से ये सॉन्ग है।
0: जी, और अपना नाम तो बताइए।
1: जी मैं मंसूरी कलोनी अरशाद उत्तरण सारी बोल रहा हूँ मैं।
0: जी सर, थैंक यू आपने हमें कॉल किया अरशाद जी।
1: और मेरे साथ में हमारे दोस्त हैं, सैयद सारीगरी हैं, मेहराज अंसारी हैं, मौलवी अंसारी हैं, और ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी
0: जी,
1: और बाकी आपके साथ और सभी सुनने वालों के साथ इस सॉन्ग को सुनना चाहते।
0: श्योर सर, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सुनवाते हैं प्यारे से गाना आपकी पसंद का, अनुराधा पौडवाल जी की बड़ी प्यारी सी आवाज, साथ में कुमार सानू जी भी दे रहे हैं साथ। तो श्रोताओ सुनते हैं मिलकर सभी प्यारा से गाना, मैं आती हूँ वापस, जब तक आप मुझे कॉल करती रहिए, मुझे यकीन है आपका कॉल जल्दी लग जाएगा, बट आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं लगेगा, आपको कोशिश तो करनी होगी ना। कीप ट्राइंग एवरीवन।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: EKCC, साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। खुशी आपके साथ है और गाने भी बहुत प्यारे प्यारे आप सुन रहे हैं। तो अभी जान लेते हैं अगले कॉलर की फरमाइश, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। 4:02 हो चुके हैं। अगर आप भी फोन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका?
1: मानजीलाल ढाकर बोल रहा हूँ, जिला गोना मक्कर से बोल रहा हूँ।
0: ओके सर, आप बताइएगा कैसे कैसा मौसम है आपके शहर का?
1: हमारे गोना जिला का अच्छा मौसम है।
0: ओके, एमपी में बारिश हो रही है?
1: हाँ जी जी मैम।
0: ओके सर, तो बताइएगा आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए सर।
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, साथ में रेडियो FM गोना सुनते हैं और बेरोजगारी भी सुनते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे खेती में इस वक्त क्या लगा हुआ है आपके यहाँ पर एमपी में?
1: एमपी में मैम मक्का लगा रखी है।
0: अच्छा, मक्का लगाई हुई है।
1: जी।
0: तो आज आपने कार्यक्रम में कॉल किया है, बताइएगा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का?
1: मुझे वो सुनना चाहता हूँ हिना कलम का गीत है, दूर ना हो जाए। कुछ मित्र
0: हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइएगा अपने मित्रों के नाम।
1: लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गरिबा सिंह लोधी हैं, और अपने सुनील साउदी हैं, गोपाल ओझा हैं, अमर सिंह भील हैं।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद
0: जी, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा से गाना फ्रॉम द मूवी हिना। एंड आप कॉल लगाने में कोई भी देरी मत करो, हम इंतजार कर रहे हैं। क्यों इतनी देर लगा रहे हो आप, हाँ बताओ मुझे। मैं आपका कॉल रिसीव करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, आपके फेवरेट गाने चलाने के लिए। तो आप कॉल लगाने में क्यों बहाना कर रहे हो? देखो अब तो आप घर पर हैं, बिल्कुल फ्री हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं, टुक टुक निहार रहे हैं बारिश को, हाथ में आपकी गर्मा गर्म चाय का कप भी है। तो आप चाय पीजिए, साथ में गाने भी अपने फेवरेट सुनिएगा। ये आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगाइएगा और फिलहाल अभी गाना सुनिएगा।

0: बढ़िया है, आपका शो सुन रहे हैं बरसात में और बारिश का एंजॉय कर रहे हैं।
1: अच्छा, बारिश कैसी हो रही है
0: भैया? बारिश ऐसी हो रही है, जमाजम बारिश हो रही है।
1: अच्छा,
0: बरसा पानी।
1: कहाँ पर हैं अभी आप राइट नाउ?
0: मैं इस समय रामगंगा बिहार में हूँ।
1: अच्छा, रामगंगा बिहार में
0: जी। यहाँ पर घंटे का में पानी जाता है।
1: अच्छा, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे विक्की सागर जी?
0: गाना सुनेंगे आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम।
0: हाँ जी, वो बहुत अच्छा गाती है, खुशी आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
1: थैंक यू। अच्छा गाती नहीं हूँ, थोड़ी आवाज तो अच्छी है। हाँ ठीक है सागर, विक्की सागर जी, थैंक यू सो मच। देखिए हमने इनका नाम शॉर्ट कर दिया सागर, लेकिन इनका पूरा नाम है विक्की सागर। तो चलो इनकी पसंद पर सुनते हैं प्यारा सा गाना, ओल्ड दिस गोल्ड। अमेजिंग ट्रैक है। आप भी सुनना चाहते हैं कोई गाना तो बिना किसी देरी के कॉल लगाइए। मुझे पता है आप ऑन द वे कार में हैं, आराम से बैठे हैं, ऑफिस से थक कर आए हैं, अब सोच रहे हैं सीधा घर जाएंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे, गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे एंड फैमिली के साथ इस मानसून को एंजॉय करेंगे। तो चलो ये प्यारा से गाना सुनो, बस मैं अभी आती हूँ इस प्यारे से गाने के उस पार।

0: दोस्तों, हल्की हल्की सी बरसात के साथ खुशी भी आ गई है आपके अपने फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल करते हैं और अपने पसंद के गाने भी सुनते हैं। तो बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी पसंद का गाना। लेकिन अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं इस वक्त, कोई सॉन्ग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर किसी स्पेशल को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो हमें कॉल अभी कीजिएगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपने श्रोता से। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार साहब।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका, बताइएगा।
1: मेरा नाम शंकरलाल यादव है, लाइन पार प्रकाश नगर, गली नंबर 2, चमन नंबर 3 से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है। आप बताइएगा क्या सुनेंगे आज, आपने हमें कॉल किया है।
1: आज मैं सुनूंगा तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा।
0: ओके ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं।
1: मैं अपने नाम मतलब अपनी फरमाइश बता दूँ?
0: हाँ हाँ, आपने अपनी फरमाइश तो बता दी है हमें सर।
1: नहीं मतलब अपने नाम बता दूँ?
0: आपने अपना नाम भी बता दिया है हमें।
1: नहीं मैं अपने रिश्तेदारों के नाम बताना चाहता हूँ।
0: रिश्तेदारों के नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, आपने गाना सुना ना तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सब आपको सुन रहे हैं। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गाना सर की पसंद का। मैं तो अभी आती हूँ बस इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप भी कॉल लगाइएगा।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो फरमाइश शो में आप सभी का वेलकम है। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट आरजी खुशी। और साथियों, अभी ये सुना आपने प्यारा सा गाना ऋषि कुमार जी पर पिक्चराइजेशन, ये ब्यूटीफुल ट्रैक लैला मजनू का जो 1976 में आई थी। और अभी बात करेंगे अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: अनूप कुमार, ग्राम अपरेका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ। दीदी नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार सर, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: बढ़िया है
0: जी, बताइएगा कैसा मौसम है आपकी साइड।
1: बहुत ठंडा मौसम है।
0: अच्छा, ठंडा मौसम में बारिश हो रही है या बारिश बंद है।
1: बंद है बारिश।
0: अच्छा, बारिश तो बंद है लेकिन मौसम अच्छा है, ठंडा है।
1: जी जी जी
0: जी। तो बताइएगा सर, इस कूल से मौसम में कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं।
1: दुपट्टा सरक रहा है।
0: अच्छा ठीक है सर, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवा देते हैं। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। और दोस्तों, उदित नारायण जी की आवाज में ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आपको ये चांस दे रहे हैं। तो आप ना बिल्कुल भी आलस मत करो, फटाफट से फोन लगाओ अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी की आवाज में ये प्यारा गाना,

0: नहीं नहीं दोस्तों, हम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे और ना ही हम आपको भूलेंगे, ना ही आप हमें भूलिएगा, ठीक है। देखिए वक्त हुआ है 4:34 और अभी आपने ये उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की आवाज में प्यारा से गाना सुना। दोस्तों बारिश की बूंदे कह रही हैं जरा मुस्कुरा लिया करो, जिंदगी की भागदौड़ से कुछ पल चुरा लिया करो, हर मौसम कुछ नया सिखा जाता है, कभी भी कर भी दिल को महका लिया करो। और इस पहले से शायरी के बाद ना अभी अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, नाम बताइएगा अपना।
1: नाम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी दीदी बहुत बढ़िया हूँ, बस खेत पर था, हरी हरी फसल देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं रेडियो का।
0: जी चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे फसलें लहरा रही हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। बारिश है आपके शहर में?
1: बारिश नहीं हुई, परसों के रोज हुई थी, फिर कल थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, इसके बाद आज साफ है।
0: अच्छा, आज वेदर वहाँ का क्लीन है। बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे सर आज?
1: आज सुनवा दीजिए, नाटा है भूली बिसरी एक कहानी।
0: जी जी ओके। ये गाना आपको क्यों पसंद है?

0: उसने बोल रखे हैं, उसके अच्छा लगता है सुनने में।
1: अच्छा, फिल्म देखी है आपने?
0: हाँ जी, हाँ जी, फिल्म देखी है बिल्कुल।
1: बताइए कौन कौन से इसमें एक्टर्स, अभिनेता, अभिनेत्री हैं?
0: जी जी, इसमें है पहले तो जो हमारे अमरीश पुरी जी हैं।
1: ठीक है,
0: ऋषि कपूर जी, श्रीदेवी जी हैं।
1: हाँ, एग्जैक्टली राइट, सही कहा आपने। ओके, आपने नगीना शहर का नाम सुना है?
0: नहीं, नाम नहीं सुना नगीना
1: शहर। अच्छा, नगीना मूवी तो है लेकिन शहर भी नगीना बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, तो चलिए,
0: ये कहाँ पर पड़ता है?
1: ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, तो चलिए सर, सुनवाते हैं प्यारा गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। नमस्ते आपको भी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा गाना फ्रॉम द मूवी नगीना से, जो 1986 में आई थी। और हम आपसे भी करेंगे बातचीत, ये अवसर आपको भी हम देते हैं, बस आप कॉल लगाइए। नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896।

0: दोस्तों देखिए, मुरादाबाद में जो बारिश हो रही है ना, वो बहुत स्पेशल है। अब आप कह रहे होंगे कि मुरादाबाद की बारिश स्पेशल, मैं आपको बताती हूँ श्रोताओं क्या हो रहा है। कभी तो बारिश बहुत तेज होती है, कभी बारिश एकदम रुक जाती है, मतलब बीच बीच में बारिश भी थोड़ा गैप ले रही है, लगता है वो भी घूमने जाती है और फिर वापस आ जाती है। दोस्तों अभी आपने नगीना फिल्म का गाना सुना और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं फर्नीचर का अपना काम करता हूँ, शोरूम में फर्नीचर का अपना।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है सर, आपका अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा आपका कारोबार कैसे चल रहा है सर?
1: बस मैम, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं।
0: ओके, अपना नाम भी बताइए।
1: मेरा नाम फिरोज सैफी है मैम।
0: जी बताइएगा, कैसा मौसम है आपके यहाँ पर?
1: मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है मैम। एक सॉन्ग आते ना वाला, जो गाने के दो बोल आते हैं, मौसम है आशिकाना,
0: हाँ
1: दिल कहीं ना जाना।
0: ओके हाँ, मौसम तो बहुत प्यारा है, लेकिन मुरादाबाद की बारिश भी बहुत स्पेशल है। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि कभी रुक जाती है तो कभी तेज से बारिश आ जाती है।
1: हाँ मैम, तब मैंने आपको कॉल की तो बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, अभी फिर से रुक गई है।
0: ओके, बारिश भी लगती है।
1: बीकनपुर से मैं मुरादाबाद से 20 किलोमीटर इधर कांट रोड पे हूँ, बीकनपुर अजलपुर में।
0: अच्छा ओके
1: जी,
0: तो बताइएगा सर आपकी क्या फरमाइश है?
1: फरमाइश मैम, बरसात के मौसम में बरसात के ही सॉन्ग सुनने चाहिए, तो इसलिए मेरा सॉन्ग है छतरी ना खोल बरसात में, ठीक जाने दे।
0: ओके, तो आप भीग रहे हैं बारिश में?
1: नहीं मैम, बहुत सुबह भीगा था, आप नहीं मन कर रहा।
0: ओके, आपने कहा ना भीग जाने दी बरसात में, तो मैंने कहा आप भीग रहे हैं, तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं
1: भीगने का मौका अभी इस टाइम इसने, मैम ऐसी जगह बैठा हूँ ना, चाय भी नहीं मिलेगी ना, तो भीगने के बाद चाय बड़ी अच्छी लगती है ना।
0: हाँ ये तो आपने सही कहा है, भीगने के बाद गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सुकून मिल जाता है
1: शाम को 7 बजे घर जाकर।
0: ओके हाँ, तो मत भीगिएगा, फिलहाल इस गाने का आप आनंद लीजिए।
1: जी मैम,
0: आपने कॉल किया सर, शुक्रिया आपका।
1: ओके मैम, और ये अपने जो है ना, अपना जो आपका रूल है ना वाला, जो ट्रैफिक वाला, वो बताते रहना।
0: ओके सर, श्योर, थैंक यू।
1: जी मैम, वेलकम।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, एंड टाइम हुआ है 4:45 स्टूडियो की घड़ी में, 4:45, आपके पास 15 मिनट है, आप कॉल लगाइए, मैं आपका कॉल रिसीव करने के लिए बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ, तो अब ज्यादा इंतजार मत कराइए, फटाफट से कॉल कीजिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश. साथियों, बारिश में भीगना अच्छी बात है पर ज्यादा भीगना ये अच्छी बात नहीं है. बारिश का आनंद लीजिए लेकिन सावधानी के साथ. और बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं मोहल्ला बारादरी महमूद सलामपुर से भाई रफत साहब बात कर रहा हूँ.
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हैं. मैम आप सुनाइए आपके.
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं. आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: इस वक्त काम कर रहे थे मैम, मखमल की रामपुरी टोपी तैयार की जा रही
0: है. अरे वाह, क्या बात है. काम में भी व्यस्त है और फोन भी लगा रहे हैं.
1: जी मैम, काम करते करते फोन लगाया आपको.
0: तो बताइएगा आज कौन सा गाना सुनने का मन है आपका?
1: मैम अगर आज कॉल लगे थे फिल्म बरसात.
0: हाँ जी,
1: उसी फिल्म में गीत बरसात के दिन आए, वही गाना सुना देना.
0: ओके सर, ठीक है, आपको सुनवाते हैं गीता. थैंक यू कॉल करने के लिए. मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा से गाना सर की पसंद का. और साथ में इनकी मिसेज भी है नगमा जी, बहुत ही प्यारे लिसनर है हमारी. और ये प्यारा से गाना हम सुनते हैं, उसके बाद अब हम आपसे जाने की अनुमति भी लेना चाहेंगे. लेकिन दोस्तों, अगर आज आपका कॉल नहीं लगाया ना तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये मौका आपको सैटरडे तक मिलने वाला है. तो कल भी आप कॉल लगा सकते हैं. नंबर हमारा सेम रहेगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 9837869 6896. ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है. 3 से 5 ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहाँ पर आप एवरी डे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. लेकिन जिनका कॉल मंडे में लग चुका है तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो नेक्स्ट मंडे ही कॉल करें. अभी तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर. आप भी अपनों के साथ रहिए एंड गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे और रेड वाली चटनी या ग्रीन चटनी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी पसंद है. वैसे मुझे ज्यादा स्पाइसी खाना मतलब नहीं, मेरे को जमता है. मुझे ज्यादा तीखा खाना मैं खा लेती हूँ ना तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसीलिए

मैं बहुत लाइट तीखा खाती हूँ, मीठा चलता है बट तीखा नहीं चलता है ज्यादा। और लेकिन हाँ, समोसे भी खा लेते हैं हम, बट ज्यादा नहीं, एक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज्यादा नहीं खाना चाहिए जंक फूड, थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना होता है। और कहते हैं ना एवरीवन कि जो फिट है वो हिट है, तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और यूं ही मुस्कुराते रहना। हाँ, जैसे अभी गौर से आप मुझे सुन रहे हो ना, मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ही हमेशा ऑलवेज खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: तो 28 साल के बाद भारत का कोई PM यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
8: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
7: PM सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
8: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रूपये के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की चौथी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपत्ति सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव M आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ख्याल रखिए भैया। और बहुतों के घर में भाई आजकल इंस्टाग्राम पे ना कल से ही यानी कि चाय पकौड़े के रील्स बनने शुरू हो गए हैं। ऊपर से मेंशन भी करा जा रहा है कि आ जाओ चाय पकौड़े खाने के लिए। बिल्कुल जी। और बरसात का मौसम हो तो मजा ही आ जाता है। आरजे रीना के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो भी। समय की बात करूँ तो 5:12 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी से यही कहेंगे कि इस बरसात में घर पर है आप तो रेडियो के वॉल्यूम बढ़ाइए, गाड़ी में है तो रेडियो के वॉल्यूम बढ़ाइए और गाना एंजॉय करिए। और आरजे रीना के साथ 2 घंटे के लिए कनेक्ट रहिए। ढेर सारी बातें करने वाले हैं यहाँ पर, और फुल ऑफ यानी कि अपने पिटारे में बहुत सारी बातें मैं लेकर आई हूँ जो आप सभी तक मुझे पहुंचाने हैं। वो कैसे पहुंचाने हैं यानी कि कागज के मैं नाव बनाऊंगी अभी, फिर आप सभी तक उसको भेजूंगी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो अब आप तक पहुंच जाएगी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के लिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए एएसके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां डीएलएड बीटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
2: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
5: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
4: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
4: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
5: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
4: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
5: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
4: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
5: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
4: EKCC साख से समृद्धि।
5: नियम और शर्तें लागू।

भाई 5 साल से तू अमेरिका में रह रहा है और वो यहाँ अभी भी सिंगल है। पीली छतरी आज भी बहुत मिस करते हैं यार।

क्या बात है जी। अगर आप भी इस बारिश में किसी को याद कर रहे हैं तो बिल्कुल एफएम मुरादाबाद रेडियो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। श्रोताओं, आपको क्या करना है, बस हमें मैसेज करना है, नंबर है 9823789686 पर, कि इस बारिश में आपको किसकी याद आ रही है, आप किसके लिए एक प्यारा सा संदेश भेजना चाहते हैं, गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली आज आपके पास लकी चांस है, क्योंकि आज बारिश हो रही है, यानी कि मजा आ रहा है, सच बताऊं। तो आज हमने आपके लिए एक लकी चांस रख दिया है कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं और गाने का नाम बता सकते हैं। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, जहां पर बातों के साथ साथ गानों का भी तड़का लगता है। और समय की बात करूं तो 5:22 हो चुके हैं। श्रोताओं, बहुत से ऑफिस से निकल चुके हैं और बहुत से सोच रहे कि काश बस थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो घर पहुंच जाए। एक्चुअली जब बारिश आती है ना तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि बस भगवान जी घर पहुंचा दो, उसके बाद खूब जम कर बरसना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भगवान जी करवट लेते हैं ना, यानी कि जब मौसम करवट लेती है तो वो अपना रुद्र अवतार दिखाई देती है जी। बस हमें थोड़ा सा संभलना है, और ऑटो रिक्शा में आप जाए तो थोड़ा संभल कर जाइए। और देखिए, भीग जाए वो, अगर आप भीग भी जा रहे हैं तो घर जाके आपने एकदम कपड़ा चेंज करना है। गीले कपड़े में रहेंगे तो फीवर, जुखाम, खांसी होने की संभावना है, इसलिए गीले कपड़े में आप ज्यादा देर तक ना रहे, जितना बेटर होगा कि अगर आप चेंज करेंगे तो आप उतने ही अच्छे रहेंगे। और इस मौसम में आपने देखिए, बहुत सी बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में घर कर लेती हैं। और साथ ही साथ जो सिलेंडर महंगे हुए थे भैया, यानी कि 2026 में वही सिलेंडर अब क्या हो रहा है, बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। म्यूजिकल ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बताते हैं आखिरकार क्या है सिलेंडर का हाल, यानी कि महाराष्ट्र में। आपको ही पता है बारिश बहुत तेज है और कहीं कहीं पर नॉन स्टॉप बारिश होने के चलते पानी बहुत ज्यादा भर गया है। जो नहरें और नहरों का पानी है वो भी ऐसे ही उथल पुथल कर रही है, उसके साथ क्या क्या बहा कर ले जा रही है, हर अपडेट में देने वाली आप सभी के साथ। फिलहाल एक गाना, उसके बाद लौट कर आती है श्रोताओं, कहने जाना जी, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, बाय है, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और साथ ही साथ देखिए, आप बरसात में किसी को याद कर रहे हैं ना, तो ये गाना सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से आपके लिए। सुनिए इस गाने को, बहुत ही प्यारा है।
1: प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में ही लव से होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठो से बनी, पीए से है रखे जो घूटो से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कान टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसा घास से मैं बस चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी जलता है उनको मैं छाटता फिर, हिट पे हिट मैं मारता फिर, 3 रात लगातार मैं जागता फिर, उसके साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिर।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो देखिए समय है यानी कि 5:28 हो चुके हैं श्रोताओं। और आप सभी को पता है कि सिलेंडर महंगे हो चुके थे, लेकिन वही सिलेंडर अब बरसात के मौसम में यानी कि ये अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में है यानी कि 3,000 सिलेंडर यानी कि ऐसे ही बह गए पानी में। सोचिए जिस सिलेंडर को हम कल तक खरीदने के लिए सोच रहे थे कि भाई कैसे खरीदे कैसे नहीं खरीदे, दिन पर दिन महंगे होते जा रहे थे। यानी कि जो स्टूडेंट या जो घर से बाहर रहते कमाने के लिए जॉब करने के लिए उनके लिए और भी ज्यादा टफ हो गया था। मतलब सोच नहीं पा रहा था इंसान कि कैसे क्या किया जाए कैसे नहीं किया जाए। जो बाहर रहते हैं उनसे पूछ के देखे, लेकिन आज वही सिलेंडर यानी कि पानी में ऐसे बह रहे हैं जैसे कि फूल बहा देते हैं। भाई जब मैं अगर मैं सच बताऊं, अगर ये इधर होती ना मैं इसको पक्का लेकर आती, एक ना एक सिलेंडर तो उठा के ले आती। क्या आप भी चलते मेरे साथ? मुझे पता है यार, बिल्कुल चलते आप भी। हाँ, मैसेज कर दीजिए, इतना भी नहीं शर्माना है। अरे एक ही कैटेगरी के, कोई बात नहीं। जब जो चीजें मिलती है ना उसका लुप्त उठाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। भाई किसका इंतजार करना है, किसी का नहीं करना है। चलिए मेरे साथ चलिए, आप सब चलेंगे ना, चलिए उसको उठा कर लाते हैं। कम से कम एक एक दो दो सिलेंडर तो ले ही आएंगे हम, है ना। चलिए लेकर आएंगे। फिलहाल कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोता, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहूंगी, देखिए आरजे रीना है आपके साथ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, कहीं भी नहीं जाएगा। अगला गाना भी बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: सनी डे,
7: इट इज अ सनी डे।
6: ओ सनी शेड्स डे यार।
7: यार सॉरी,

0: नशे से चढ़ गए।
1: भैया देखिए, फिलहाल नशा तो यानी कि बारिश का चढ़ा हुआ है ना, और मौसम बड़ा ही ठंडा है। और ये मौसम सिर्फ आज का नहीं है, यानी कि कल परसों तक भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि नॉन स्टॉप बारिश रहने की पूरी संभावना है श्रोताओं। इसीलिए जब आप बाहर जाए तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि भाई रेड अलर्ट आ चुका है, इसका मतलब बारिश खतरनाक भयंकर वाली होने वाली है। यानी कि हम कुछ दिन पहले यही बोल रहे थे ना कि भैया बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, यानी कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इस गर्मी से राहत आखिरकार हमें मिले तो कैसे मिले। अब इस बरसात में हमें कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यानी कि बरसात के मौसम में देखिए हमें ये जो मौसम है राहत हमें देती है गर्मी से, लेकिन इसके साथ साथ संक्रमण यानी कि जो बीमारियां है बहुत ज्यादा खतरा है वो बढ़ जाता है, जिसमें आपको यानी कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है अभी जानते हैं। बारिश का पानी है वो बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना है आपने। गंदा भोजन और दूषित पानी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पेट के संक्रमण और वोमिटिंग होने की संभावना यानी कि जो बीमारियां है वो बढ़ जाती है। इसलिए अपने आसपास का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, जितना आप साफ सफाई रखेंगे उतना ही आप सही रहेंगे। और साथ ही साथ इस बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि श्रोताओं, जब बरसात होती है ना तो एक जो जीवाणु होते हैं ना, एक जो इस टाइम बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा निकलता है वो, और उसे देखकर ना हम डरते हैं, ना वो उसकी आंखें होती हैं, ना वो देख पाता है, ना वो सुन पाता है, लेकिन वो महसूस करके आगे बढ़ता है, निकलता है वो। और इस बरसात के मौसम में ही क्यों धरती से वो निकलता है आपके, उसके बारे में बताऊंगी श्रोताओं। बस आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए, यानी कि केचुए के बारे में बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा जैसे बरसात शुरू हो जाती है केचुए निकलने लग जाते हैं, यानी कि जमीन के अंदर से वो बाहर आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सांस चाहिए, वो महसूस करते हैं उनके बॉडी के ऊपर ना, मतलब छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे बाल जो कि आपको भी नहीं दिखेंगे, उसी के सहारे वो रेंगते हैं और महसूस करते हैं, उसी के साथ साथ जैसे हम सांस लेते हैं वो उनके जरिए ही लेते हैं। तो उसके बारे में बताएंगे। आखिरकार हम कभी ये नहीं सोच पाते ना कि हम पौधा लगाते हैं या फिर कोई भी फसल उगाते हैं खेतों में, तो वो आखिरकार उगता कैसे है, किसके कारण वो उगता है, हमने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की ना। तो आज आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट है, सही जगह कनेक्ट है, हम जरूर जानेंगे उसके बारे में। बस आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और एक मैसेज भी आया था मेरे पास जिनका, यानी कि ये हमारे साथ विवेक जी कनेक्ट हुए थे दिल्ली से, और इनका कहना है कि मैडम आज मैं दिल्ली से यानी कि काम था मतलब मुरादाबाद में, सो मैं आया हुआ था और आपका रेडियो सुन रहा हूँ, और आपने बोला भी यार कि एक गाना सुनना है, तो अपनी मैडम के लिए गाना सुनना चाहते हैं, लगी आज सावन की वो फुल झड़ी है। भैया ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनाते हैं सर, आप एंजॉय करिए, लेकिन जो वॉल्यूम है, आप गाड़ी में सुन रहे हैं, घर सुन रहे हैं, तो वॉल्यूम देखिए बढ़ाइए, तभी मजा आएगा इस गाने का। तो यानी कि ये गाने सदाबहार गाने होते हैं, जिनको आप जितना भी सुन लो ना मन कभी नहीं भरता है, बस यही मन करता है सुनते जाओ यानी कि एवर ग्रीन गाने होते हैं ये।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

देखिए जी, पानी में आग तो कभी लगता नहीं है, लेकिन जब बरसात होती है तो हर किसी को मजा ही आ जाता है। ऊपर से बरसात में एंजॉय करने के चक्कर में हम ना इंस्टाग्राम पर रील्स डालने लग जाते कि वाह, मुरादाबाद का वेदर बहुत ही शानदार हो गया है सुजुकी। तो हम इस तरीके के जो खुराफात है वो करने लग जाते हैं। और ये बारिश ना भैया बहुत तेज है। अगर आपको देखिए इस बरसात के मौसम में आपने क्या करना है, अपनी जरूरतमंद चीज यानी कि फर्स्ट नंबर पर आता है मेडिसिन यानी कि दवाई, अपने पास रखे। जो दवाई के बगैर रह नहीं सकते हैं उनके लिए तो बहुत यानी कि उनके लिए तो मतलब दवाई रखनी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बरसात के मौसम में बुजुर्ग और बच्चों का खासकर ध्यान रखना चाहिए। और जो ऑफिस में जाते हैं भैया और ये सोच रहे हो ना कि आज बारिश रुक जाएगी, तो आज बारिश वैसे भी रुकने वाले नहीं है, हल्के फुल्के रुक सकती है। लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर आप बारिश जा रहे तो मतलब यानी कि ऑफिस जाए सुबह के टाइम, तो रेनकोट और छाता अपने साथ जरूर लेकर जाए। पता चले कि शाम को छुट्टी होने के बाद भी आप ऑफिस में ही इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश खत्म हो, है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और हम बात कर रहे थे यानी कि केचुए के बारे में। सो बरसात के बाद यानी कि आपने देखा होगा अक्सर केचुए को जमीन पर रेंगते हुए देखा होगा। कई लोग उन्हें बेकार समझकर हटा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे जीव धरती के सबसे पुराने और सबसे मेहनती किसान माने जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये दुनिया के पहले किसान माने जाते हैं। और है, और आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे माने जाते हैं, सुनिए जरा। वैज्ञानिक के अनुसार यानी कि केचुए करोड़ों सालों से पृथ्वी पर मौजूद है। वे अपनी नम त्वचा से सांस लेते हैं, इसीलिए जब बारिश में मिट्टी पानी से भर जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो बाहर निकल आते हैं। केचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और उनमें हवा और पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जैविक कचरे को बेहतरीन प्राकृतिक खाद में ये बदल देते हैं। यही वजह है कि इन्हें किसानों का सच्चा दोस्त माना जाता है। तो अगली बार जब आपको बारिश में यानी कि केचुए बाहर दिखे तो उनसे घिन, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उनको कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि प्रकृति के इन अनमोल साथियों का सम्मान करिए, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल और स्वस्थ जीवन की नींव है। यानी कि जो ये केचुए हैं गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा कि हमें नहीं दिखते हैं, बरसात के मौसम में ही निकल जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन धरती में बहुत कम मिलती है। और जैसी बरसात खत्म होती है फिर से धरती में ही चले जाते हैं। और धरती में जब इनकी तीव्र गति इतनी ज्यादा होती है कि ये धरती को यानी कि चीरते हुए रेंगते हुए निकलते रहते हैं एक जगह, मतलब ये रुक नहीं सकते हैं। इसी के कारण है कि मिट्टी के अंदर यानी कि पानी हवा जो जाता रहता है जिससे फसल पेड़ जल्दी उगते हैं। यही रीजन है, हमने कभी ये सोचा नहीं ना कि पेड़ आखिरकार जब हम बो देते हैं तो वो कैसे इतने जल्दी बड़ा होने लग जाता है। उसको धरती के अंदर नमी मिल रही है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तभी तो वो आगे बढ़ता है ना। तो ये केचुए है यानी कि दुनिया के सबसे पहले किसान माने जाते हैं और किसानों का ये सच्चा दोस्त और मित्र माने जाते हैं। श्रोताओं चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं, बारिश है तो बारिश का ही गाना सुनेंगे जी। और आप भी मैसेज करके बता सकते हैं कि आप इस टाइम यानी कि ट्रैफिक में है, कहीं पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या फिर बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं भैया कि बारिश खत्म हो तभी हम घर जाए, तो आप मैसेज करिए, डेफिनेटली कर सकते हैं जी। नंबर है

0: स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्त्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रूपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:06 हो चुके हैं श्रोताओं और आज रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे। गुनगुनाते रहे जी, जहां बातें सिर्फ काम की होती है और आप सभी को मौका मिलता है यहाँ पर मैसेज करने का। तो श्रोताओं, कहते हैं ना, इंसान के अंदर कोई भी कला हो, कोई भी काम करते हो आप, हर चीज कला है। चाहे आप खाना बनाते हो, सिलाई करते हो, या फिर आप लिखते हो, हर चीज आज के टाइम में कला बन चुका है। आखिरकार ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आपके अंदर लिखने की कला है तो आप क्या कर सकते हैं, खाना बनाने की आपके अंदर कला है तो आप क्या कर सकते हैं, सिलाई करने की अगर आपके अंदर कला है तो आप क्या कर सकते हैं। हर काम आप, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ घर में ही करें, खाना बना रहे हैं आप, टिफिन के लिए टिफिन खोल सकते हैं, जो बच्चे बाहर से, घर से बाहर रहते हैं, जो खुद नहीं बना सकते, वो भी तो हमारा बिजनेस है, यानी कि घर बैठे बैठे भी आप कमा सकते हैं। सो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि लिखने की, यानी कि 2 घंटे में 120 पेज आप, मायने रखता है लिखना, आखिरकार ये काम किसने किया है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं। और आज का जो कड़क सवाल है, जो पहली मैं लेकर आऊंगी, बहुत ही फैंटास्टिक वाला होगा। और फिलहाल मेरे पास जो मैसेज आए हैं, चलिए एक बार उनको भी शामिल करते हैं। ये मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि हेलो रीना जी, गुड वाली इवनिंग है। ओके, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। झमाझम बारिश करा रही हो, क्या बात है। बिल्कुल, रोड पर बिल्कुल पानी ही पानी है, अब क्या करें सर। मुरादाबाद में बारिश आते ही सड़कें स्विमिंग पूल लगने लग जाती है, पता ही नहीं चलता है सड़क और नाली कहाँ है, लेकिन बच कर आप जाइएगा। विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और सही बात है ना सर, यानी कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, यानी कि अब एसी की जगह पंखा चलाने लग जाएंगे, बस एक ही चीज आप चला पाएंगे। और अगले मैसेज की बात करूं तो, हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी, और बताइए बाहर से आए हैं, बारिश का क्या हाल चाल है?
5: बारिश हो रही है मस्त, रिमझिम रिमझिम
4: रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम बारिश
5: हर जगह झिमझिम।
4: गाइज, अब इनकी आवाज सुनकर समझ गए होंगे कि रात के दीवाने हैं, हर किसी के जख्म पर मलहम लगाते हैं। टूटे हुए दिलों पर मलहम लगाने का ये काम करते हैं। और अगले मैसेज, मतलब ये कहना चाह रही कि हमारे हस्बैंड जी आए हैं, यानी कि भीग गए हैं वो, क्या बात है जी। उनको गर्मा गर्म चाय पिलाइए, वो ठंड हो, थोड़े मतलब ठंड लगे तो गर्म हो जाएंगे, वो गर्मी लग जाएगी उनको, है ना। जब भी आप भारत से आते हैं, भीगे हुए आते हैं, तो देखिए चाय जरूर पीजिए, वरना खांसी जुकाम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप ऑफिस में जाएंगे ना तो अपने आप को छुपाते रहेंगे।
5: कोई आए ना आए, छींक जरूर आएगी।
4: और बॉडी में इचिंग भी होती है भैया।
5: हाँ।
4: कपड़े गीले आप ज्यादा देर तक पहनो तो बॉडी में इचिंग भी होने लग जाती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। इसीलिए आपने हमें मैसेज किया है, क्या बात है जी। तेज बारिश हो रही है और गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। अरे एक काम करिए ना, आप स्टूडियो भिजवा दीजिए यार, आज आपके हाथ की हम चाय पी लेते हैं, भिजवा दीजिए आप। चलिए हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं श्रोताओं, और ये गाना भी आप अगर सुनेंगे ना तो दीवाने हो जाएंगे इस गाने के आप, क्योंकि ये गाना भी बहुत ही फैंटास्टिक वाला है, और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही शानदार है, जो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार भैया है क्या इसमें। इंसानों को मुकाबले जानवरों में ज्यादा कैपेसिटी होती है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

देखिए, छतरी खोलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके बैग पर्स गीले हो सकते हैं श्रोताओं। और शाम का वक्त है, इसीलिए ज्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं होना है आपने, क्योंकि अच्छी करने लग जाएंगे अब थोड़ी देर में। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है। हेलो जी, गज वाली इवनिंग है। समय की बात करूं तो 6:19 हो चुके श्रोताओं। और कहते हैं, अगर इरादे मजबूत हो तो वक्त भी आपके हौसलों के आगे छोटा पड़ जाता है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिख देते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक स्टोरी है, यानी कि झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर यानी कि डॉक्टर मेघा रानी ने महज यानी कि 2 घंटे में 120 हस्तलिखित, यानी कि खुद उन्होंने अपने हाथों से लिखे पन्ने, 2 घंटे में 120 पेजेस उन्होंने लिखे हैं और अपने नाम यानी कि विश्व रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। उनकी यह पांडुलिपियां यानी कि झारखंड की संस्कृति और विरासत पर आधारित है। ये उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि यह साबित करती है कि मेहनत और लगन, अपने काम के प्रति समर्पण इंसान को नई ऊंचाई तक पहुंचा देती है। जहां हम छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं कि मैं कर नहीं पा रही हूं, हार मान लेते हैं, दिमाग खराब होने लगता है ना, क्योंकि हम ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को शांत रखकर कोई भी आप काम करते हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। सो आज एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाना हो, तो वो क्या होगा आपकी जिंदगी में? आप डेफिनेटली मैसेज करके बता सकते हैं जी। नंबर है 9837896896। कहते हैं ना, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, तो सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुले आंखों से आप सपने देखिए। आसमां को देखते हुए सपने देखिए, वो सपने आपके डेफिनेटली पूरा होगा। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, एक और ही झकास वाला गाना, उसके बाद आप सभी के लिए लेकर आएंगे कड़क सवाल।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: हेलो जी, गुड वाले इवनिंग है आज रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6। और देखिए श्रोताओं, समय की बात करूं तो 6:30 हो चुके हैं और अब आप सभी के बीच यानी कि कड़क सवाल लेकर कनेक्ट हो गए हैं। जी, रेडियो को वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाएंगे श्रोताओं तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज का जो कड़क सवाल है वो थोड़ा सा आपको देखिए सर्च नहीं करना है पहली बात तो क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने। और आज का कड़क सवाल ये है, उस जानवर का आपने नाम बताना है जो 22 यानी कि 22 महीने गर्भ धारण करता है। यानी कि इंसानों का क्या है कि 9 महीने का होता है गर्भ धारण करने का, लेकिन उस जानवर में वो जानवर 9 महीने गर्भ धारण करता है और उसका बच्चा यानी कि आने के बाद वो चलने भी लग जाता है। तो उस जानवर का आपने नाम बताना है कि आखिरकार वो कौन जानवर है जो 22 महीने यानी कि 2 साल वो गर्भ धारण करता है। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है श्रोताओं कि आखिरकार वो कौन सा जानवर है जो 22 महीने गर्भ धारण करता है। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल नेहा कक्कर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत ये गाना आपके लिए।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, तेरे वास्ते। यानी कि बरसात के मौसम में कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसे सुनने के बाद आपको सुकून मिलता है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और अक्सर आपने ये सुना होगा ना कि बरसात के मौसम में जो सब्जियां है, फ्रूट्स है, उनके जो नखरे होते हैं ना वो हाई लेवल वाले हो जाते हैं। यानी कि उनके जो भाव है वो बढ़ जाते हैं। जो 20 रुपए किलो मिलते हैं वो 60-70 रुपए किलो मिलते हैं। और साथ ही साथ देखिए, हर महीने कुछ ना कुछ, यानी कि आप सुन ही रहे होंगे कि ये इस चीज का रेट भाव बढ़ गया है, इस चीज का भाव बढ़ गया है। लेकिन अब बरसात के मौसम में ये कहा जा रहा है जो चाय दही में शक्कर यानी कि मिठास घोलने का काम करता है, यानी कि चीनी। बहुत से कहते हैं कि भैया हम डाइट पर हैं, फीकी चीनी पीते हैं, दही भी फीकी वाली खाते हैं, दूध भी फीकी वाली पीते हैं, है ना। लेकिन वही चीनी के नखरे अब नेक्स्ट लेवल वाले हो गए हैं। यानी कि भैया चाय की फीसदी यानी कि 6 से 7 बढ़ा दी गई है। सब्जी के साथ साथ अब चीनी के भी, दूध दही के साथ साथ, पनीर के साथ साथ चीनी के भी नखरे हाई लेवल वाले हो गए हैं। फिलहाल हमें कंट्रोल करना है जी। जो चाय यानी कि शक्कर वगैरह नहीं खाते हैं उनके लिए ठीक है कि हम नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आज का कड़क सवाल भी बहुत ही फैंटास्टिक वाला पूछा है मैंने आपसे जी। और सवाल हमारा आज का ये है, आपने उस जानवर का नाम बताना है जो जिसके गर्भ यानी कि 22 महीने तक होती है, यानी कि इंसानों में यानी कि 9 महीने, लेकिन एक ऐसा इकलौता जानवर है जो गर्भ धारण का समय यानी कि 22 महीने का होता है, यानी कि 2 साल होती है उसकी गर्भ धारण की जो समय है, उसका नाम बताना है आपने। और मैसेज करना है, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। श्रोताओं, हो मैसेज बहुत सारे आ गए हैं लेकिन आपके पास भी अभी चांस है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक वाला है, डांस जरूर करिए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: हां जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ, और एक और मौका है आप सभी के पास, यानी कि सोचने के लिए उस जानवर का नाम बताना है आपने जो 22 महीने तक गर्भ धारण करता है और उसका बच्चा लगभग जब पैदा होता है तो 90 से 120 किलो का होता है। चलिए जी, लास्ट चांस है आप सभी के पास, सोचिए और मैसेज करिए 9837896896।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 6:51 हो चुके हैं। और आइए आप सभी के मैसेज के तरफ बढ़ते हैं भैया, कि किनका क्या मैसेज आते हैं हमारे पास। और आज का कड़क सवाल बहुत ही आसान है, यानी कि उस जानवर का नाम बताना है जो 22 महीने तक गर्भ धारण करता है। अगर मैं पहले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास आता है ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है कि एलिफेंट है। ओके, विक्की सागर जी का कहना है कि जोक है। ओ माय गॉड। अगले मैसेज की बात करूं तो ये आता है मुरादाबाद यूपी से, रणवीर सिंह जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि राइट आंसर है हाथी। ओके,
1: बारिश का बहाना है।
0: बबली अनजान, गीता कश्यप, ललिता जी ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है कि 22 महीने में हाथी बच्चे को जन्म देता है। हथनी, ओके ठीक है जी। और ये हमारे पास मैसेज आता है जय श्री राम रीना जी, क्या हाल है आपके। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि आज मुझे गाना सुनवा दीजिएगा, दुर्गेश सैनी इनके जो दोस्त हैं उनके लिए बोतल भी उठा लाया हूँ। सर ये गाना मैंने अभी आपकी फरमाइश सुन ली है, क्योंकि मौसम भी बड़ा ही अच्छा है, और ये आपकी जो मतलब हमारे जो आप प्यारे श्रोता है उनका जो दिल का कनेक्शन है भैया, रेडियो से कनेक्ट होता है तो हमें पता चल जाता है। मैंने आप गाना को डेफिनेटली सुनवा दिया जी। और इनका कहना है कि आज का राइट आंसर होता है यानी कि हथनी। ओके, ये हमारे साथ कनेक्ट होती है बेबी राधिका, आपके सवाल का आंसर है हथिनी। ओके,

0: और अब बढ़ते हैं हम अगले मैसेज की तरफ भैया। और भी ढेर सारे मैसेज आ गए हमारे पास, और आप सभी के बिना मैसेज शामिल करे ऐसे कैसे जा सकते हैं ना जी।
1: हवे तू लौंग वे मैलाची तेरे पीछे आ गवाची।
0: ये मैसेज आते हैं हमारे पास अमरोहा से, नेहा कनेक्ट होती है। रीना दी आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। बारिश बहुत ही खराब हो रही है। अरे बारिश खराब नहीं होती है यार, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। अब ये मत सोच कि ये आई नो ये ठीक है कि बारिश आती है तो गली मोहल्ले में पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कि हम सड़क पर चल रहे हैं या नाली की तरफ जा रहे हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग रीना दी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं पीहू। और मेरी सिस्टर अंकिता आपके जो आपका शो है वो हमेशा सुनती हैं और इंजॉय भी कर रही है। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ अंशिका जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनके कहने की राइट आंसर है मैम हथनी। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आदित्य जी जो कि लाइन पार से हैं, और इनका कहना है कि हम आपके पास में ही है सर। सर मेरे पास में तो बस चेयर है और मेरा फोन है, डायरीज है, आप मेरे पास में तो है ही नहीं। हाँ इनका कहना है कि हथनी है। ओके अभी की सागर जी का कहना है कि गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, करिए करिए। और इसके बारे में हम कल अपने शो में बताएंगे पूरे इनके हिस्ट्री के बारे में, हथनी के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे श्रोताओं। और अभी मैं यहाँ से लूंगी जाने की इजाजत, और भी जो मैसेज है वो भी जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं जी। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि रूहानी जी का मैसेज आता है, और इनके साथ इनकी दोस्त है सुहानी। क्या नाम है, रूहानी और सुहानी, ओ माय गॉड। इनके कहने के मैम हम आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, साथ ही साथ यानी कि चाय और पकोड़े का आनंद भी ले रहे हैं। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा रणवीर सिंह सर, ये जेठालाल आपका नाम है, चलिए जी आज के बाद हम आपका नाम जेठालाल जरूर लेंगे। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ दिशा कनेक्ट होती है, दिशा और डायरेक्शन दिखाती है हमेशा भैया। और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है यानी कि हथनी, जो कि 22 महीने तक गर्भ धारण करती है, और इनके जो बच्चे होते हैं यानी कि हथनी का बच्चा यानी कि 90 से 120 किलो का होता है, और उनके अंदर यानी कि जब वो गर्भ धारण करते हैं अपने पेट के अंदर, क्योंकि एनिमल्स को ऐसा है कि उनको फिर जंगल में रहते हैं और पैदा होने के बाद वो चलने भी लग जाता है। बिल्कुल जी सही कहा आपने कि वो चलने भी लग जाते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी

कलोनी ने मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद सारिक अली इनके दोस्त हैं। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप सुनाइए कि आप कैसे हैं? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। आज मौसम भी बहुत ही शानदार हो रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी से हमें राहत मिल रही है। बिल्कुल जी, गर्मी से हमें राहत तो मिल रही है लेकिन इस बरसात में हमें ध्यान भी रखना है। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर आया है। ये हमारे साथ बबलू जी आज के विनर बनते हैं। सो बबलू जी, आप ठंड यानी कि बरसात के मौसम में जो भी आपका फेवरेट डिश हो आप वो खा सकते हैं। चलिए, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह करेंगे क्या चीज़ है सारी बातें। बाय बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: बदलते ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
6: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
5: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री

0: जी ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रूपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणबाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियों और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक

0: एक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीसकर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छानकर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंगलता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंगलता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर

0: कोने तक पहुंचेगा
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा। पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं, बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा, तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: हेलो जी, कैसे हालचाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद के साथ बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आज की ब्यूटीफुल सेशन में आज एक बार फिर से हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हैं। बिकॉज आज के खास मेहमान कौन है मेरे साथ एंड आज हम उनसे किस टॉपिक पे बात करने वाले, बिकॉज आज का टॉपिक ना दिस वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड ये टॉपिक ऐसा है जिसपे बात करना तो बनता है यार। और हमने सोचा आज के टाइम पे ना इस पे बात करना बहुत जरूरी है, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, यंगस्टर हो, हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और हमारा राइट भी बनता है। एनआरजी आनंद भी आपसे ऐसे ही बातें करता है एंड आज की इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ कौन मौजूद है, हमारे साथ क्या बात करने वाली है वो डेफिनेटली आपको पता लगेगा। बट शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सनालिटी। आई हैव विद मी सुजाता जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आज उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, किस टॉपिक पे डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उनका वार्म वेलकम करेंगे। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं? एफएम मुरादाबाद में स्वागत है आपका।
1: हाय हाय आनंद, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। मैं इतने साल दिल्ली में रही पर कभी मेरा मुरादाबाद आना तो नहीं हुआ, बट थैंक्स टू यू एंड द रेडियो स्टेशन आज मैं मुरादाबाद के सारे वाक्यों से जुड़ गई।
0: एब्सोल्युटली, और मुरादाबाद के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मुरादाबाद की दाल तो हर जगह पर मिल जाती है मैम।
1: जी, फेमस है ना उसका रेसिपी, मुरादाबादी दाल।
0: बिल्कुल। तो मुरादाबादी दाल तो मुझे लगता है हर शादियों में कहीं ना कहीं होती ही है, और जब जो लोग दाल खाते हैं वो मुरादाबाद मिस ही नहीं करते हैं फिर। है ना? एंड यहाँ पे बिरयानी भी बहुत फेमस है, तो ऑफकोर्स आप भी बिरयानी का लुत्फ उठाते होंगे जहाँ भी आप हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ चीजें दूर बची हैं, अब सब कुछ तो टेक्नोलॉजी पास लेकर आ गई है मैम।
1: बिल्कुल। मैं अभी फिलहाल हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं शादी के बाद हैदराबाद शिफ्ट हो गई, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वैसे भी हमें हर स्टेट की अपनी बिरयानी है और हैदराबाद की तो आपको पता ही है, बड़ी फेमस है।
0: मैं कभी हैदराबाद के नहीं आया हूँ, लेकिन हैदराबाद अपने आप में ही यू नो एक अलग ही पहचान है हैदराबाद की, और वहाँ की बिरयानी का नाम लेते हैं तो ऑफकोर्स हैदराबाद तो अपने आप ही जुबान पे आ जाता है।
1: तो ये सिर्फ मेरी तरफ से वादा रहा कि आप हैदराबाद आइए, मैं आपको घुमाती हूँ, मैं मुरादाबाद आती हूँ तो आप मुझे घुमाइए।
0: अरे बिल्कुल, डेफिनेटली सुजाता जी, नीकी और पूछ पूछ, इनफैक्ट मैंने हमारा पूरा मुरादाबाद आपका वेलकम करेगा और आज आपको पूरे मुरादाबाद में सुना जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से, मोस्ट वेलकम। एंड जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं चाहूंगा उनको एक बार अपने बारे में आप जरा बताएं मैम।
1: जी, मेरा नाम सुजाता सेन गुप्ता है। मैं बंगाली हूँ बट मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, और मैं एक सर्टिफाइड पॉक्सो एंड पॉश ट्रेनर हूँ। मेरा हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट और उसके प्रिवेंशन कैसे हम कर सकें उस बारे में बात करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं रीच करना चाहती हूँ, उनके पेरेंट्स तक मैं रीच करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके राइट्स क्या है, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, और किस तरीके से हम ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट या किसी भी तरीके की सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज से बच सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, या हम मेंटली कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहे, उसके बारे में मैं बात करती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं रीच अपना बढ़ाना चाहती हूँ, पेरेंट्स स्टूडेंट्स एंड बच्चों के पास पहुँचना चाहती हूँ ताकि उनको अवेयरनेस हो।

0: सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उस वजह से ये टॉपिक कितना मेरे दिल के करीब है।
1: आई एग्री विद यू मैम, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इस टॉपिक पे तो हर कोई बात नहीं करना चाहता, और मुझे लगता है कि आज के समय में जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है, सोशल मीडिया पे इतना इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ, हमारे यूथ के पास, पेरेंट्स के पास, हर किसी के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कंफ्यूजन बहुत है। बट हमें राइट इन्फॉर्मेशन को चूज करना बहुत जरूरी है, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, यंगस्टर हो, सभी को जब तक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, आई मीन राइट नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम चीजों को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट मैम?
0: जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राइट इन्फॉर्मेशन, राइट एनकरेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे जो कोर्ट हैं, उन्होंने भी कैसे बच्चों को सपोर्ट किया है और पेरेंट्स को सपोर्ट किया, कैसे ध्यान रखा जाता है हमारे लॉ एंड जुडिशियरी के, अगर ऐसा कुछ भी खुदा ना खासा किसी के साथ हो जाए तो ऐसा कुछ भी रिपोर्ट करते वक्त कैसे ध्यान रखा जाए, क्या किया जाए, सब कुछ एक बहुत अच्छी तरीके हमारे पास गाइडलाइंस है जो हमारे लॉ एंड जुडिशियरी ने हमें दिया है, तो ये सब पता होना चाहिए सबको।
1: एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, पॉक्सो के बारे में बात करूँ तो क्या है ये, इसके बारे में जैसे बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो पे ऑन एयर, बहुत सारे लोगों को पता है बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जब ये सारी चीजें पता लगी तो पता लगा ओ पॉक्सो भी कोई चीज होती है, पॉश भी कोई चीज होता है, एंड मतलब कभी सुना था बट ऐसे इतना डीपली नहीं पढ़ा था मैंने। बट अभी जब आपसे इंटरव्यू करना था तो ऑफकोर्स स्टडी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, किसी भी चीज को करने से पहले है ना, हमें पता होना चाहिए किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे पता लगा वो पॉक्सो का क्या होता है मतलब। सो जितने भी लोग अभी ऑन एयर सुन रहे हैं रेडियो पे आपको, मैं चाहूंगा एक बार आप उनको बताएं ये क्या है, इसका मतलब क्या है।
0: जी, तो जैसे कि मैंने कहा मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ फॉर पॉक्सो एंड पॉश। तो पॉक्सो का मतलब तो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असेंट, ये एक एक्ट है, 2012 का एक्ट है। और पॉश का मतलब है आपका जो सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, उससे आपको प्रिवेंट करने के लिए पॉश है, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये आता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2030। तो ये दोनों ही सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करता है और उससे कैसे निपटा जाए या फिर उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ एंड रिजल्ट ही नहीं, आपको प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन के बारे में भी बात की जाती है इन दोनों में। बट पॉक्सो की हम बात कर रहे हैं तो पॉक्सो जो है, जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश के बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट 2012 में बनाया गया था।
1: ओके, ऑलराइट। तो आई होप गाइस आपको पॉक्सो का जो अंदर का डिटेल है वो आई एम श्योर समझ में आया होगा। वही मैम, मैं अगर आपसे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब इसके कानून के तहत बच्चों की जो परिभाषा है वो क्या है, बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं।
0: जी, तो कोई भी बच्चा जो 18 या 18 की एज से छोटा है वो पॉक्सो के अंडर आता है, क्योंकि हमारी जो लीगल एज है हम जो कहते हैं कि 18 ईयर्स के बाद हम एक इंसान को एडल्ट कंसिडर करते हैं, उससे पहले हम उसको एज अ माइनर ही देखते हैं, नॉट एज एन एडल्ट। तो कोई भी जो 18 ईयर्स ओल्ड है या 18 ईयर्स से छोटा है वो पॉक्सो, उसके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो केस पॉक्सो के अंडर आता है।
1: ओके, अगर किसी बच्चे साथ सुजाता जी गलत व्यवहार हो तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? होता है कई बार बच्चों को नहीं पता होता है, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में क्या सबसे पहले हमें प्रिकॉशंस या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो अगर बाय चांस ऐसा किसी बच्चे के साथ हो जाता है तो बच्चे को जो भी उसके ट्रस्टेड एडल्ट हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो या टीचर हो, उनको शेयर करना चाहिए उनके साथ, और डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें उनकी गलती है या फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड विद देम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये जो एक टैबू है और ये जो एक सोच है इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल ऑफेंस है या आपके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं, स्पेशली जहाँ पे बच्चों की बात आती है, वो बहुत अच्छे से बच्चों को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, जहाँ पे वो बच्चों को ये इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से उनको समझा बुझा देते हैं कि जैसे कि उनकी ही गलती हो और जो सेक्सुअल प्रेडेटर है उसकी कोई गलती नहीं है, जो विक्टिम है उसकी ही गलती है, जो कि बराबर गलत है। तो इस चीज को अपने, ये पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल के और अपने पेरेंट्स को बताइए या फिर अपने किसी भी ट्रस्टेड एडल्ट को बताइए जिसको पे आप पूरा पूरी तरह से भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि वो आपकी बात को समझेंगे। तो ये डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए और फिर आगे बैठ के सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या आपको ये रिपोर्ट करना है। वैसे तो ये मैंडेटरी है पॉक्सो के एक्ट के अंदर कि अगर किसी के साथ भी सेक्सुअल, कोई भी किसी तरह का भी सेक्सुअल ऑफेंस का है और किसी को भी, जैसे समझ लीजिए मुझे किसी बच्चे के बारे में पता चलता है कि उसके साथ ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो ये

0: करना चाहिए।
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू वेरी मच। आप काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं गाइस। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ हैं आप, और इस वक्त साथ सुजाता जी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हैं। पॉक्सो के बारे में आज हम बात कर रहे हैं अपने शो पे ऑन एयर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और वैसे ही इन्फॉर्मेशन हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने यूथ के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपका देसी रेडियो। मैम, अगर मैं आपसे वही बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो पेरेंट्स स्पेशली माता पिता जो होते हैं उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना, सही तरीके से बात करना, बट हमें पेरेंट्स की आज भी वो मेंटेलिटी है कि वो बच्चों को नहीं बता पाते गुड टच बैड टच के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पे क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या ये चीज बतानी चाहिए, उनका ये राइट है? एंड मुझे लगता है आज के समय में ऑफकोर्स जहाँ 2026 चल रहा है, सब कुछ बहुत सुपर फास्ट है, एंड अगर हमारे पेरेंट्स ही हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई और अच्छे से आगे बता पाएगा।
0: जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कि देखिए बच्चे की जो, मैं खुद एक मदर हूँ, मेरी बच्ची 2 साल की है, तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो आप देखिए मेरी बच्ची का पहला एजुकेशन कहाँ होगा?
1: घर पे होगा,
0: तो नहीं होगा, घर से ही होगा,
1: घर से ही होगा,
0: हर चीज की शुरुआत घर से ही होगी। खाना कैसे खाते हैं, टूथब्रश कैसे करते हैं, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, ये सब तो माँ बाप ही सिखाते हैं या घर वाले ही सिखाते हैं बच्चे को। तो पहली जो गाइडेंस है, पहला जो एजुकेशन है, वो हमेशा घर से ही आता है। तो इसीलिए ये हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को भी गाइडलाइंस दें, हर एक चीज के बारे में बताएं। और जैसे कि आपने कहा गुड टच बैड टच, जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको अगर आप सेक्सुअल ऑफेंस और सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। इसीलिए उस चीज को इस तरह से बोला जाता है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। तो ये बहुत कॉमन है, हमें हर जगह सुनने को मिलता है। तो गुड टच बैड टच के बारे में बात करनी चाहिए, अगर बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा है, तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चे टीन एज में होते हैं, तो उनके साथ आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, उनको आप अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ बांट सकते हैं।

0: है और इस बारे में सिखाया जाता है सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो वो बिल्कुल हमें झिझकना नहीं है, हमें उस बारे में अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना है, सिखाना है उनको। और ये जो मैंने अभी कहा टैबू जो है, ये बिल्कुल आपने भी वही बात बोली कि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, शर्मा जाते हैं और
1: हम अपने बेसिकली रिचुअल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी, समाज इन ऑल दैट, इन सब पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और इसी चक्कर में हमारे बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है।
0: देखिए जहाँ पे भी हम ये जो बनावटी बातें हैं, जैसे कि सोसाइटी, समाज, लोग क्या कहेंगे, इन बातों में जब भी हम फंस जाते हैं ना, तो ही हमारे साथ सारी गड़बड़ होती है। क्योंकि जब हम चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो अगर बाई चांस हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द राइट स्टेप, क्योंकि हम हमारा दिमाग उन्हीं बेतुकी और इलॉजिकल बातों में उलझा रह जाता है, जिन बातों का हमारी रियल लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, और हम उनमें ही उलझे रह जाते हैं। इसलिए उन सबको साइड करके आपको इन सारी टैबूज को, ये सारी की सारी झिझक को साइड में रख के अपने बच्चों के साथ बात करनी ही पड़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा, पहला एजुकेशन घर होता है। अगर घर में ही खुल के इन सब चीजों के बारे में बात नहीं होगी, चलिए आप खुल के बात नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत डिस्कशन कीजिए, थोड़ा हिंट दीजिए, चलते फिरते ही सही, थोड़ा यू नो न्यूज के माध्यम से इस बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए, बस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स सेइंग, मतलब क्या है जो रियल फैक्ट है, उनके बेसिस पे हल्की फुल्की डिस्कशन कीजिए। घर में ये सब बात होगी तभी बच्चा जो है, अगर स्कूल में कोई भी इस बारे में ट्रेनिंग देने आएगा, जैसे मेरा काम है स्कूल कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग देना, तो अगर उस बारे में कोई बात करेगा तो उस चीज को विदाउट जजमेंट बच्चा और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। पर अगर घर में ये सारे रिस्ट्रिक्शन होंगे, तो आप याद रखिए, पेरेंट्स के दिमाग में जजमेंट होगा तो बच्चे के दिमाग में भी जजमेंट होगा, और घर में स्कूल में अगर इस बारे में कोई बात करने आएगा तो बच्चा कहेगा कि ये क्या फालतू बातें हैं, ये तो बहुत ही खराब बातें उन्होंने बताई जा रही है, और इस तरीके से सोचेगा और इन्फॉर्मेशन को कभी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बच्चा।
1: एब्सोल्युटली सुजाता जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी जो पेरेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं रेडियो पे। एंड सुजाता जी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन होगा, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन की दुनिया में हर इंसान बहुत एक्टिव है, बच्चे बड़े हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को व्यस्त रख रहा है सोशल मीडिया के टाइम पे, मतलब मुझे लगता है कि किसी के हाथ में आजकल फोन होता है, छोटे बच्चे बड़े है।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
7: तने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने क्षेत्र में वर्षों से संचालित खुली बिजली की तारों को सुरक्षित इंसुलेटेड केबल और भूमिगत विद्युत लाइनों में परिवर्तित करने की परियोजना का शुभारंभ किया।
8: मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट की ओवरहेड बिजली लाइनों का चरणबद्ध तरीके से भूमिगतकरण और इंसुलेटेड केबलों में परिवर्तन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग में नगर निगम के 137 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक प्राथमिक कचरा संग्रहण वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इन वाहनों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जिसमें केशवपुरम जोन में 37, रोहिणी जोन में 46, नरेला जोन में 24 और सिविल लाइन जोन में 30 वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के संचालन से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और नागरिकों को स्वच्छता सेवाएं और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
7: दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5,633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। इसके अंतर्गत पॉक्सो जागरूकता, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और नियमित निरीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि राजधानी के सभी विद्यालयों में गुड टच और बैड टच को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
9: दिल्ली के सभी स्कूल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूलों में लड़का हो या लड़की सिखाया जाएगा क्या होता है बैड टच और गुड टच एनिमेटेड फिल्म्स के माध्यम से। सरकार द्वारा जारी की गई है चेकलिस्ट, जिसके कंप्लायंस रिपोर्ट हर स्कूल को 15 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी कि क्या उनके सभी सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं, क्या उनका पब्लिक इंफ्रा रिस्क पे तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सेफ है कि नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टाफ का और बच्चे का प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि दुर्घटना घट जाती है और बाद में तकलीफ रह जाती है।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सक्षम योजना के अंतर्गत शालीमार गांव स्थित राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में कई आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें एआई इंटीग्रेटेड स्मार्ट स्कूल, टॉयलेट, स्टेम इनोवेशन लैब, आधुनिक कंप्यूटर लैब, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। इस अवसर पर स्टेम इनोवेशन लैब्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 विद्यार्थियों को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एंड रॉकेट सेंटर के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अमेरिका यात्रा के लिए दिल्ली सरकार की ओर से पूर्णता प्रायोजित हवाई टिकट भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की मजबूत नींव आधुनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी आधारित शिक्षा से ही तैयार होगी।
9: दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं तो हर व्यक्ति से, हर संस्था से यही कहती हूँ कि कोई भी राज्य तब तरक्की कर सकता है जब सरकार और समाज मिलकर के काम करे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी राज्य आगे बढ़ेगा।
7: दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम कर दिया है। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को उसके मूल गौरव के साथ पुनर्जीवित करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में निगम की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की व्यापक और गंभीर पहल प्रारंभ हो चुकी है। एक रिपोर्ट।
10: बैठक में पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का डिजाइन इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। श्रीमती गुप्ता ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका एक प्रमुख प्रवेश और निकास चांदनी चौक की ओर से भी विकसित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार में एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया, जिससे पर्यटकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत केवल सांस्कृतिक पहचान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। उन्होंने कहा कि विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को बेहतर सुविधाएं मिले और पुरानी दिल्ली एक विश्व स्तरीय विरासत क्षेत्र के रूप में अपनी नई पहचान बना सके। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
7: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आज एक विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने विशेष अभियान के अंतर्गत पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित औषधि प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया, जहां तापमान संवेदनशील ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन निर्धारित 2-8 डिग्री सेल्सियस की जगह सामान्य कमरे के तापमान पर रखे हुए पाए गए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे भंडार को जब्त कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और भंडारण से जुड़े मानकों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री सिंह ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ड्रग्स कंट्रोल विभाग को राजधानी में औचक निरीक्षण और विशेष अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर डायफ्राम वॉल निर्माण कार्य से की गई। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि विकसित दिल्ली की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि राजधानी में मेट्रो नेटवर्क का निरंतर विस्तार नागरिकों को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। एक रिपोर्ट।
11: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि लगभग 12 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में मेजेंटा लाइन पर 10 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ये कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की 7 प्रमुख लाइनों से जुड़कर राजधानी की कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा। कॉरिडोर का कार्य पूरा होने पर ये सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली सचिवालय, अरुण जेटली स्टेडियम, झंडेवालान मंदिर, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस विस्तार के पूरा होने के बाद मेजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी। ये कॉरिडोर बोटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक लगभग 89 किलोमीटर लंबा होगा और पूरी तरह चालक रहित मेट्रो सेवा के रूप में संचालित किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
7: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में कल शाम एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। श्री गुप्ता ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से क्रेडिट कार्ड संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर 1,00,000 रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी अवैध कॉल सेंटर का संचालन भी कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास से 5 मोबाइल फोन और एक पावर बैंक जब्त किया गया है। आगे की जांच जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी जोन में बरसाती नालों का डिसिल्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। DDA ने बताया कि पिछले वर्ष मॉनसून पूर्व अभियान के दौरान बरसाती नालों से लगभग 33,380 मीट्रिक टन गाद हटाई गई थी। इस वर्ष अब तक 57,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70% से अधिक की वृद्धि है। दिल्ली के उपराज्यपाल राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और भारी वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियों को बेहतर बनाना है। दिल्ली वासियों की सुबह आज भारी बारिश और आंधी के साथ हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने कल हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज शहर में भारी बारिश के मद्देनजर 2400 घंटे लोक निर्माण विभाग मॉनसून कंट्रोल रूम पहुंचकर शहर भर में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न स्थानों की निगरानी कर फील्ड टीमों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया तथा अधिकारियों को पूरे मॉनसून सत्र के दौरान अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जल भराव की दृष्टि से 45 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और सभी स्थानों पर केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़े 189 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 2400 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए विभाग ने शहर भर में 167 स्थानों पर 754 स्थायी पंप तथा 273 स्थानों पर 305 अस्थायी पंप तैनात किए हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रवाद, अनुशासन और सेवा की भावना जागृत करने में एबीवीपी की भूमिका सराहनीय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किया। दिल्ली सरकार ने विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। अगले 45 मिनट तक हम सुनेंगे ऐसे सदाबहार फिल्मी गीत जो कभी मुस्कुराएंगे, कभी गुनगुनाने पर मजबूर करेंगे और कभी पुरानी यादों की सैर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरों की महफिल सजी है,

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है RJ आनंद, एंड ऑफ कोर्स जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट तो होता ही है, क्योंकि मुरादाबाद की शाम हैपनिंग तब होती है जब हमारे साथ मुरादाबाद के लोकल वाला टैलेंट होता है। क्योंकि ये जो शो है वो हम बेसिकली लोकल फॉर वोकल को डेडिकेट करते हैं, और हम कहते हैं यार भाजी अगर आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है, कुछ बढ़िया सी क्रिएटिविटी है, कुछ आप सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं जो आपकी शाम को थोड़ा सा और भी औसम बनाते हैं। और आज की शाम को औसम नहीं भाई साहब, बहुत ही रंगीन और माहौल जो है खूबसूरत बनाने वाले हैं शाम का। कौन भैया मेरे साथ जो अखिल भाई बैठे हैं आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। हाय अखिल भाई, क्या हाल चाल है?
1: तुमने बुलाया नहीं, लॉन्ग टाइम तो इसलिए हो गया ना।
0: अरे यार एक्चुअली मैं खुद ही नहीं आया, मेन बात तो ये है ना, आज बहुत टाइम के हम लोग आ रहे हैं। वेल अभी हाल चाल बताएं, कंप्लेन छोड़े, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। और इस बार ये बताओ तुमने समर वेकेशन अपनी कहाँ करी?
0: यार समर वेकेशन तो मत पूछो, स्टूडियो की एसी में बैठ के करिए भाई, यहाँ से अच्छी समर वेकेशन कहीं नहीं हो सकती। अखिल भैया बता रहा हूँ आपको,
1: तभी बार-बार कहते थे मुझसे कि मैं कभी रामनगर में हूँ भैया, कभी नैनीताल में हूँ।
0: हाँ वो तो खैर सच्चाई ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, हमारे दोस्त बहुत समझदार है, उनको पता है मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहाँ की डाल रहा हूँ कौन से नैनीताल की डाल रहा हूँ। सो वेल कैसे हालचाल, बढ़िया चल रहे हैं आपको देख के? बहुत ही बढ़िया। चलो फिलहाल आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छे जो जिन्हें कह सकते हैं शायर, आज के जमाने के युवा वाले
1: युवा शायर
0: उनको हमने बुलाया है। सो उनका वार्म वेलकम करेंगे। हाय ब्रो, वेलकम टू FM मुरादाबाद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
2: हेलो, मेरा नाम ओम अग्रवाल है, मैं बढ़िया।
0: अच्छा ओम अग्रवाल आपका नाम है और आप बढ़िया हो तो हमें भी लग रहा है देख के। आपको पहले ये बताओ ऑफिस में आके कैसा लग रहा है?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि मुराद में ऐसा कुछ होगा।
0: वाओ वेरी नाइस, अब हो गया है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो।
0: हाँ तो अब अभी अभी कैसा लग रहा है आपको?
2: थोड़ा नर्वसनेस
0: हो रही है, पहली बार बैठे हो। ओके अच्छा बताओ हम पहली बार कहाँ मिले थे, थोड़ा सा भाई से थोड़ा जानते हो, याद भी है या नहीं?
2: पहली बार मिले फर्स्ट ओपन माइक में जब मैं गया था कुछ खास, उसमें मिले थे हम।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो पता चला था कि हाँ रेडियो है मुरादाबाद में अभी भी।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको ये पता लगा तो फिर आपने सुनने की कभी ट्राई करी?
2: एक दो बार ट्राई करी थी।
0: अच्छा,
2: मैंने।
0: अच्छा ओके, मतलब जब टाइम मिला।
2: हाँ जब टाइम मिला बिल्कुल।
0: वेरी नाइस। अच्छा तो ओम जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे लिसनर्स को, आप क्या करते हैं, कहाँ से है मुरादाबाद में?
2: मैं मुराद में एक्चुअली रीति मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जो चमक पुल के पास है।
0: अच्छा भैया ओके, और क्या करते हैं वैसे प्रोफेशन?
2: प्रोफेशन में अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है।
0: वेरी नाइस यार, और आगे क्या करने का प्लान है?
2: आगे मेरा MBA करने का प्लान है।
0: अच्छा तो ये शेरो शायरी वाला प्लान कहाँ से आ गया?
2: ये शेरो शायरी वाला प्लान तो जब दिल टूटेगा तो आता ही है
1: यार। तो मतलब आजकल दिल ज्यादा टूट रहे हैं
0: यार, मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं ना अभी तक एक मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं टूटा, बाकी सबके टूट गए भाई।
1: तुमने दिल की सर्जरी करा रखी?
0: नहीं भैया मैंने दिल में हड्डी पाली नहीं थी, मेरे को पता है दिक्कत हो जाएगी। वेल यार एक बात बताओ, जो लोग शेरो शायरी करते हैं उनका दिल जरूरी होता है क्या टूटना, तभी उनके अंदर का शायर बाहर निकलता है?
2: नहीं,
0: फिर
2: शायरी तो मैं जब किसी के साथ था तो भी लिखता था।
0: अच्छा
2: मतलब दिल टूटना जरूरी होता है समाज को समझने के लिए।
0: ओ वाह अच्छा ऐसा भी है,
2: आपकी एक प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
0: अच्छा
2: कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आप जैसे मान लो देख रहे हैं दुकान पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ दुकान को देखेंगे, मैं वहां पर साइड में लोग जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं उनको देखूंगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है।
0: ऑलराइट अखिल भाई, दिल तोड़ने वालों को बुलाओ, मुझे अपना दिल तोड़वाना है आज ही, मुझे भी ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई।
1: आनंद तुम तो वैसे भी सबके दिल ही जोड़ने में लगे रहते हो यार, कहां दिल तोड़ोगे?
0: ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। तो आज ओम जी हमारे साथ हैं, क्या पूरा नाम बताया आपने?
2: ओम अग्रवाल।
0: ओम अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, इधर अखिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मजा ही मजा आ रहा है आज। और वैसे ओम अग्रवाल जी अकेले नहीं आए हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम उनको इवेंट में मिला था वहां अपने साथी को लेकर आए थे, और अभी भी वो अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं।
2: मतलब दोस्त की जरूरत तो पड़ी जाती है।
0: अच्छा तो ये दोस्तों के बारे में थोड़ा सा मुझे पहले बताओ यार।
2: दोस्तों के बारे में क्या ही बता सकते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि दोस्त के बारे में लिखो, क्या ही लिखूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं इम्पोर्टेंट हिस्से में लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिग्रेड नहीं कर सकता मैं।
0: ऑलराइट मतलब आपको जो लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनकी स्पेशल कैटेगरी है उनके बारे में शब्द ही कम पड़ जाएंगे शायद, है ना,
2: कोई शब्द ही नहीं है।
0: नाइस, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। और आज जो आपके साथ आपका साथ देने आए हैं, इनका क्या नाम है?
2: इनका नाम अंतरिक्ष गुप्ता है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कब से आपके साथ है?
2: ये सेकंड क्लास आई थिंक, फिर बीच में चले गए थे वैसे बाहर। तो
0: अच्छा अच्छा, लेकिन दोस्ती में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ ना?
2: दोस्ती में
0: कोई डिस्टेंस नहीं आया? बहुत बढ़िया। नहीं यार, आजकल दोस्ती भी जो है ना, लोग कहते हैं कि वक्त और टाइम देख के होती है और वो पैसा देख के भी होती है।
1: मेरे को अपनी इन्हीं की बात पे एक बात याद आई, मेरे एक बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड है,
0: अच्छा,
1: राहुल जैन करके।
0: अरे वाह।
1: तो मैं 9th क्लास में था उस समय और हम दोनों के बीच में हल्की सी लड़ाई हो गई थी।
0: ऑलराइट।
1: तो हम लड़कों में तो ऐसी लड़ाई हो जाती है, हाँ भी तू चल, तुझे तो कल देख लूंगा। मतलब दोस्त भी अच्छी है कि दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि बड़े प्यार से लड़ भी रहे हम दोनों। तो भाई वो मेरे लिए अगले दिन ग्रीटिंग कार्ड लेके आया, उस दिन ग्रीटिंग आर्चीज के गैलरी से स्पेशली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार दोस्तों में कहाँ ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं। ओ भाई मेरे लिए आई लव यू वाला, मतलब आई लव यू इन सेंस की हैप्पी ब्रदर्स। तो वो एक कार्ड लेके आया, तब मेरे को थोड़ा सा ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जिस दोस्ती को जिस तरीके से ले रहा था उसके लिए वो दोस्ती का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा,
0: आजकल के लौंडे नहीं समझेंगे भाई, अगर आई लव यू हमने किसी को दे दिया तो आप समझ लो कि कुछ और ही मामला होगा। तो मतलब वो वाली दोस्ती जेन्युइन वाली आज के टाइम में ना भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, क्यों? आपको क्या लगता है?
2: देखिए जैसे मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है,
0: एब्सोल्युटली
2: इंसान सब अच्छे होते हैं,
0: करेक्ट।
2: तो ढूंढना होता है बस।
0: अच्छा, कुछ लोगों को ना अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है।
2: देखो वैल्यू तो मैंने भी नहीं करी थी बहुत बार, बस सीखा हूं।
0: अरे वाह,
2: वैल्यू करनी चाहिए हर चीज की।
0: क्या बात है, वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे नहीं यार, आप मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार आप।
2: नहीं, जब मैं किसी के साथ था तो फिर मैंने दूसरे दोस्तों की वैल्यू नहीं दी थी।
0: ओके।
2: तो मैंने उसे सीखा।
0: होता है ना जब नया नया बंदा आता है तो तू कौन, कहाँ का दोस्त, कहाँ से आया भाई, चल भाई तेरी मेरी हो गई खत्म। वो फिल्मी सीन हुआ है फिर आपकी लाइफ में तो।
2: हाँ, कह सकते हैं।
0: और अच्छा, ये जो ओम जी हैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ओम अग्रवाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके टूटे दिल का राज क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, आपको बोरिंग नहीं करेंगे, जो कॉन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली एंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कुछ शेर व शायरी भी होंगी यार आज की शाम। सो रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए, वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे आनंद। आज की शाम को थोड़ा सा झकास और फर्स्ट क्लास अरे मैं एंड साथ में अखिल अग्रवाल जी हैं, उमो अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनके फ्रेंड भी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे बोलने का बिल्कुल पैसा नहीं लिया है, इसलिए वो चुप ही बैठेंगे फिलहाल। अखिल जी आप बताएं, मजा आ रहा है भैया से बातचीत करके? आज अग्रवाल से अग्रवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं,
1: मजा तो आ रहा है। और आनंद जैसे
0: कि आमने सामने टकरा रहे हैं, देखो इधर से उधर आमने सामने बैठे हैं,
1: बिल्कुल सही। मतलब हम इसमें टकराना नहीं कहते, इसे तो एक मोहब्बत ही है, इसे टकराना तुम यहाँ
0: ग्रीटिंग कार्ड वाली मोहब्बत अभी भी आ रही है अखिल भाई की।
1: दोनों बनिए सामने हैं, आमने सामने।
0: अच्छा बनिया अग्रवाल को कहते हैं, एक मेरी भी दोस्त है वही बनिया है, फिर समझ गया हूँ मैं।
1: जैसे श्रोताओं मैं हमेशा हर बार आनंद के दिल की बात बोलता हूँ ना, वैसे ये बात दिल के आनंद से निकल के आ रही है, बस अल्फाज मेरे हैं।
0: ये हमेशा अपनी शायरी में ना मेरे को चपले पढ़वाते हैं, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इनकी शायरी जरा। हाँ प्लीज भैया।
1: प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
0: वाह।
1: प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए,
0: क्या बात है।
1: अपना

0: कहने से कोई अपना नहीं होता।
1: वेरी नाइस।
0: अपना है जिसे दिल से अपनाया जाए।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जरूर हम आपको दिल से अपनाएंगे, लेकिन दो दिन के बाद भैया आपके पास वापस आएंगे। आप प्लीज कुछ बताएं, जरा कुछ सुनाएं यार, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत एक अच्छी तरीके से होती है तो मजा आ जाता है ना।
2: तो जैसे कि अभी मोहब्बत मोहब्बत की बात चल रही है आपकी, तो एक मोहब्बत के ऊपर पढ़ना चाहूंगा मैं।
1: बिल्कुल यार बिल्कुल।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ।
1: वाह।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ जिस तरह हर रोज तुम मुझे देखा करती हो।
1: वाह जी वाह।
2: तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है। तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे हाथों को कसके पकड़ा करती हो।
1: वाह।
2: तुम्हारे बिना मेरा आसमान फीका लगता है। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन जब भी तुम मेरे सीने से आकर लगा करती हो। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश। तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो। तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो।
1: वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छू, क्या बात है, शानदार। शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मुझे आपसे पूछना है, ये आप खुद से लिखते हैं या फिर आपको कैसे आती है थॉट्स?
2: खुद से लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं।
1: अरे
2: तो लिखना आ गया।
1: आपके फेवरेट शायर कोई, जिनको आप याद, यू नो आज भी?
2: मेरा फर्स्ट मैंने शेर सुना था।
1: हाँ।
2: एक मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था।
1: हाँ हाँ।
2: उसमें एक जाकिर खान के पॉडकास्ट में उन्होंने, पॉडकास्ट नहीं था, रिक्ता में गए थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो।
1: वाह।
2: तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ उस चीज से, तो मैंने पढ़ना चालू करा जॉन एलिया को। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट शायर तो नहीं, बेस्ट कहूंगा मतलब डिग्रेड नहीं करना किसी और को, बस मेरे को पसंद है वो।
1: क्या बात है, मतलब टच कर गई उनकी बात है
2: जी,
1: जो आपके दिल में इस तरीके से लगी फिर आपको मजा आ गया पढ़ने में। बहुत बढ़िया। और मैं सच बताऊं तो भाई, जब तक आपको किसी चीज से लगाव ना होना तब तक आप अपनी 100% नहीं दे पाओगे
2: जी।
1: तो आपका 100% देने के लिए आपका लगाव होना बहुत जरूरी है ना। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा आप मतलब आपको कब टाइम मिलता है ज्यादातर, जब आप सोचते हो यार कि आज मुझे कुछ बढ़िया लिखना चाहिए या फिर आज ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा?
2: मैं सोचता हूँ मैंने कभी बढ़िया लिखा ही नहीं अभी।
1: अच्छा,
2: वो एंड में ही लिखा जाएगा, मतलब हर रोज सोचता हूँ कि अपग्रेड करना है अपने आप को। तो मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी लिखना है बैठ के। कुछ भी ख्याल आ जाते हैं, किसी को देख के ख्याल आ गया, किसी की बातें सुन के ख्याल आ गया, या कोई रील चला ली, रील पे देख के कुछ ख्याल आ गया। तो एक ख्याल आना शायर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी आप जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, कुछ शायरीज जो आप चाहते हैं कि वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचें, जिनको आप अक्सर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जैसे आप कुछ खास में भी गए, आपने वहां पर भी कुछ खास सुनाया। हाँ। तो ऐसे कुछ खास यहाँ पर भी सुना दो यार, कुछ बढ़िया सा एक और।
2: देखो मैंने जो भी लिखा है अब तक सब खास ही है, क्योंकि मैंने जिस शख्स से लिखा है उस शख्स के लिए मेरे से बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता।
1: वेरी नाइस यार।
2: तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के शायर जो आते हैं कहते हैं मैंने अच्छा लिखना चालू नहीं करा अभी, लिखा है शुरू शुरू में, मेरे को लगता है वो वहाँ थोड़ा लैग करते हैं मोहब्बत में यार। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी है, सबसे अच्छी चीज लिखी है। तो मैंने ये चीज लिखा है कि दूसरी जब मोहब्बत मेरे को होगी, तो दूसरी मोहब्बत जब आ रही होगी मेरे पास, उसके लिए मैंने लिखा है जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा। जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को। यकीन ही नहीं था तू मेरे शहर आ रहा होगा। काफी अरसों बाद मैं मुस्कुराया कुछ सोच कर, शायद धीरे धीरे तेरा मुझ पे असर आ रहा होगा।
1: क्या बात है।
2: ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा।
1: क्या बात है।
2: सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम। लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा। लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: मुझे लग रहा है स्टूडियो से जाते जाते कोई ना कोई हुनर मिल ही जाएगा
1: यार। मुझे भी लग रहा है, इन्हें नहीं हमें जरूर मिलेगा फिर। अच्छा यार एक बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ओम भाई, वो ये है कि जब आदमी प्यार करता है तब उसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, जब उसका दिल टूटता है तब ज्यादा अच्छे आते हैं।
2: देखो वही कहता है ना, जब कोई चला जाता है उसकी हिम्मत ज्यादा होती है तो समझ में आता है कि हाँ यार।
1: लेकिन यार
2: तो सोचा नहीं,
1: ऐसा तो नहीं है कि इस पार वाले को समझ आती है, उस पार वाले को भी डेफिनेटली आती होगी ना फिर तो।
2: वो अहमियत नहीं दे पाते फिर।
1: ओके, मतलब वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं।
0: तो ओम जी, उम्मीद है आपसे कि ये अहमियत जो एहसास है, जब जब ये एहसास निकलेगा, इसका मतलब हमें ये लगे कि कहीं ना कहीं ओम भाई का दिल टूटा दोबारा। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आनंद जी, जब जब ये ओम जी आपसे स्टूडियो में टकराया था, इसका हर बार इनका ब्रेकअप ही हुआ?
1: नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा। खैर नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा है यार। खैर बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत उमदा आपने लिखे अभी तक जो भी आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ओम जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि प्यार प्यार तो प्यार है ही, लेकिन प्यार को इतना ज्यादा लोगों ने आजकल ऐसा बना दिया फैशन, है ना। प्यार प्यार की तरह रहा नहीं है। अखिल भाई से, अखिल भाई आपको बताऊंगा, आपके टाइम में तो अलग ही प्यार होते होंगे।
0: मेरा टाइम क्या मतलब, मैं क्या कोई बहुत पुराना मॉडल हूं?
1: आप अभी इस टाइम पे आपको देख के तो लग रहा है बहुत, हमारे से तो बहुत पुराने मॉडल हो, नो डाउट यार, सबको पता है। तो मतलब आजकल की जिनजी का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। वो आजकल व्हाट्सएप वाला इंस्टाग्राम वाला प्यार हो गया है, तो उसपे दो मिनट में वो वाली लड़ी आ जाती है जो तुम्हें इंटरेस्ट करेगी, दो मिनट में ऐसी आती है तुम्हें ब्लॉक करेगी। तो मुझे समझ नहीं आता उसके ऊपर कुछ है भैया आपके पास, ये जो आजकल के जमाने का प्यार है। एक्चुअली दिस इज लो, मुझे लगता है अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ लव यार।
2: अट्रैक्शन कह सकते हो, पर वो एक हवस की तरफ जाता है चीज है।
1: करेक्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब एक जिसे कह सकते हैं एकदम रियल वाला प्यार जो एक होता होना चाहिए, वो अब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। या अभी भी है? जिंदा
2: जिंदा है, तभी तो हम जितना है।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं फिर वो अपनी दिल की शायरियों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बयां करते हैं, मतलब अपनी कलम और अपनी कॉपी से ना। कुछ है तो बढ़िया सा और सुना दो यार एक, और फिर ब्रेक पे चलेंगे गाइस, म्यूजिकल ब्रेक पे।
2: आपने जैसा सुना होगा कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं दूसरी मोहब्बत करूंगा किसी से। आप मान लो कि मैं आप किसी और से मोहब्बत कर रहा हूँ, तो मैं उसे पूरी तरह एक इंडल्ज नहीं हो पाऊंगा।
1: ठीक है,
2: उसको जो फीलिंग आएगी जो वो मेरे को देगी अपने, उसको मैंने लिखा है।
1: अरे वाह,
2: तुम क्यों इतना ज्यादा उदास बैठे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहते हो।
1: वाह,
2: मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा हर वक्त, तुम फिर भी मुझसे इतना डरे रहते हो। मुझे मालूम है मैं पहली मोहब्बत नहीं, तुम ये मुझे बताने से क्यों घबराते हो। मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, तो फिर तुम इसमें डूबने से क्यों डरा करते हो। मैं तुम्हारे दिले जमीन का हिस्सा हूँ ओम, तुम इस पे हक जताने में भी सोचा करते हो।
1: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया,
0: बहुत शुक्रिया
1: ओम जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। गाइस आपको भी आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। आपकी हिम्मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन। आपने अभी बहुत ही बेहतरीन गाना सुना, इसके बाद स्वागत अभिनंदन आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, साथ में अखिल जी भी हमारे साथ दे रहे हैं और ओम अग्रवाल सामने बैठे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शेरो शायरी पेश कर रहे हैं आज अपनी आवाज में। बहुत अच्छा लिखकर लेकर आए हैं अखिल जी, आपको मजा आ रहा है या नहीं ये बताओ पहले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है और मैं तो यही कहूंगा मजे मजे में। तेरे इश्क ने हमें कुछ इस कदर मशहूर कर दिया,
0: वाह जी वाह,
1: हर खुशी से ज्यादा तेरे गम को मंजूर कर लिया।
0: वेरी नाइस।
1: लोग कहते हैं मोहब्बत में दर्द मिलता है, हमने दर्द को ही अपना सरूर बना लिया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। अखिल जी की शेरो शायरी भी चलती रहेगी दोस्तों, फिलहाल हम ओम जी की तरफ चलेंगे, वो कुछ सुनाने वाले हैं जिसे सुन के शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए जी। ओम जी,
2: गजल ये है कि जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं।
0: वाह,
2: जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं, हम भी उसी जगह गिरफ्तार बैठे हैं। लोग पूछने आए थे मेरे मौत की वजह, लोग पूछने आए थे मेरे मौत की मजा, घर वाले उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं। घर वाले
0: तो
2: उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे
1: हैं। कैसी तस्वीर, कैसी थी ओम जी, कुछ तो बताएं तस्वीर के बारे में ही बताएं कुछ।
0: उनको खुद नहीं पता ना यार, उनको पता होता है वो बता नहीं देते यार, आप भी तो पीछे पड़ रहे हो यार।
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तस्वीर कौन ले रहा है, आजकल तो मोबाइल से ही दिखा देते हैं, बायोडेटा भी मोबाइल पे आ रहा है
0: आजकल, मोबाइल पे फेक भी आ रही है, ये भी ध्यान रखना होती कोई और है भेजता कुछ और लोग है ना, रियलिटी बातें पता लगती है, इसीलिए ऑनलाइन पे भरोसा ना करें, जो आपके सामने प्रस्तुति दे उस पे ही भरोसा करें।
1: तो आनंद जी कहना चाह रहे हैं कि मैं shaadi.com से नहीं, मैं अपनी जो वो होते हैं ना लोकल इन्फॉर्मेशन वाले .com उनके जरिए ही आगे का काम करूं।
0: हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आरजे से .com पे बिलीव करता हूँ, मैं shaadi.com पे बिलीव नहीं करता अखिल जी, सच बात तो यह है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी और जेन्युइन दे सकते हैं वो ये .com नहीं दे सकते। वैसे सच बताऊं तो यार हमें किसी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह पे बहुत ही सही है, जहां जिसका काम बने वो बेस्ट है, है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो अपने ट्रस्ट की बात है, बाकी सब बढ़िया है।
1: कुछ ओम जी इसी से मिलता सुनाइए।
0: बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगा, बैक टू पॉइंट।
2: आगे का शेर भी है वैसे।
0: हाँ जी प्लीज बताएं।
2: पढ़ना चाहूंगा कि
0: श्योर,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: वाह,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: क्या बात है,
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में सब किरदार बैठे हैं।
0: अरे
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में सब किरदार बैठे हैं, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, देखो वो लोग आज कितने बेजार हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं।
1: वाह।
2: ओम क्या फिर नहीं देखा, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, तेरे जैसे आशिक भी, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं।
1: ओम जी आप हर शायरी में अपने आप को जरूर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये एक अच्छी बात है,
0: मतलब अपने नाम को जो तुमने ऐड किया ना यार, ये एक अलग ही क्रिएटिविटी है,
1: और
0: मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी शायरी तुमने खुद के लिए बना डाली, अगर उसमें मैं और अखिल भाई अपने आप को ढूंढेंगे तो ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाएंगे, खो ही जाएंगे हम तो यार।
1: तो ये तो खोने वाली बातें थी इनकी। अच्छा एक बात बताइए ओम, मतलब मुझे नहीं पता श्रोता जानना चाहते नहीं जानना चाहते, मगर मैं और आनंद जी तो बहुत ही अच्छे से जानना चाहते
0: हैं डेफिनेटली,
1: कि आपको ये समय कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है ना कि भाई पूरे दिन आप भी अपनी पढ़ाई में बिजी, अपने काम में बिजी है, तो एक पर्टिकुलर आपने टाइम निकालते हैं शायरी को लिखने के लिए, या कुछ मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में और जैसे ही वो कुछ मोमेंट आपके साथ होते हैं तभी आप उस पर कुछ लिखते हैं तरुण?
2: नहीं ऐसा जनरली नहीं होता है, कि हमेशा याद आती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि लोग आजकल मोहब्बत में जाते हैं, फोन पे टाइम निकाल ही लेते हैं बात करने का, तो मेरे लिए शायरी मेरी मोहब्बत है तो मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेता।
0: That's very nice. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। वो आपके ब्रेन को ऑलरेडी हिट करता है कि नहीं भाई तुझे ये चीज करनी है ना, वो वाली चीज है, बट वो ये कि जिस चीज से आपको मोहब्बत होगी उसके लिए ऑटोमेटिकली समय निकल जाएगा। अखिल भाई आपको मोहब्बत है रेडियो और माइक से तो आप समय निकाल के आ ही जाते हैं।
1: मैं तो निकाल ही लेता हूं,
0: बस वही वाली बात है, जिस चीज से जिसको प्यार होगा वो समय निकाल ही लेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, ये किसी को जब नया नया प्यार होता है उसमें बहुत सारी शेर व शायरी होती है, जब आपको पहली पहली बार प्यार हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो आपने भी चिपकाया ही होगा, हर बंदा चिपकाता है यार, क्यों अखिल भाई? कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा कि तुम्हारे बाल सुंदर है, तुम्हारे गाल सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ यार। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ आप नहीं चाहते हैं, तो कुछ अगर ओम जी आपके पास इससे रिलेटेड हो, सपोज किसी को आज नया नया प्यार हुआ हो और वो रेडियो सुन रहा हो,
1: आज आनंद जो है ओम जी आपसे इंडिया में टिप्स ले रहे हैं, तो टिप्स बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली देना।
0: हाँ, अब अखिल भाई पे तो ट्रस्ट थोड़ा कम है, उनकी टिप्स तो फेल होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ले लूं भाई।
2: ढूंढना पड़ता है इसके लिए थोड़ा।
0: अच्छा कोई बात नहीं, जब तक अखिल भाई आप ढूंढी ढूंढाई सुना दो यार, आपके पास तो डेफिनेटली होंगे।
2: मिल गया है वैसे।
0: अच्छा
1: ढूंढ लिया है।
2: मिल भी गया,
0: क्या बात है, मेरा लक अच्छा है फिर आज। प्लीज भैया,
2: शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना,
0: हाँ जी,
2: तो बहुत सारे ख्याल आते हैं यार, ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, वो ये कर रही है मेरे लिए, वो कर रही है, तो मैंने उसके लिए लिखा है, अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही।
0: वाह।
2: अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही, मैं अपना नाम लिख रहा हूँगा वो मोहब्बत पढ़ती रही।
0: क्या बात है।
2: मैं अपना नाम लिख रहा हूँगा वो मोहब्बत पढ़ती रही, पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पे, वो हाथ पकड़ लेते हैं, लकीरें लिखने शुरू कर देती है, अपना नाम ढूंढती है। वो पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पर, फिर वो मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही, फिर वो अपने मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही। वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई, वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई, देखता गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही।
0: अरे वाह।
2: देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही। आंखें बंद करने को बोली जब पहली दफा उसने, तो सच में हुआ था।
0: अच्छा।
2: आंखें बंद करने को बोली जब उसने पहली दफा, गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही।
0: क्या बात है।
2: गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही।

0: और एक हम थॉट सोचते हैं यार ब्रेकअप हो गया तो उससे कहते भी हैं, तो उस बात पे गुस्सा हो जाती है। तो उसके बारे में एक शेर है, फुरकत की बात मत किया करो, फुरकत की बात मत किया करो, मेरे हाथों पर उंगली, मेरे मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही,
1: क्या बात
0: चुप
1: है?
0: करा देती है।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: ये तो है। ये
1: एक
2: तो
1: पल में प्यार हो रहा है, वही दूसरे पल में शिकायतें भी हो रही है।
2: ये अभी भी चुप करा देंगी और बाद में जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ही बड़ा <पड़ा
1: है। laughs> ये बात तो आपने सही,
2: ओम जी जो हैं बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही राह पे चल रहे हैं। इनकी शायरी से पूरा दर्द सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी शायरी में जो बगावत एक शब्द आया, मुझे उससे धर्मेंद्र जी की पिक्चर याद आ गई, बगावत। अरे फिल्म देखी थी, बहुत ही कमाल की।
2: आप मुझे बचला, आप ये वर्ड कहाँ से पकड़ लेते हैं?
1: तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी एक गाना सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। इनको पहली पहली बार प्यार हुआ तो उन्होंने पहली बार पे एक पहली अच्छी शायरी सुनाई, मतलब जब पहली बार प्यार होता है तो उसी से रिलेटेड एक प्यारा सा लव सॉन्ग। उसके बाद मिलते हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे ओम अग्रवाल जी। सो आप यहीं में जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, बंदे का नाम आनंद है एंड ऑफ कोर्स आपकी शाम को हम बहुत ही फैबुलस बना रहे हैं। हमारे साथ अखिल भाई हैं आज की इवनिंग में, ओम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जो अपने प्यार की चिट्ठी पूरी लेकर आए हैं, लिख के इतनी बड़ी मतलब भारी भरकम डायरी वो लेकर आए हैं, और एक नहीं दो तीन डायरी लेकर आए हैं, लेकिन सुना वो एक में से रहे हैं, ये मजे की बात है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी डायरी क्या फिर नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहे हो?
1: बाकी का फिल्टर है,
0: फिल्टर है ये,
2: कई सारी डायरीज में जो इम्पोर्टेंट डायरी है वो तुम्हारे सामने आज।
0: अच्छा ओके, वेल कोई बात नहीं, अरे हम तो कहेंगे जो भी आप सुनाते दिल से हमारे लिए तो वही बढ़िया है।
2: ये आज ये टिप्स ना बढ़िया वाली देना, आज ये बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं स्टूडियो से बाहर निकलते राह चलते ये भी अपने कोई ना कोई नगमा ढूंढ ही लेंगे।
0: नहीं भाई नगमा नहीं ढूंढना, मुझे तरन्नुम ढूंढना है।
1: अरे
0: ढूंढनी है, सॉरी गड़बड़ हो गया है, सॉरी। वेल कोई बात नहीं, इस बहाने से आप लोग के चेहरे पे हंसी तो आई ना, मेरा मेन मोटिव यही होता है, मेरा मेन मोटिव होता है दोस्तों कि आप हंसे मुस्कुराएं और ऐसे ही इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करें। बैक टू पॉइंट, अखिल भाई जब तक कुछ बढ़िया निकालेंगे तब तक हम ओम जी से कुछ बढ़िया सुनते हैं। जी ओम जी,
1: अरे आपको कभी ऐसे मोहब्बत नहीं हुई शायद अभी?
0: नहीं यार बिल्कुल, मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं है, हुई है तो सिर्फ अपने काम से हुई है, और इसके लिए मैं जितना सोचूं जितना लिखूं वो कम है,
1: उससे तो होनी भी चाहिए। जैसे कि आप मोहब्बत मुकम्मल होती है, खुशी होती है,
0: करेक्ट।
1: तो मैंने एक रील देखी थी कि वो एक लड़का अपने होने वाली वाइफ को सिंदूर लगा रहा था, तो उसने अपने ससुर जी से कह दिया कि मेरी घड़ी का वक्त रुक दो, उस घड़ी को संभाल के रखूंगा। तो मैंने उसके लिए लिखी थी एक, रुक जाता है वक्त, रुक जाता है वक्त,
2: ले लेंगे लाइन,
1: रुक जाता है वक्त, जब भी तुम्हें देखा है मैंने, आसमान में अब चांद नहीं आईना देखा है मैंने,
0: वाह,
1: यूं तो तुमने भी निभा लिया, यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मोहब्बत का वादा, यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मांग भर के तो वक्त भी रोक दिया है मैंने।
2: क्या बात है,
1: कभी तो लगता है मैं ही कभी तो लगता है मैं ही खड़ा हूं सामने, कभी तो खुद में ही तुम्हें देखा है मैंने, लगता है बहुत अमीर हो चुका हूं मैं, लगता है बहुत अमीर हो चुका हूं मैं, शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने, शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने, ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद, ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद, ये खुद से कई कई बार कहा है मैंने,
0: वाह
1: ये खुद से कई कई बार कह दिया है मैंने।
0: बहुत ही बढ़िया, तो कितनी बार कहा है आपने खुद से?
1: अभी तो नहीं
0: की बात तो पूछ ली जरा मैं, क्यों अखिल भाई?
2: नहीं,
0: ये शायरी है, ये सच्चे दिल की बात है या हमसे छुपाया जा रहा है?
1: अरे अभी तो नहीं है कोई।
0: अच्छा अच्छा, अभी मतलब सिर्फ जितना भी हमारी शेर शायरी तक ही सीमित है।
1: हाँ शेर शायरी तक ही सीमित है, एक इमेजिनेशन होती है।
0: हाँ। बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या कोई बढ़िया सी तुमने लिखी है, जो फ्यूचर में तुम्हारे आने वाली होगी तो कैसी होगी, उसके लिए बढ़िया सा?
1: उसके लिए अभी लिख नहीं पाया क्योंकि मैं अब उस चीज में इतना सोचता नहीं हूँ।
0: ओके,
1: डर लगता है उससे,
0: डर लगता है बहुत।
2: अच्छा जी, जो बीच बीच में शायरी में ओम जी आ जाते हैं हमारे, तो अगर उन ओम जी को कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में अगर उनकी शायरी पढ़नी चाहे देखनी चाहे तो आप कैसे कांटेक्ट किया जाए उसमें?
1: मेरे एक पेज है दिल ए स्याही नाम से।
2: दिल है
1: दिल ए स्याही,
2: दिल ए स्याही, तो उस पेज को
1: फॉलो कर सकते हैं,
2: फॉलो कर सकते
1: हैं तो आपको।
2: तो आनंद जी तो अभी फॉलो कर लेंगे,
0: नहीं हमने कर रखा है तभी वो यहाँ बैठे हैं। अगर हम फॉलो नहीं करते तो वो यहाँ नहीं बैठे होते, सच्चाई यही है। क्यों ओम जी?
1: जी जी,
0: हम एक दूसरे की एक्टिविटी देखते रहते हैं, बहुत जरूरी, उससे पता चलता रहता है कि कौन कितना क्रिएटिव है।
2: एक जगह नगमे जो है पकड़े आ रहे हैं,
0: करेक्ट कह सकते हैं, आप नहीं डालते हो ना इसलिए आपका नगमा पीछे रखा हुआ है, आप भी पोस्ट करना शुरू करो। अच्छा भैया एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जो जैसे होता है ना कि कई बार हर इंसान को हर चीज पसंद आए जरूरी नहीं होता है ना, आप जो शेर शायरी कर रहे हो वो आपको पसंद है, वो आपका क्राइटेरिया है क्योंकि आप उस चीज को बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन आपके जो यार दोस्त हैं उनको तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पसंद नहीं होती, लेकिन वो फिर भी वाह वाह करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है?
1: ऐसा नहीं है, इन लोगों का भी दिल टूटा है।
0: अच्छा,
2: जो आपके साथ आपके दोस्त आए हुए हैं जो आपके साथ ही चलते हैं
0: उनका भी दिल
2: टूटा है, उनका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे कि कभी जैसे ओम ने कुछ लिखा है या कुछ भी कोई बात तो कहीं क्लिक करता है आपके मन में या माइंड में? यार
0: थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो यार, अखिल भाई मैं पूछना चाहूंगा इनके बारे में, थोड़ा सा आप बोलो कुछ।
3: मेरा नाम अंतरिक्ष है और मैं ओम को
0: अंतरिक्ष
3: जी
0: जो आसमान में जाते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट भी जाते हैं शायद वहाँ पे अंतरिक्ष,
2: आज आप पूरा यूनिवर्स साथ में।
0: अरे वाह, मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर, हेलो कैसे हो आप? मैं पूरे अंतरिक्ष को देख पा रहा हूँ आपके अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी नाइस। हाँ मैं भी बढ़िया हूँ, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए यहाँ के?
3: मेरे लिए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, मैंने मुरादाबाद में कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं किसी स्टूडियो में बैठ के ऐसे एक पॉडकास्ट सेटअप में बातें कर रहा हूँ
0: क्या जैसे है? अरे वाह,
3: तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग है।
0: अमेजिंग, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। ये भी अच्छी फीलिंग है कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई नहीं बोल पाता है ना, ये वाली बात है।
3: बोलने में तो बहुत ज्यादा माहिर हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है,
3: मैंने बहुत सारे शोज भी करे गाने के, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे एक स्टूडियो में बैठ के फर्स्ट टाइम है, बट ऑडियंस के सामने नहीं है, तो मैं इतना घबराता नहीं हूँ बोलने से।
0: नहीं नहीं यार क्या बात है, तो आप क्या अच्छा गाते हैं अखिल भैया आप? फिर तो जब गाने की, हम लोग तो वैसे भी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, भाई कुछ तो पकड़ के सुनाओ, कुछ तो बढ़िया गुनगुनाओ, मतलब क्या चीज है जो आप, मतलब आप पहले से गाते हैं या मतलब?
3: नहीं नहीं, मेरे को गाने का शौक बचपन से है, मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे।
0: ओ वाओ।
3: और वो उन्होंने एमटीवी में एक बारी शोज में भी गए हुए हैं, तो वो जो उनके गाने का तरीका वो शायद मेरे अंदर इनहेरिटली आया है।
0: वेरी नाइस यार,
3: तो मैंने उनको देख के ही सीखा है जो सीखा है।
0: आप भी मुरादाबाद से हो?
3: जी मैं।
0: आप कहाँ से हैं भैया?
3: मैं सिविल लाइन्स से।
0: सिविल लाइन्स मुरादाबाद। अच्छा, अभी प्रोफेशनली क्या चल रहा है, स्टडी कम्प्लीट हो गई?
3: जी मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई है बीसीए से, और अभी मैं फिलहाल एक बिजनेस कर रहा हूँ, इवेंट मैनेजमेंट।
0: क्या बात है, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। इवेंट मैनेजमेंट, लोगों की शादियों को अच्छे से मैनेज करना या फिर सारी इवेंट मैनेजमेंट?
3: सारी ही इवेंट मैनेजमेंट, मोस्टली शादियां। मेरे को शादियां करवाना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: क्या बात, तो अपनी हो गई अभी या नहीं?
3: नहीं नहीं, मेरी कहां।
0: अरे वाह, मतलब दूसरों की शादियों का बैंड बजाओ,
2: दोनों दोनों
0: थोड़ा संभाल के रखो।
2: दोनों दोस्तों ने बिल्कुल एकदम सही दोस्ती पकड़ी
0: है यार, मतलब वेरी नाइस। और साथ में कब से हो? यू नो
3: ये हम लोग स्कूल से साथ है।
0: ऑल राइट, अच्छा। हम लोग कभी मनमुटाव नहीं हुआ आप दोनों को भाई?
3: नहीं, लड़ाइयाँ हुई है, बहुत लड़ाइयाँ हुई है।
0: ओके,
3: बात भी नहीं हुई है बीच में।
0: तो फिर कौन एक दूसरे को यू नो सबसे पहले कन्विंस?
2: कार्ड देता था कार्ड।
0: नहीं, कन्विंस भी होता है ना कि भाई मैं ही चला जाता हूँ, चल तू मत बोल भाई।
3: हमारा ना एक्चुअली 4-5 जनों का ग्रुप है।
0: ऑलराइट, वो देखे मैंने 4-5 जने।
3: हाँ जी,
0: हाँ हाँ, मैं देखा हूँ बिल्कुल।
3: तो हम लोगों का ना क्या होता है, अगर आप मान लो किसी एक दो के बीच में लड़ाई हो गई, तो 2-3 दिन नहीं मिलेंगे, बट हमारा ना एक शाम में मिलने का स्पॉट है, और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अब मान लीजिए मेरी और इसकी लड़ाई हो गई उनकी, और हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो उस ग्रुप पे मैसेज आएगा कि भाई हमें यहाँ मिलना है, इस टाइम पे सारे आ जाओ। अब उस टाइम पे ये भी आएगा, मैं भी आऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अगर हमारी लड़ाई हो रखी है तो हम उस ग्रुप से मिलने नहीं जाएंगे, मिलने आ जाएंगे। अब हम वहां मिले तो ऐसा लगेगा कि जैसे कभी हमारी लड़ाई ही नहीं हुई, उसकी बात ही नहीं होगी, जैसे हम हमेशा मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। तो कभी हमें एक दूसरे को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे वो बंदा उस इमोशन में था, मैं इस इमोशन में था, वो समझ गए। तभी शायद हमारी दोस्ती इतनी करी कि हम एक दूसरे को बिना बोले भी समझ
0: जाते।
2: भाई साहब, अभी जो आजकल हम जजेस को ढूंढ रहे हैं या जितने भी हम वकीलों को ढूंढ रहे हैं ना, जो केस सॉल्व करवा दें, ऐसे लोगों की जरूरत है जो मनी मन में केस सॉल्व कर दे, कहानी खत्म भाई, तू भी मैटर सॉल्व कर दे।
0: नहीं मतलब ये बात तो यार बहुत अच्छी बोली, और मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 2026 में ऐसे स्पेशल दोस्त बहुत कम हैं जो एक दूसरे की यू नो बॉन्ड को इतना संभाल के और समझ के रख रहे हैं, यू नो। और आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्योंकि पहली बात तो ग्रुप से नहीं बचे हैं, सिर्फ आजकल वो खाने खिलाने वाले ग्रुप्स बने हुए हैं, शाम को मिलते हैं, मैंने तेरा खाया, तूने मेरा खाया, उसके बाद टाटा बाय बाय,
2: फिनिश, कौन मैं कौन,
0: खत्म। हाँ, वो वाला सीन है। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो यू नो इस चीज को बहुत संभाल के रखते हैं।
2: अरे ये अभी मैं मतलब ये बात से मुझे याद आया कि इसमें भी एक वो होता है, वो रहता है लॉजिक कि जैसे खाना खा लिया तो हाथ सभी के जाएंगे पर्स के पास,
0: पैसे मगर किसी
2: की मगर पैसे किसके पहले निकलने का, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं यार,
3: सब के साथ।
2: पिछली बार तो मैंने खर्च किया था, इस बार तू जरा पहले निकाल।
0: करेक्ट,
2: ये भी इशारों में समझ जाते हैं आप सब आपस में। तो ये सबसे मेन बात है।
0: नाइस है,
2: कुछ और समझो ना समझो, ये चीजें आपस में समझनी चाहिए।
0: अंतरिक्ष भाई से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा दोस्ती की बातचीत चलिए। तो एक बहुत ही अच्छा सा गाना लगा रहा हूँ फ्रेंडशिप के ऊपर, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको कोई पुराना दोस्त है जो आपको याद नहीं कर रहा है, तो आज आप उसे याद करो, व्हाट्सएप करो या कॉल करो, किसी भी तरीके से उस तक पहुंच जाओ, हो सकता है वो भी आपका वेट कर रहा हो। क्यों क्यों अखिल भाई, कई बार होता है ना सामने वाला हमारा वेट कर रहा होता है, और हम इस चक्कर में बैठे होते हैं कि वो हमें फोन करे, और इसी चक्कर में क्लैशेस बढ़ते चले जाते हैं। तो यार आप ही शुरुआत कर लो, क्या दिक्कत है, और फिलहाल ये आपके दोस्त के लिए मेरी तरफ से।

नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखिल, और शुरू हो चुका है अपना दिल से दिल तक। हर रात की तरह आज भी हम बात करेंगे दिल की, कुछ यादों की और उन छोटी छोटी खुशियों की जो जिंदगी में हमेशा आपको मीठापन लाके दे देती हैं। और आज तो बरसात भी हुई है साहब, मौसम भी ऐसा है कि जैसी बाहर निकालो गाड़ी से हाथ तो आ जाती हैं कुछ बूंदे। कुछ बूंदों को कहते हैं ना, जब लगता है कि अरे आज तो बहुत तेज बारिश होने वाली है, कुछ कभी कभी हाथ पीछे से निकाल के और जब बूंदे आती हैं हाथों पे तो लगता है कि अब तेज होने वाली है बारिश। फटाफट हाथ अंदर करा, खिड़की ऊपर करी और निकल गए जी अपने फेवरेट प्लेस पे। तो दोस्तों, बारिश की हल्की हल्की फव्वारे और बाजार में हर तरफ आम की खुशबू। सच बताइए, क्या आप भी मैंगो लवर हैं, आम पसंद है या नहीं? और हाँ, अगर आपको आम पसंद है तो कौन सा पसंद है? आज का यही सवाल है आपका कि अपना फेवरेट आम तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा आम जो सबसे ज़्यादा आपको प्यारा कर सकता हूँ, जो हर कहते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट आम है भैया, आज मुझे यही चाहिए आम। तो बताइए, हमें मैसेज करिए 9837896896 पे और हमें कॉल करके बताइए कि कुछ तो खास होगा जो आपको लगता होगा इस मौसम में हमें खाना चाहिए और किस तरीके से इस मौसम का आनंद लेना चाहिए। आम की बात आई है तो एक शायरी तो आम पे बनती है। आम की मिठास सी और हर मुस्कान आपकी, आम की मिठास सी हो हर मुस्कान आपकी, खुशबू से महक कर हर पहचान हो आपकी, हर दिन हो खुशियों का त्योहार, बस यूं ही मीठी रहे जिंदगी आपकी। तो साहब, आम भी खाइए, बरसात में भीगे भी और खूब मजे लीजिए। और हाँ, कॉल करिए 9837896896 पर।

वेलकम बैक एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो जी हाँ, पता तो चल ही गया आपको कि आज हम बात कर रहे हैं आम की। आम जो आजकल है खास, जो है राजा, और जब आ जाए तो हो जाता है बिल्कुल एकदम, कैसे कहते हैं ना, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आज। तो ये बताओ, जब आम आते हैं तो कौन कौन बाल्टियों में उसमें डुबो के रखता है और कितनी देर तक डुबो के रखते हो आप कि भैया इसे खाने से पहले थोड़ा सा डुबो लो। होता है ना आजकल भी ऐसे ही होता है। हमारे पास नेहा जी का मैसेज आया है सिविल लाइन से, कहती हैं, अखिल जी मुझे दशहरी आम सबसे ज़्यादा पसंद है। बचपन में नानी के घर पेड़ से आम तोड़कर खाना आज भी याद है। तो नेहा जी क्या बात है, नानी के यहाँ पे और आम का पेड़, क्या बात है, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो बचपन जो है ना वो तो एकदम लग्जरी होता है जी, ना कोई कैलोरीज की टेंशन, ना कोई फ़ोन की नोटिफिकेशन, जितने मस्ती हो, जितनी जितनी डाली पे पहुँच सकती हो, आम तोड़ो और खाओ। हमें भी मैसेज करके बताइए आपने कभी चुपचाप आम खाया है, या कहते हैं सामने वाले की प्लेट से गायब कर दिया, उसे कहा भाई साहब जरा पीछे मुड़ के देखना, इतनी देर में उसका आम ही गायब हो गया। 9837896896 पे हमें मैसेज करें या फिर कॉल करें कि क्या मस्ती की है आपने आम के साथ। हमारे पास अमन जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से ही, MDA कॉलोनी से, लिखते हैं, अखिल भाई मेरी वाइफ को आम बहुत पसंद है और हर साल हम दोनों मिलकर आम की पार्टी करते हैं। क्या बात है अमन जी, प्यार और आम दोनों का सीज़न एक साथ हो तो बात ही कुछ और होती है। आपके लिए प्यार इसे रोमांटिक शायरी बोलते हैं आज, मोहब्बत।

मोहब्बत भी आम जैसी होती है, ध्यान से सुनिएगा, मोहब्बत भी आम जैसी होती है, जितनी पकती है उतनी मीठी होती है, और जो दिल से निभा ले उसकी याद जिंदगी भर रहती है। तो साहब आप आम खाएं और खिलाएं भी, हाँ भाभी को ही खिलाएं आप, पता चला कि इधर उधर आम ने आपने भेज दिए तो गुठलियां पड़ेंगी खूब सारी। तो चलिए सुनते हैं तब तक एक बढ़िया सा गाना, और उसके बाद देखते हैं आपकी आम की कहानी कहां से कहां तक हमें सुनाई जाती है। 9837896896 पे हमें मैसेज करें या फिर फटाफट कॉल करें, सारी लाइन्स अभी खुली हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई साहब बिजी हो बिजी। चलिए साहब

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो अभी हम सुन रहे थे ये खुला आसमां ये हसी वादियां। आपको तो पता ही होगा रोजा मूवी का ये गाना, क्या संगीत दिया था ए आर रहमान साहब ने। और जब भी कहते हैं ना ये गाना आप सुनते हैं तो इसका जो पिक्चराइजेशन है वो अपने आप ही आ जाता है दिमाग में कि कैसे पहाड़ों पे घूमते हुए गाना फिल्माया गया। और मन करता है कि काश एक बार तो ऐसी जगह ऐसी लोकेशन पे हम घूम के आएं और मस्ती करें। मगर साहब बारिश हो गई है तो मस्ती तो आपके अपने शहर में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जाएं। रेलवे स्टेशन से लेके और MDA तक भी घूमेंगे और पीतल नगरी तक भी चले गए तो मौसम अच्छा है, आम हाथ में होना चाहिए, बस खा पी के इधर उधर निकलते रहना चाहिए। हमारे साथ हमारे एक लिसनर अभी जुड़े हैं, चलिए उनसे पूछते हैं वो क्या मस्ती कर रहे हैं। दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो दिल से दिल तक सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: अरे सर आपके इतने सारे मोहब्बत भरे नमस्कार हमारे साथ इकट्ठे हो गए, क्या कहें, हम कहाँ तक संभाल के रखेंगे।
1: संभाल के रख लो, काम आएंगे।
0: और क्या कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप और इस समय क्या मस्ती हो रही है आपकी?
1: सर मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इसरत आपसे बात करता हूँ। सर इस टाइम मैं छत के ऊपर बैठा हूँ सर, ऐसा लग रहा है ठंडी एसी में बैठा हूँ और साथ में आप प्रोग्राम पेश कर रहे हो सर, छा रहे हो, काफी अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। मैंने सोचा कॉल लगा लिया सर, कॉल लग गया, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
0: तो आज आपने कितना आम खा लिया, एक आध किलो खा गए आप आम या नहीं?
1: सर आम तो मैं 5 किलो खा जाऊंगा सर, जो हमारे यहाँ बच्चे हैं सर उनकी माता ऐसे घट रही है, चाह रहे हैं कि आम ही हो कुछ हो या ना हो सर, पूरे कपड़े और पूरा चेहरा वगैरह मतलब सब सान लेते हैं सर। जो हमारी भाभी हैं वो कहती हैं तो पहले समझाती हैं कि बच्चों को आम मत देना, मैं उनके बच्चे तो पहले खाएंगे तो खावे नहीं खावे।
0: नहीं साहब बच्चों को
1: बच्चों ने सिर्फ आम हो इस टाइम गया सर, वो अच्छे कट जाते हैं, मेहनत नहीं करती।
0: अगर आपको किसी बच्चे का डिनर पूरा करवाना हो तो उसके पास डिनर उसकी थाली के पास ना एक आम रख दो आप, तो वो आम की चाहत के चक्कर में खाना खा जाएगा, या तो पहले आम खा जाएगा फिर छोड़ो खाना हो गया, या फिर
1: भाभी कहती है हमारी भाभी कहती है जैसे आम चाहूंगा मेरा मतलब काम मेरा काम ज्यादा बढ़ गया।
0: अच्छा तो सही है साहब,
1: खाते कम है मुझे ज्यादा सानते हैं, कपड़े ज्यादा सानते हैं सर।
0: कोई नहीं साहब, आप भाभी का काम बढ़ाते रहिए, आम 5 किलो लेके रोज आते रहिए।
1: सर जैसे हमारी सिस्टर है वो उन्हें बहुत शौक है, वो तो खैर 5 किलो खाकर उठेंगी, हमारी मतलब जो चीज भी हो सर पेट भर के हो, ये नहीं है 2 या 4 खा के नहीं बढ़ गए, जो चीज भी लाता हूँ सर मैं पेट भर के खाते हैं हम, कोई सही फल हुआ या खाना हुआ।
0: कभी कभी ऐसी बात होती थी कि अगर आम की गुठली पेट में चली गई तो आम का पेड़ पेट में निकल आएगा, ऐसा कभी कुछ बात बच्चों को डराई है?
1: बचपन में सुनते सर, अब नहीं, अब कोई बता दे क्या है क्या नहीं।
0: चलिए तो कोई शायरी तो सुनाइए आज इशरत भाई, आप छत पे बैठे हैं, हवा चल रही है, इधर उधर जंगल है, कोई बाघ आप पे हमला ना कर दे उससे पहले शायरी।
1: आप हमारी तरफ आओ, आपको हम मतलब आम खिलाएंगे सर, हमारे ये बाघ बहुत हैं।
0: आएंगे सर आपकी तरफ भी आएंगे, आम भी खाएंगे।
1: हाँ सर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई मिला नहीं जिसको वफा देते, कोई मिला ही नहीं जिसको वफा देते, हर एक ने दिल तोड़ा है किस किस को सजा देते।
0: क्या बात है साहब, आपने तो मतलब ऐसी टूटे दिल वाली शायरी कर दी आज, जिस जिसने भी सुनी होगी वो याद कर रहा होगा कि भाई साहब किस किस को हम वफा देते हैं, क्या बात है।
1: सर जो भी मिला तो सर चलो छोड़ो,
0: अब आप बताइए गाना कौन सा सुनेंगे,
1: ज्यादा लंबी बात हो जाएगी ना सर, मैं आज गाना सुनूंगा नाम है राज। अच्छा। तो बहुत ही प्यारा सुनेंगे, ये शहर है अमन का, यहाँ पे सब शांति शांति है सर, आज के समय यारा सॉन्ग प्ले कर देना।
0: जरूर जरूर जरूर, आप ईश्वर जी बहुत बढ़िया गाना आपने चुना, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार ईश्वर जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे ईश्वर जी रामपुर से, जो छत पे इस समय ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ना ये गाना, ये शहर है अमन का, तो ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनका शहर है अमन का और अमन वाली बातें चल रही हैं आजकल, तो आनंद लीजिए आप, खूब आम खाइए, 5 किलो लेके आइए, भाभी का काम बढ़ाइए और बच्चों को खूब आम खिलाइए। चलिए आप सभी से करते हैं फनी क्वेश्चन, अगर किसी ने आपसे कहा कि जिंदगी भर सिर्फ एक ही वैरायटी का आम खा सकते हैं तो आप कौन सा चुनेंगे, लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, सफेदा आम या अल्फोंसो? तो मुझे मैसेज कीजिए या फिर कॉल करके बताइए 9837896896 पर। डाइट का प्लान कल से होगा, आज तो आम का सीजन है। जो मना करे आम खाने से समझ लो उसका मूड ऑफ है। हाँ, तो मूड ऑफ होगा तभी आम नहीं खाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस गाने के बाद, तब तक आप लीजिए आम का मजा और ईश्वर जी का फेवरेट सॉन्ग गावी।

0: भेज रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हाँ, अगर आप कहीं फंसे हैं ट्रैफिक में या कहीं बाजार में, तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं और हमें अपडेट दें ट्रैफिक का, कि कहाँ पे है थोड़ा सा जाम या कहाँ पे ज़्यादा भर गया है पानी, जहाँ निकलने में हो रही है आपको दिक्कत। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक नए लिसनर, चलिए करते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू, पूछते हैं उनके पसंदीदा। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार नमस्कार अखिल भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया जी बढ़िया। क्या करते हैं आप और कहां से बात कर रहे हैं इस समय, ये बताइए सभी श्रोताओं को।
1: लंबी है मंजिल पास से किनारा, लंबी है मंजिल पास से किनारा, है दोस्त की नहीं आया एसएमएस हमारा, भूल गए नंबर नाम हमारा, दूसरा कोई मिले आपको प्यारा।
0: चलिए रेहान साहब, कोई बात नहीं, आपसे तो एक हल्की सी बात पूछी, आपने तो पूरी शायरी सुना दी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा।
1: जिला रामपुर ऐसे अच्छा से रेहान ही बोल रहा हूँ।
0: सही है साहब, आज सब रामपुर से ही बोल रहे हैं सर, मुरादाबाद से सब क्या आम खाने में बिजी हो गए?
1: हाँ भाई हाँ, तो ये सब मतलब जब से बारिश नहीं हुई जब से तो आम तो नुकसान दे रहे थे सर।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: आज जब बारिश चालू हो गई तो आम भी तनगा हो गया, तो बारिश में आम खाना, अब इस टाइम बारिश पड़ रही है तो आम खाना नुकसान नहीं देगा, जितना आम खाने का बेहतर रहेगा।
0: तो कोई जुड़ी हुई आम से जुड़ी हुई कोई कहानी सुनाइए सभी को, कोई आपके साथ कोई घटना घटी कभी, आम कभी आम खा रहे हूँ अपना और कोई ले गया दोस्त की, भैया छीन के अब तो मैं ही खाऊंगा।
1: दोस्त अब तो दोस्त हम गुरु मनाते तो हम दोस्त खर्ची करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही।
1: आज इस टाइम पे मैंने रेट पूछा तो 60 रुपए किलो आम बिक रहे थे, आज
0: 60 रुपए किलो बिक रहे हैं।
1: तो फिर भाई
0: तो फिर
1: एक किलो आम ले आए, 2-3 जन आम खाए हमने खाए।
0: चलो साहब, जब आम मिल जाए आपको 40 रुपए किलो, फिर एक बार 2 किलो ले आना।
1: तो
0: मुरादाबाद में भी यही चल रहा होगा, जो इस समय आम खा रहा होगा वो सोच रहा होगा कि यार अभी आम के रेट मत बताओ, अभी तो आम खाने तो पता चला वो आम ही खाना छोड़ दे।
1: बिल्कुल, ये अखिल भाई ये बात सही कह रहा है, इस टाइम अब तो फिर भी सुकून है, लगा बारिश पड़ रही है तो नुकसान नहीं दे रहे आम ना, तो पेट में खराबी हो रही है इस टाइम आम खा के।
0: चलिए साहब, अब आप बताइए गाना कौन सा सुनेंगे, अब आप आम तो आपने खा लिया, 1 किलो निपटा भी लिया, गाना सुन लीजिए।
1: निपटा दिए
0: तो बताइए।
1: गाना सुनना है सावन के झोला ने हमको बुलाया,
0: निगाहे। ओके जी, जरूर जरूर जरूर हम सब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमसे जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे रिहान जी रामपुर से, और वो कह रहे थे कि भाई मैं 1 किलो आम लेके आया और वो जैसे ही आए झटपट निपट गए। तो भाई साहब, आम तो ऐसी चीज है जो झटपट ही निपटेंगे, कभी जो है ना किसी का बस नहीं चलता, तो किसी का उस पर कहते हैं एकदम टेस्ट, अगर टेस्ट आ जाए तो फिर तो बस गया, वो एक क्या चारों खा जाएगा। हमारे पास मैसेज आया है रणवीर सिंह जी का, मुरादाबाद यूपी से। थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती, सबके चेहरे में वो बात नहीं होती, लाइफ में कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं पर अखिल सर जी से मुलाकात नहीं होती। तो रणवीर जी, मुलाकात भी होगी आपसे और बहुत जल्द। हम, और आपने बताया नहीं कि आपको आम खाना पसंद है या नहीं, तो जरूर आप हमें मैसेज करके बताएं कि आपको भी आम पसंद है या नहीं। हमारे पास पूजा जी लिखती हैं, दिल से दिल तक मेरा रूटीन बन गया है अखिल, आपकी बातें दिन भर की थकान दूर कर देती हैं। तो दिल से शुक्रिया पूजा जी जो आपने ये बात कही। ये शो बनेगा जब आप अपने दिल की बातें हमारे पास तक पहुँचें और इतना प्यार देते हैं, तो कहते हैं ना कि मन भी करता है आज फिर कुछ नया करने का। एक शायरी हमारे पास लिखी है रिहान जी ने, ये भी रिहान जी हमारे साथ मुरादाबाद से हैं, और इनकी शायरी है, आवाज़ मेरी है लेकिन एहसास आपका है, ये सफ़र मेरा है लेकिन साथ आपका है, बस यूं ही जुदा रहें दिल से दिल तक। क्या बात है साहब, आपने एकदम मौके की नजाकत के साथ ये शायरी लिखी है। और बताइए जल्दी से, जो मैंने सवाल पूछा था ना पहले वाले ब्रेक पे, पहले वाले गाने पे याद आ गया होगा, कौन सा पसंदीदा आम है जो आपको बहुत पसंद है, तो जरूर हमें बताइए और हमें मैसेज करिए 9837896896 पे। चलिए तब तक ये फरमाइश सुनते हैं सर की और आते हैं आपके पास दोबारा।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना रेडियो स्टेशन। जी हाँ, तो अभी बात चल रही थी आम की, तो आम पे हमने रणवीर जी से पूछा था कि रणवीर जी आपको कौन सा आम पसंद है। तो रणवीर सिंह जेठालाल जी कहते हैं कि सर हमें आम तो बहुत पसंद है, और अखिल सर जी आपको कौन सा आम पसंद है। तो जेठालाल जी हमें ना जो भी सामने आ जाए ना एकदम आम हम तो पकड़ लेते हैं साहब, हमें हम ये नहीं सोचते फिर कि कौन सा टाइप का है या कौन सी वैरायटी का आम है, बस आम होना चाहिए सामने। तो अभी हमारे साथ हमारी एक श्रोता जी जुड़ी हैं, चलिए बात करते हैं उनसे, क्या कहती हैं वो आम के बारे में। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रही हैं ये भी बताइए।
1: मेरा नाम स्वाति है, मैं लाइन पर मुरादाबाद से बोल रही हूँ।
0: तो स्वाति जी इस समय क्या कर रही हैं आप?
1: इस समय हम अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठ के आपके कान में सुन रहे हैं, आपका शो सुन रहे हैं।
0: अब हमारा शो सुने तो आज आपको पता होगा कि हम शो पे कौन सी बातें कर रहे हैं।
1: जी हाँ, आज का टॉपिक है आम।
0: पीछे से बैकग्राउंड में पता चल गया कि आपसे ज्यादा आम तो इन दोनों ने खा लिए हैं।
1: जी।
0: तो कौन सा आम पसंद है आपको?
1: हमें दशहरी आम बहुत पसंद है लेकिन हमें मिल नहीं पाते हैं।
0: क्यों, ऐसा क्यों है जो आपको आम नहीं मिल पाते हैं?
1: क्योंकि जैसे ही हम लेके आते हैं इतने आम थोड़ा बहुत काम निपटा के निमटते, इतनी देर में पता चला कि आम ही निमट गए।
0: साहब अब तो आपको जब पता है आपके पास दो जग्गा जासूस हैं आपके, तो जैसी आम आए पहले अपने दोनों आम छुपा ले, बाकी इन्हें दे दे करें।
1: ये मौका नहीं मिलता, वो सब फटाफट देख लेती कहाँ कहाँ क्या रखता है।
0: चलिए ये भी
1: हमारी जासूस है।
0: तो और कोई कहानी आम से रिलेटेड आपको, जैसे ये तो खाए जाते हैं, वैसे कोई ऐसा कोई मौका हुआ हो कि इन दोनों ने कुछ आम के ऊपर एकदम जो है कहते ना आम खा खा के पूरा मुंह जो है एकदम सड़ा लिया हो।
1: बड़ी हमारी छोटी वाली बेटी जो है वो हमेशा सारे कपड़ों को खराब कर लेती है आम खाके।
0: तो ये तो देखो ये तो कपड़ों का भी हक है कि कभी कोई ऐसी चीज खाए तो आप अकेले ना खाए, हमें भी थोड़ा सा लगाए। सही है। तो आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: ये सावन आया बादल छाए।
0: ये बात तो आपने सही कही, ये सावन आया बादल छाए, आज बादल तो छा गए थे, आज आपने बारिश का आनंद लिया नहीं लिया?
1: भरपूर आनंद लिया है
0: आज, भरपूर आनंद लिया गया है। चलिए स्वाति जी, तो बहुत अच्छा लगा आपने संपर्क किया और अपनी पसंद का गाना ही बताया। तो ये थी स्वाति जी जो बता रही है कि इन्हें तो दशहरी आम बहुत पसंद है, मगर क्या करें जैसी आता है छटपट गायब हो जाता है। तो जी आपके पास जब दो दो कहते हैं ना एकदम जासूस आपके हैं, जग्गा जासूस दोनों, तो जैसी आए वो कैसे छोड़ देंगे आप? तो उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसी आए वो पहले आपको लाके दे आम अगर हो जाए, ऐसी दोस्ती करनी पड़ेगी, वरना जी आम से तो हाथ ही धोना पड़ेगा आपको, हम बिना खाए हाथ धोने पड़ेंगे। तो चलिए सुनते हैं आपका गाना, और हाँ कोई भी आपकी भी ऐसी शिकायत या ऐसी कोई कहानी हो ना आम के साथ, तो जरूर हमें मैसेज करें या कॉल करें 9837896896 पे। और हमारे पास एक मैसेज आया बहुत प्यार सा रोहित जी का, बुद्धि बिहार से, कहते हैं मैं हर रात कार चलाते हुए आपका शो सुनता हूँ और आपकी आवाज जो है सफर को आसान बना देती। तो रोहित जी आप बुद्धि बिहार मैं जब भी आप सफर करके आते हैं और आप हमें सुनते हैं हमारे शो को, तो थैंक यू वेरी मच कि हमारे एक शो की वजह से भी आपका जो सफर है वो पता ही नहीं चलता कैसे कट जाता है। तो सेफ ड्राइविंग। और हाँ ये जो गाना आ रहा है ना अभी सावन आया बादल छाए, तो ये गाना आपके लिए भी डेडिकेटेड है भाई, सावन आ गया बादल छा गए, गाड़ी में आनंद लीजिए, चलाइए खूब सेफ्टी के साथ और ये गाना सुनिए।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और हाँ, यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन जहाँ पे होती है खूब सारी बातें, खूब सारी मुलाकातें, वो भी दिल से दिल तक वाली, क्योंकि जो बात निकलती है ना आपकी, वो आपको ही पता, आपके दिल से निकल रही होती है, चाहे वो कोई सी बात हो, गाड़ी चलाते हुए हो या कहीं बैठ के कॉफी पीते हुए हो। और हाँ, जो एक बाईपास पे ढाबा खुला ना नीलकंठ, वहाँ की चाय ज़रूर पीजिए, मज़ा आ जाएगा पराठे के साथ। तो मस्ती तो होती है जब दोस्त बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कहते हैं, जी आज तो दिल से निकल रही है, आज तो मेरा दोस्त जो है दिल से ही बोल रहा है। रास्ते लंबे हों या छोटे, मुस्कान साथ हो तो सफ़र खूबसूरत ही हो जाता है। तो चलिए हमारे साथ, हमारे सफ़र में हमसे जो जुड़े हैं उनसे करते हैं बात और पूछते हैं कि कौन सा खाया था उन्होंने आम। हेलो दिलशंक, कैसे हैं आप?
1: हेलो, बढ़िया सर।
0: क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: नेत्राम नाम है मेरा, मझोले से बोल रहा हूँ, लाइन पार।
0: आप लाइन पार मझोले से बोल रहे हैं नेत्राम जी?
1: हाँ।
0: तो नेत्राम जी, आपको कौन सा आम पसंद है?
1: क्या
0: आम खाना पसंद है आपको? आम खाना
1: घर द्वार का सपना तो सुंदर है अपना घर द्वार।
0: अरे गाना तो हम आपसे सुनेंगे ही, आपकी फरमाइश का प्ले करेंगे, मगर आज बताइए, हम कर रहे हैं आम की बात, आम आम मैंगो।
1: परिवारों को कौन सुनना है?
0: तो आप अपनी सुना रहे हैं, मगर परिवार में बताइए कौन कौन सुन रहा है।
1: एक लड़का तो काम पे है, दो लड़की थी ना हमारी।
0: हाँ जी।
1: एक एक्सपायर हो गई थी विंटर में।
0: अच्छा अच्छा।
1: क्लास में थी, जनवरी में हो गई थी।
0: अच्छा।
1: अब वो लड़की छोटी वाली है हमारी, वो पढ़ती है सातवीं क्लास में।
0: तो
1: उसने फोन मिलाया लड़की ने, पापा आज गाना सुनो परिवार का।
0: हाँ जी।
1: याद आ रही थी।
0: अच्छा। तो चलिए वो गाना हम जरूर सुनेंगे। और आपके परिवार के सभी लोग आपके आसपास हैं?
1: हाँ सब है, बेटा हमारा इंटर में पढ़ लिया है 11वें में।
0: तो आज आप हमारा शो सुन रहे थे कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं?
1: सुनने आता मैं।
0: तो बताइए, आज आप बताइए हमने किस चीज के ऊपर ज्यादा बातें की हैं?
1: मैंने अभी एक ही गाना सुना था।
0: अच्छा, गाना सुन रहे थे, हमारी बातें नहीं सुन रहे थे?
1: ना, वो अभी फोन उठाया था ना।
0: हाँ जी।
1: चार दिन पे लगा हुआ था तो गाना ही आ रहा था।
0: तो आज हम जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं आम, एक फल होता है ना फल आम, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको आम खाना पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो आप कितना, कहते हैं कि ना कभी कभी आम खाते समय भूल जाते हैं कि आपने कितने आम खाए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ?
1: ना, ऐसा फल का तो अपने ही काम है।
0: अच्छा, आपका फल का ही काम है?
1: हाँ, लड़का करता है।
0: तो साहब हमें आम मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, पूछिए लड़के से।
1: आप चिंता मत करो, आप तो बता दो।
0: चलिए फिर तो हम, मैं भी आऊंगा और जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी आएंगे फल लेने आप ही से।
1: सबको लेके आना आप।
0: पक्का पक्का पक्का। तो आपने गाना कौन सा बताया, स्वर्ग से सुंदर?
1: हाँ ना, घर द्वार का सबसे सुंदर, सबसे उसे प्यारा है अपना घर द्वार।
0: पक्का पक्का।
1: लड़की की वजह से याद आने लगी बरसात।
0: चलिए जरूर, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। धन्यवाद नेत्राम। तो ये नेत्राम जी थे जो हमसे जुड़े थे और कहते हैं, जी हमारे तो बेटे का खुद का फलों का काम है और यहीं पे मंडी पे फलों का खूब अच्छा काम है। तो जरूर नेत्राम जी आपके पास आएंगे फल लेने, और आम भी खाने आएंगे साहब, आम भी लेंगे आपसे। अभी इन्होंने जो गाने की फरमाइश करी है वो इन्होंने अपनी बेटी के लिए करी है, उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है। तो सभी परिवार के लोग ये गाना सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर आपका इस मूवी का, घर द्वार मूवी का ये गाना हम प्ले करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम कुछ बातें करते हैं और बताते हैं, आम जो है ना सिर्फ एक फ्रूट ही नहीं है, ये गर्मियों की याद है, नानी के घर की छत पर बैठ कर आम खाने का, आम खाने वाली याद है, फैमिली के साथ थोड़ी हंसी मजाक वाली याद है। और इसलिए कहते हैं ना, मैंगो इज नॉट जस्ट अ फ्रूट, इट इज एन इमोशन। जी हाँ, तो ये एक इमोशन ही है जो कई सारी मेमोरीज आपके साथ जोड़ देता है। और आज हमारे पास जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे से कनेक्ट हुए, उन सब ने ही अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी आम वाली स्टोरी आम आदमी की एक आम वाली स्टोरी हमें सुनाई, एक शायरी हमारे पास आई है और उसे जरूर आपके साथ साझा करते हैं। रिश्तों में भी आम जैसी मिठास रखिए, गुस्से को थोड़ा कम रखिए, मोहब्बत बनाते चलिए, जिंदगी खुद मीठी लगने लगी। क्या बात कही है। ये हमारे श्रोता कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैसेज में अपना नाम नहीं लिखते हैं साहब, कह देते हैं कि बस मैसेज आ गया, अब आप इसे शामिल कर लीजिए। हमारे पास मैसेज आया है एक बबली अनजान गीता कश्यप ललिता जी का। सर जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए। तो बबली जी, गीता जी और ललिता जी, पहले ना आपको तो हमें आम खिलाना पड़ेगा, ये तभी हमारा जो है ना प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मैसेज किया और बताया कि आपकी हमारा प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो ऐसे ही सुनते रहिए और कॉल मिलाते रहिए और ज़रूर एक खट्टी मीठी वाली आम की कहानी हमें बताते रहिएगा। तो चलिए तब तक ये सुनते हैं गाना स्वर्ग से सुंदर वाला और फिर कनेक्ट होते हैं 9837896896 पे।

तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। रेडियो बजाते रहो और गुनगुनाते रहो। और जी और मुरादाबाद की सड़कों पे अपनी गाड़ियां दौड़ाते रहो। हमारे पास दोस्तों आज हमारे पास इतने सारे मैसेज और इतने सारी कॉल आ गई हैं आम के ऊपर, तो मैं तो सोच रहा हूँ सच में यार आम जो है ना वो सच में ही राजा है, क्योंकि आम की बातें और आम से जुड़ी हुई जितनी भी कहते हैं ना चटकारी वाली यादें सब ने अपनी शेयर करी आज हमारे साथ। और हमारे पास एक मैसेज आया है, वो कहते हैं कि अखिल सर मुझे ना आम का जो छिलका होता है ना उसे हल्का हल्का करके उतारने में बहुत मजा आता है। तो साहब ये तो आपने खतरनाक मैसेज कर दिया। जब आप आम का जब छिलके उतारते ना हल्के हल्के से करके, जो कभी कभी बिल्कुल ज्यादा गहरी फाक आ जाती है हाथ में, तो लगता है अरे यार गुठली समेत खाना है, बस आम को सिर्फ छील के पूरा ऐसी खाना चालू कर दें। तो होती है ये तो मस्तियां होती हैं। तो दोस्तों देखते ही देखते ना एक घंटा कैसे गुजर गया ये आज पता ही नहीं चला, और थोड़ा ज्यादा ही गुजर गया वो भी पता नहीं चला। आज हमने बात की है आम की, कुछ यादों की और आप सबके प्यार की। जाते जाते एक आखिरी शायरी आप लोगों के लिए। आम की मिठास हो या रिश्तों की बात, दोनों संभल कर रखिए हर हालात। आम की मिठास हो या रिश्तों की बात, दोनों को संभाल के रखिए हर हालत में। खुशियां बनाते रहिए हर दिन, खुशियां बांटते रहिए हर दिन, यही है जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुहा। तो कहते हैं ना जिंदगी की जो सबसे खूबसूरत सौगात है वो यही है कि खुशियों को बांटते रहिए हर दिन, ऐसे जिए कि आज ही मस्त है वरना तो भैया बंदा पस्त है। तो मैं था आपका दोस्त अखिल, और हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, कोई ऐसा टॉपिक जो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर 983

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
4: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
0: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
2: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
0: देखो A4 आनंद, A4 अखिल, N4 कमल शर्मा जी। तो सर कैसे हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया।
0: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब ऐसे फ्लो फ्लो में बोल दिया?
1: नहीं, पहले आ चुके हैं पर। अच्छा, काफी प्रोग्राम,
0: यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
1: मे बी शायद टाइम
0: नहीं, हाँ मे बी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहली बार आए हैं।
1: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे,
0: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
2: संडे इज लाइक फंडे ना।
0: सही बात है,
1: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
0: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, अब समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
1: सूत्रों से
0: लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
2: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है और बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट रैंडम आती है,
0: रैंडम आती है,
2: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
0: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी, इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको आरजे में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहां फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
1: मेरा नाम कमल शर्मा है
0: जी।
1: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है?
0: जी ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा,
1: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं, तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
2: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
0: करेक्ट करेक्ट, और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
2: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे और आपने वहाँ पे अपने सेल के, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
1: नहीं नहीं, अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है, तो जैसे कभी कभी बैठे होता है, अच्छा है चल उसको सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते,
0: अंदर का जो शायर बाहर आ ही जाता
1: वो,
0: है।
1: नहीं नहीं, वो तो काफी बार आ चुका है।
0: अच्छा
1: तो काफी बार आ चुका है, इतना बार आ गया कि एफएम पे भी आ गया।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
1: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों,
0: मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
1: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल, जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
0: वाह।
1: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
0: क्या बात है।
1: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
0: वाह।
1: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं है। और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी है।
2: अरे क्या बात, बहुत खूब।
0: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये तो आपने
1: या मैं को रिलेट किया बिल्कुल।
0: हाँ, नहीं मैं भाई आप सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हो गई है, तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं ये जो मस्ती है, जो फन है, वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ। Mixing it.

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, आप उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए क्यों अखिल जी?
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सपाट तो चलता रहेगा श्रोताओं, फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा, जो अपने हाल फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो।
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है, खूबसूरती एक कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है जवानी
0: दे दो
1: और आत्मा कह रही है एक गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात
2: बहुत
0: है।
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला, बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर हाँ। वाली डाई दे दो।
0: चलिए मैं आपको
1: गली करवा लिया था, वो मैंने गली करवा लिया था।
0: हाँ सर को देख के लग रहा है बिल्कुल।
2: मैं
0: बहुत ही बढ़िया।
2: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा
0: सर। बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी तरफ से।
2: मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी, इस बार
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पड़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब, अब तो टाइपिंग टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग टाइपिंग नहीं कर रहे, हम बातें बातें कर रहे हैं और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया, और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए, और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा है अचानक तो आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी, ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए सर।
1: सर नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: मगर
0: की
2: ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी।
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खाते ने रखी है।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है। क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
0: क्या बात है जी।
1: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, आप जॉब करते रहते हैं, आसपास में चल क्या रहा है।
1: मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गए माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो अखबार।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर हम रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं, देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: अब कोई सोचे कि 1 रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां, बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: मैं आपकी बात
1: जरूरी
0: नहीं
1: था,
0: चाहता।
1: ये जरूरी था,
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी
1: नहीं, हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी,
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाएं।
1: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों की,
0: जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, भी हंसी खुशी का माहौल चल रहा
0: है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल है तो अच्छी लाइनें निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो ये कुछ पंक्तियां हैं मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा सब्जेक्ट,
0: बहुत
1: था
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर,
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ,
0: वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार, और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, ये हो सकती है,
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उघाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी,
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
0: हाँ हाँ,
2: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपनी राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। बट अभी रुकते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आपके ही मत जाइए, सुन रही आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।